मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि। तदनुसार 16 सितंबर सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

0: अमरीका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमरीका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमरीका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05:15 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो गणपति हमारे प्रथम पूज्य देव हैं और जैसा कि आप सभी के घर में गणपति की स्थापना हो भी गई है, तो आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने प्रथम पूज्य देव गणपति की आराधना से। और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है हरिओम शरण ने।

तो भाई गणपति की आराधना के साथ ही आराधना कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु अब मेरी भी अरज सुन लीजिए, थक गई है रसना मेरी, थक गए हैं नैन हमारे, तुम्हारी पंथ निहारते निहारते कब लोगे हे प्रभु सुधे हमारे। श्रोताओं लीजिए सुनिए लक्ष्मी शंकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

नाथ अनाथन की सुध लीजिए। श्रोताओं, इस भजन को अपने स्वर से सजाया था लक्ष्मी शंकर ने, और अब आराधना कार्यक्रम में लेते हैं अगली भक्ति रचना। इस भक्ति रचना को अपने स्वर से सजाया है पंडित जसराज ने। देने वाले एक राम और लेने वाले करोड़ों हाथ, दीन पर इतनी कृपा करना प्रभु कि ये हाथ बस तुम्हारे आगे ही फैले और किसी के आगे ये सर ना झुके, झुके तो बस तेरे दर पर। और माता का श्रृंगार इतना खूबसूरत होता है कि बस देखते ही बनता है।

सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, बनी उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। श्रोताओं लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब और हम अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जो झुक जाए माँ के दरबार में सच्चे भाव से, उसका जीवन भर जाता है खुशियों के प्रवाह से। माँ दुर्गा, तेरे आशीर्वाद का है अनोखा सहारा, तेरे नाम के बिना अधूरा है ये जग सारा। और माता का श्रृंगार देखकर तो ये नैना लोभी हो ही जाते हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप राजा राम मोहन राय के विचार सुनेंगे।
1: राजा राममोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं। उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने 2 तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी

0: आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: श्रोताओं, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप राजा राममोहन राय के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रकृति का संरक्षण करें, दोहन नहीं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:35 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे आलू की सहफसली खेती पर डॉक्टर डीएस चौहान से अनिल कुमार यादव की बातचीत।
1: देखा भैया, खेती किसानी के साथ साथ कुछ किसान भैया हैं जो उनकी आलू की खेती करे। मुला हम कहीं थे कि आलू की खेती के साथ साथ और कोनो भी फसल उगाई जा सकत है। यह विषय है कि आलू की सह फसली खेती इका बाट है, यह विषय पे जानकारी देवे बदे अपने कार्यक्रम में डॉक्टर जी एस चौहान भैया आए हैं जो उनकी कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में कार्यरत हैं। तो भैया आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाट है। डॉक्टर साहब ये बतावें कि इस सह फसली खेती का होत हमारे किसान भाई हरण के बतावें।
2: सह फसली खेती जैसे किसान भाई एक फसल बो रहे हैं उसके साथ दूसरी फसल लेकर के अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई।
1: यानी कि सह फसली खेती का मतलब ये बा कि आलू के फसल के साथे साथे और कोनो फसल लगाए दे जौने से कोनो भी आपदा या कुछ आवे आलू के फसल पे तो ओके किसान के पूर्ति हो सकत है। डॉक्टर साहब ये बतावें कि ये जैसे आलू कौन कौन किस्म या भूमि एक प्रबंधन कैसे किया जाए, कौन तरह के माटी में अपन आलू का पैदावार अच्छी हो।
2: आलू की फसल बलुई दोमट और दोमट जमीन में बहुत अच्छी होती है
1: जी जी।
2: और इसके खेत के तैयारी करने के लिए सबसे पहले 2-3 जुताई हैरो से करें या मिट्टी पलटने वाले हल से
1: जी जी।
2: उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर करके पाटा चलाने जिससे हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी
1: जी जी जी।
2: जो अगेती फसली है उसमें कुपरी अशोका प्रजाति है, कुपरी चंद्रमुखी है, कुपरी जवाहर है, कुपरी सूर्या है, इनमें से किसी भी प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं
1: जी जी।
2: और जो किसान भाई मध्यम बो रहे हैं उसके लिए कुपरी सतलज है, कुपरी आनंद प्रजाति है, और इसके अलावा जो कुपरी बहार है, कुपरी बादशाह है, कुपरी लालमा है, कुपरी सदाबहार प्रजाति है, इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। और अगर किसान भाई देर से बो रहे हैं, नवंबर में बुवाई कर रहे हैं, नवंबर लास्ट तक, तो उसमें कुपरी सतलज और कुपरी आनंद प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं जिससे अच्छी पैदावार उनको प्राप्त हो।
1: डॉक्टर साहब बात आवा था कि हमें खाद उर्वरक है ओके का मात्रा किसान भाई हरे डालें कि जोने से उनके फसल भी बढ़िया हो।
2: तो इसमें पहले किसान भाई अगर हरी खाद का प्रयोग किया हो तो अच्छी बात है, और जिन किसान भाइयों ने हरी खाद का प्रयोग नहीं किया है वो 15-20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। और इसके अलावा जहाँ पर हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है इसमें 150 से 180 किलोग्राम

0: नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है
1: जी,
0: और इसमें 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिससे आलू की भड़वार अच्छी होती है और अच्छा मोटा आलू प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ किसान भाई 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करेंगे तो उनको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और संतुलित मात्रा में उनको उर्वरक मिलेगा।
1: जी, ये तो रही डॉक्टर साहब खाद और उर्वरक के बात। अब जौन आप ये बताएं कि

0: होगी और संतुलित मात्रा में उनको उर्वरक मिलेगा।
1: जी, ये तो रही डॉक्टर साहब खाद और उर्वरक के बात। अब जौन आप ये बताएं कि आलू के साथ साथ और सहफसली खेती में, तो ये सहफसली खेती में कौन कौन फसल का आलू के साथे बुआई किया जा सकता है, बताओ।
0: आलू की एक तो मुख्य फसल आलू की हो गई, उसके साथ सह फसली फसलें बोई जाती हैं। और जहाँ तक उर्वरक की मात्रा है, उसमें उर्वरक की मात्रा की जितना है आलू में दिया जाता है उतना ही दिया जाता है, उसमें अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी
0: तो हमारे आलू के साथ सह फसली खेती किसान भाई आलू के साथ राई कर सकते हैं, जिसमें हमारे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम आलू लगा रहे हैं, उसके 3 मेड़ के बाद एक राई की कूट डाल सकते हैं किसान भाई,
1: जी जी
0: जिससे हमारी मुख्य फसल आलू को नुकसान नहीं होगा और हमारी जो उर्वरक मात्रा वो वही रहेगी। आलू 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं और 1 से 1.5 किलो राई का बीज प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी जी
0: आलू के साथ कुछ किसान भाई गेहूं भी लगा सकते हैं, जिसमें आलू की जो 3 हमारी लाइन होती है उसमें 3 लाइन गेहूं की किसान भाई बो सकते हैं, और इसमें उर्वरक की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू का प्रयोग करेंगे और करीब 40 किलो प्रति हेक्टेयर गेहूं का प्रयोग करेंगे बीज का।
1: जी जी
0: आलू के साथ किसान भाई मटर की भी बुवाई कर सकते हैं, जिसमें मटर की सब्जी प्राप्त हो सकती है। तो उसकी मटर के लिए आलू की जो 1 लाइन बोई जाती है जो बीच में है, क्या मटर की लाइन किसान भाई बो सकते हैं, जिसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा और ज़्यादा लागत भी नहीं आएगी। उसमें केवल मटर की हमको बीज की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अलग से देना होगा। और इसके अलावा आलू भाई जहाँ पे गन्ना लेते हैं
1: जी जी
0: तो गन्ना वाले भी क्षेत्र में आलू के साथ गन्ना ले सकते हैं किसान भाई, जिसमें हमारी जो आलू की 1 लाइन है उसके बीच में 1 लाइन गन्ना किसान भाई बो सकते हैं।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: हमारा गन्ना करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी केवल बढ़ेगी है क्या लागत, और बाकी लागत नहीं बढ़ेगी लेकिन पैदावार हमको अच्छी मिलेगी। आलू के साथ किसान भाई धनिया बो सकते हैं, पालक बो सकते हैं, और भी जो कद्दू है, लौकी है, ये सब्जी वाली फसलें हैं, आलू के साथ सह फसली ले सकते हैं किसान भाई,
1: जी जी
0: तो जिससे उनको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी और हमारी जो अधिक लाभ प्राप्त होगा और लागत भी कम होगी किसान भाइयों की।
1: जी डॉक्टर साहब, इस सह फसली खेती जैसे कि मुख्य फसल जो आलू बाटे, ओकरे साथे साथे जैसे आप बताएं कि सरसों है, मटर है, गेहूं भी किसान भाई ले सकते हैं, तो उसे यही खाद और उर्वरक में वह भी फसल के पूर्ति होत रहे। डॉक्टर साहब बात आवत है कीट और बीमारी के, तो आलू के फसल में जैसे कौन कौन से बीमारी जैसे लागत हीन ओकर का निदान वे का लक्षण वे, एकरे बारे में बतावें थोड़ा।
0: किसान भाइयों आलू में बीमारी बहुत ज़्यादा, जैसे पछैती झुलसा रोग लगता है और अगैती झुलसा रोग,
1: जी
0: ये
1: जी
0: दो बीमारी बहुत ज़्यादा लगती हैं जैसे हमारे आलू को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसका हमको निदान करना आवश्यक होता है। इसके लिए जैसे मौसम खराब होता है, बदली होती है, उस समय 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और 80% आर्द्रता होती है, उस समय ये रोग लगता है।
1: जी जी जी
0: तो इसके लिए किसान भाई अगर ये रोग दिखाई दे रहा है तो जिनेब 75% दवा आती है, उसका 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो ये बीमारी का निदान हो जाएगा।
1: जी जी
0: दूसरी बीमारी होती है अगैती झुलसा। अगैती झुलसा में क्या होता है कि पत्तियों के निचले उस पर या पुरानी पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे गोल गोल आकार के धब्बे पाए जाते हैं, इससे बीमारी है क्या बहुत ज़्यादा फैल जाती है और हमारी पत्तियों पर तो फैलती है, तना पे फैलती है और आलू के कंदों पे भी आ जाती है,
1: जी जी
0: हमारे आलू के कंद भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए 0.3% कॉपर ऑक्साइड का किसान भाई यानी 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो इस बीमारी का निदान हो जाएगा।
1: जी जी जी
0: और हमारी जो फसल देखी जाती है आलू की फसल में दीमक का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है,
1: जी जी जी
0: दीमक खा जाती है तो हमारा आलू बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई दीमक के प्रकोप के लिए क्लोरोपायरीफॉस दवा जो 20% आती है
1: जी,
0: उसको

0: से 3 लीटर मात्रा 1 हेक्टर के लिए 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो दीमक का कंट्रोल हो जाएगा।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे कार्यक्रम में और आलू की सह फसली खेती के बारे में इतना बढ़िया से फरियाई के हमारे किसान भैया हरेन के बताएं। हम तो कहा जे भी किसान भैया हरे सुने ओके जरूर ऐसे लाभ होए। तो डॉक्टर साहब आपके जानकारी देवे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे आलू की सहफल फसली खेती पर डॉक्टर डीएस चौहान से अनिल कुमार यादव की बातचीत, और इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको वैद्य शिव मंगल की वार्ता सुनवा रहे हैं। वार्ता का विषय है बदलते मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। तो आइए सुनते हैं शिव मंगल डॉक्टर वैद्य की। क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, वैद्य शिव मंगल की वार्ता।
1: बदलते मौसम का अभिप्राय है बदलाव में निर्मित होने वाली वातावरणीय ऋतु, और इन्हीं ऋतुओं के प्रभाव से हमारे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ ऋतुओं के अनुसार ही पथ्यापथ्य का सेवन करना अथवा ऋतुओं के अनुसार ही चेष्टा और दिनचर्या का पालन करना सिखाया जाता है। आयुर्वेद में पूरे वर्ष को दो काल में विभक्त किया गया है, अनादकाल और विषरकाल। अनादकाल से हमारी पृथ्वी का एक छोर सूर्य की तरफ झुक जाता है। पृथ्वी की इस क्रिया के कारण सूर्य की गति पृथ्वी पर उत्तर की ओर रहती है, और इस काल को आदान काल कहा जाता है। इसमें वातावरण में सूर्य और वायु अपने चरम पर आ जाते हैं, जिससे प्रत्येक शुष्क एवं निर्बल के हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब 6 माह पृथ्वी की दशा सूर्य से अवनयन होती है और सूर्य पृथ्वी के दक्षिण ओर जाते हैं और हमारी प्रकृति बलाबल से परिपूर्ण हो जाती है, हरियाली चारों रहती है, उसे विसर्ग काल कहा जाता है। इन्हीं मूल बदलाव के कारण हमारे स्वास्थ्य पर अनेकों संक्रमण और बीमारियों को फैलाने का अवसर मिल जाता है। आदान काल दूसरा है। इस काल में 6 माह में 3 ऋतुएँ रहती हैं। इसके आरंभ में तापमान का उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। अक्सर दिन का तापमान ज़्यादा रहता है, एकाएक रात का तापमान अचानक गिर जाता है। इस कारण सर्दी जुकाम से लेकर के बुखार तक की समस्याएं हमें परेशान करने लगती हैं, खासकर छोटे बच्चे, वैसी महिलाएं जिन्हें एक्नोमिया की समस्या रहती है, मधुमेह और टीबी के मरीज आदि इस मौसम में ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। इस ऋतु में पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। सभी दोषों की विकृति के कारण पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, अतः जठराग्नि को प्रदीपन करना तथा दोषों का शमन करना आयुर्वेद में सर्वथा महत्वपूर्ण है। इसलिए आदान काल मूलतः गर्मी के दिनों में जठराग्नि को प्रवृत्त करने के लिए आसानी से पचने वालों आहार का सेवन करना चाहिए। दालें, सब्जियों का सूप, पुराना अन्न, पतली दही इस ऋतु में लिया जा सकता है। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, जिसमें प्रकृति रूप से संचित पित्त दोषों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है। इस ऋतु में पित्त का पाचक स्वभाव दूर होकर वह दीर्घ बन जाता है। परिणाम स्वरूप इस मौसम में अत्यधिक मात्रा में बुखार, पेचिश, उल्टी, दस्त, मलेरिया आदि का फैलाव होता है। चूँकि ऋतु में पित्त दोष एवं लवण रस की स्वाभाविक ही वृद्धि होने लगती है, सूर्य की गर्मी भी विशेष रूप से तेज लगती है, अतः ऐसे में पित्त दोष, लवण रस और गर्म इन तीनों का शमन करें। विशेष स्वास्थ्य के लाभकार के लिए इस मौसम में मधुर, मीठे, तिक्त, कड़वे एवं कषाय रस का विशेष उपयोग करना चाहिए। पित्त दोष के शमन हेतु खीरा, तीखी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। इसी ऋतु में सब्जियां खूब खानी चाहिए। वर्षा काल का नया पानी होने की वजह से वह दोषयुक्त होता है, इसलिए जहां तक हो सके शरद ऋतु में कम से कम

0: हैंड पाइप का पानी या दूषित पानी का प्रयोग न करें, उबला हुआ पानी का सेवन करें। अमर्यादित की रसायन वर्धन पिपली का प्रयोग करें, पिपली ज़्यादा लें, शहद के साथ लें। शरीर में वायु का विकार के फैलाव की परिस्थितियां निर्मित न होने पावे। जिन्हें कब्जियत की तकलीफ हो उन्हें सुबह खाली पेट हरड़ एवं गुड़ का सेवन करना चाहिए। अपने आप में इससे हम इस मौसम की मार से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप वैद्य शिव मंगल की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था बदलते मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:30 बजे आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुनेंगे और दोपहर 12:15 बजे पद्मा तलवलकर का। रात 10:30 बजे पंडित उमाशंकर मिश्र का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:45 पर किया जाएगा। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर पोमेला नंदी के स्वर में गाए गीत और भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आप मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता जी और अभयकांत तिवारी जी की बातचीत का दूसरा भाग सुनेंगे, तो सुनना न भूलिए सुबह 10:05 पर कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। सुबह 10:30 बजे लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं भरत लाल, नीलम शर्मा और राम प्रसाद और साथ ही इनके स्वर में गाए लोकगीत आज हम आपको सुनवाएंगे। एक ही कलाकार कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 11:00 बजे किया जाएगा। प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा जी की है और आपके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा दोपहर 12:30 बजे। प्रस्तुति मधु कुमार जी की है। दोपहर 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में शब्द बातें और गीत नजर सुनिएगा और सेहत ज्ञान में नाखूनों में होने वाले फफूंद संक्रमण का घरेलू इलाज बताया जाएगा। कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा फिट युवा मजबूत भारत और आज की जीवन शैली और युवाओं का स्वास्थ्य पर, साथ ही चर्चा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। प्रेरणा पुंज में मदरे एस सुब्बलक्ष्मी पर होगी बात। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है कृषि मशीनीकरण और नैनो यूरिया पर। लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे राम प्रसाद और साथियों के स्वर में। नीति वचन सुनिएगा श्रीपति उपाध्याय से और साथ ही मौसम संबंधित जानकारी दी जाएगी। शाम 7:31 पर बोलते नगमे कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति नेहा गुप्ता जी की है। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यक्रम विवरण समाप्त।

सपने वो नहीं जो हमें सुलाते हैं, सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। ये बात कही थी APJ अब्दुल कलाम ने।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। विदेश मंत्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्य एव सम्पन्नस्य 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी चिनफिङ्ग इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूलचिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निंदा कृता। षड् राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देश्य बंध परियोजना संबद्ध संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तर प्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचल प्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनेन किशाऊ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्र प्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चितं मासिक प्रोत्साहन धनं 3,000 रूप्यकेभ्यः 6,000 रूप्यक पर्यन्तं वर्धितमस्ति। अयं निर्णयः ह्यः नवदिल्ल्यां मुख्यमंत्री पदासीनायाः रेखा गुप्ता वर्यायाः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मंत्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। सम्प्रति दिल्ल्यां 25,770,000 आशा कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रीय राजधान्याः विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्ययनं कुर्वतां 10,000 विद्यार्थिनां कृते छात्रावासानां निर्माणस्य निर्णयः अपि गृहीतः। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः भारतस्य बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थां प्रति दृढां प्रतिबद्धतां प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतस्य स्वतंत्र विदेशनीतिः रणनीतिकबद्धता च अस्याः प्रति

0: बद्धतायाः आधारौ स्तः। दिल्ल्याम् ICWA इति भारतीय विश्व प्रकरणानां परिषदः रजन्त जयन्ती समारोहे समापन सम्बोधनं कुर्वन् डॉ. जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अशान्तियुते वैश्विके परिवेशे भारतस्य उदयः निश्चितः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल केरल माहे चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमान कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजितायां द्वितीयायां विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां भारतम् अफगानिस्तान दलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार है हरिहरन और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे हरिहरन और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपको सुनवाते हैं इलाका फिल्म से। इस भजन को अपने स्वर से सजाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। अनजान की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है। तो भाई, गणपति बप्पा की जो है आप सबके घर में आगमन हो गया, ठीक है, तो क्यों ना भजन कार्यक्रम जो ये है उसका भजन हम आपको देवा पर ही सुनवाते हैं।

भाई देवा का आगमन भी हो गया और लोग गणपति बप्पा की पूजा भी शुरू कर चुके हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम का अगला भजन, गणपत फिल्म से। इस भजन को अपने स्वर से सजाया है विशाल मिश्रा ने। अक्षय त्रिपाठी की रचना है, विशाल मिश्रा का ही संगीत है और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच यूपीआई से लेन देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेन देन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कल यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है।
2: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
3: 19 वर्ष पहले रेल शुगर फैक्ट्री बंद होती, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा।
1: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी।

0: मंत्रिपरिषद ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब 3 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल नकहा नंबर 2 में 300 लोगों की क्षमता वाला ये कल्याण मंडपम 2 तल में बनाया गया है। मुख्यमंत्री आज ही IMA के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ जिले के प्रभारी मंत्री KV मलिक ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 माह तक चलने वाले अभियान की कार्य योजना के बारे में चर्चा की। शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों सेवा संकल्प अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
1: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितंबर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा। हम इसके बाद 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थी को देने का काम भी शुरू होगा।
0: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी।
2: मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि वहां अब राम कथा संग्रहालय का काम शुरू होगा।
3: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी, आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान की टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा, उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
2: प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों और बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग के 2,607 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके लिए ऑनलाइन

0: ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में कल अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव भी साझा किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता है। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर वाइड जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के तहत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा यह कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने PRD जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच UPI से लेन देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेन देन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुनाएंगे। राग है भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया है केदार पंडित ने। हारमोनियम पर हैं प्रमोद महते।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुन रहे थे। राग था भैरव, आपके साथ तबले पर संगत किया था केदार पंडित ने और हारमोनियम पर थे प्रमोद महते। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सकता है।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में

0: एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी फिर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध

0: निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद यह संख्या बढ़ी है। करीब 5170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ते के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक यूपीआई लेन देन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होंगे, खा कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के पेराई के सीजन के लिए शकर मिलों को नर्म शराइत के कर्जे फराहम करने का फैसला किया है, ताकि किसानों के बकायाजात अदा किए जा सके। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए माहाना तरगीबी रकम 3,000 रुपए से दोगुना करके 6,000 रुपए का फैसला किया है। कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले 10,000 तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। भारत अमेरिका मुश्तरका फौजी मशक युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तिजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने वाजे किया है कि यूपीआई के जरिए एक फर्द से दूसरे फर्द के दरमियान खा कितनी ही रकम का लेन देन किया गया हो, इस P2P लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने बताया कि कारोबारियों के लिए 2,000 रुपए तक की रकम की अदायगी और छोटे कारोबारियों के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क के तहत लेन देन भी मुफ्त रहेगा। वजारत ने बताया कि नतीजतन सभी P2M लेन देन का तकरीबन 96% हिस्सा इस उसूल से मुतासर नहीं होगा। NPCI ने बताया कि UPI की मर्चेंट डिस्काउंट शरह का नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क कुछ खास कारोबारी लेन देन पर आयद किया गया है। ये फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा, जबकि UPI सारिफिन के लिए मुफ्त रहेगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि छोटे कारोबारियों के हाथों UPI के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए MDR की मजमुई हुसूलियाबी के 5% हिस्से से एक खसूसी फंड कायम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: वजारत खजाना ने कहा है कि ये चार्जेस किसी फर्ज से किसी कारोबारी को 2,000 रुपए से ज्यादा की रकम के P2M लेन देन पर आयद होंगे। वजारत ने बताया कि UPI ऐप फराहम करने वाली कंपनियों को वाजे तौर पर मना कर दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की फीस या कोई पोशीदा चार्जेस आयद ना करें। वजारत ने कहा कि बैंकों को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कारोबारी अपनी रियायती शरह MDR के चार्जेस UPI लेन देन के लिए सार्फिन को मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। 0.4% की एक बराए नाम शरह P2M लेन देन पर आयद की जाएगी, और वो भी 2,000 रुपए की रकम से ज्यादा पर। अलबत्ता 75,000 रुपए और इससे ज्यादा की रकम वाले लेन देन पर ज्यादा चार्जेस लिए जाएंगे। MDR की ज्यादा से ज्यादा रकम फी लेन देन ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए होगी। अक्षत वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: महाराष्ट्र काबीना ने इमदाद बाहमी शकर मिलों के लिए तकरीबन 750 करोड़ रुपए के नर्म शराइत के कर्जों को मंजूरी दी है, ताकि 2025-26 के पेराई सीजन के लिए गन्ना किसानों के वाजिब और मुनाफा बख्श कीमतों के बकायाजात अदा किए जा सकें और 2026-27 के सीजन के लिए मदद की जा सके। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इमदाद बाहमी शकर मिलों के लिए तकरीबन 750 करोड़ रुपए के नर्म शराइत के कर्जों को मंजूरी देने का फैसला मुंबई में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में काबीना मीटिंग में किया गया। वजीर आला ने कहा कि रियासती सरकार इन कर्जों पर सूद का खर्च उठाएगी। जनाब फडणवीस ने कहा कि इस इकदाम से इमदाद बाहमी शकर मिलों को पेराई के मौजूदा सीजन के लिए गन्ना खरीदने और अपना कामकाज शुरू करने में सहूलत होगी और इससे शकर मिलों और किसानों दोनों को फायदा होगा। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र रियासत ने गन्ना किसानों को वाजिब और मुनाफा बख्श कीमतों की लगभग 99.5% बकायाजात अदा कर दिए हैं और वो इस एतबार से

मुकाबले 93 वोटों से दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तिजारत के वजीर टॉड मैकक्ले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरखा फायदे हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये आला क्वालिटी वाला तिजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरखा कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी।

0: 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरखा कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड की मार्केट में रसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया है। मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 160 रन का जीत का निशाना 14 ओवर्स और 5 गेंदों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर धुआंधार 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर 38 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। कप्तान इब्राहिम जदान ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रेड्डी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच कल दिल्ली में इसी मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश की पेशगोई की है। केरला माहे पंजाब मगरबी बंगाल में जैली हिमालयी खत्ते सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान बिहार जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड उड़ीसा और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज दुनिया भर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे कुर्रे अर्ज के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज में बैन अलाक्वामी ताउन की हसूलियाबियों को उजागर किया गया है। जल शक्ति की वजारत ने जल संचय जन भागीदारी बारिश के पानी का तहफ्फुज करो तहरीक के लिए एक तराना जारी किया है। इसे मारूफ गुलूकार और मूसीकार शंकर महादेवन ने गाया है। इस गाने से लोगों की शिरकत के जरिए पानी के तहफ्फुज और बारिश के पानी को वापस जमीन में पहुंचाने के लिए एक मुल्कगीर तहरीक को मूसीकी पर मबनी एक आवाज मिली है। वजारत ने बताया कि इस तराने का मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैगाम को हर गांव कस्बे स्कूल इदारे और घर तक पहुंचाना है और नौजवानों में जज्बा पैदा करना है कि वो पानी के तहफ्फुज के सफीर बने। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, इंजीनियर्स डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुबारकबाद दी, विश्वेश्वरैया के मुल्क की तामीर के विजन को याद किया। अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए दिफाई शोबे में मुतअद्दिद नई पहलकदमियों के आगाज किए जाने के मौके पर उनके इस बयान को नुमाया किया है कि दिफाई शोबे में अहम SME और स्टार्टअप्स के लिए आसान होगी राह। अखबार इंकलाब ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि अदलिया खुद को एहतसाब से बालातर रख कर एतमाद हासिल नहीं कर सकती। किशाओ प्रोजेक्ट से दिल्ली को मिलेगा 109.9 MCM इजाफी पानी।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक UPI लेन देन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होंगे, खा कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के पैराई के सीजन के लिए शकर मिलों को नर्म शराइत के कर्जे फराहम करने का फैसला किया है, ताकि किसानों के बकायाजात अदा किए जा सकें। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए माहाना तरगीबी रकम 3,000 रुपये से 2 गुना करके 6,000 रुपये करने का फैसला किया है। कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले 10,000 तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। भारत अमेरिका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तिजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। खबरनामा खत्म हुआ।
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز

0: पर और FM 100.3 MHz पर। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव, आप सभी लिसनर्स का आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सुविचारों से करते हैं, तो फेसबुक के माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने सुविचार हमें भेजे हैं। उस क्रम में सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्क्रीन ने अपना सुविचार भेजा है कि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाले की सुबह आती है। क्या बात है। और नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार है कि रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, जोड़ने से पहले 2 बार सोचें और तोड़ने से पहले 100 बार। क्या बात है। ये लिखते हैं कि नीलम जी नमस्कार, तो वेरी गुड मॉर्निंग नीरा जी। और इन्हीं का एक और सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। ये लिखती हैं कि शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। भाई सही बात है, एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी तब्दील कर देता है, बदल कर रख देता। और अब इस पोस्ट को जिन श्रोताओं ने लाइक किया है उनके नाम भी ले लेते हैं। डोमन ठाकुर हैं, विष्णु मिस्क्रीन है, जावेद हसन है, नीरा त्रिपाठी हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुविचार भेजे और कार्यक्रम में भाग लिया। और अब हम आपको बता देते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। तो भाई आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं सोचिए, जब ये पृथ्वी नहीं बचेगी तो हमारा क्या होगा, सोच कर देखिए, मतलब कितना भयावह दृश्य होगा। अच्छा, पृथ्वी जो है ना वो कई परतों से मिलकर बनी है, और भाई जब कई परतों से मिलकर बनी है तो ओजोन परत जो है ये पृथ्वी की पहली परत है। तो आपको बता दूं, आज का हमारा विषय है विश्व ओजोन दिवस। तो भाई इस विषय पर हम और भी बातें करते हैं, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, और आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के बिल्कुल करीब रहिएगा और हम अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और आज का हमारा विषय है विश्व ओजोन दिवस। तो भाई पृथ्वी की जो ये परत है वो सूर्य से आने वाले ख़तरनाक पैरा बैगनी किरणें जो हैं, यानी यूवी किरणें जो हैं, उन किरणों को पृथ्वी तक सीधे पहुंचने से रोकती है। ये किरणें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं श्रोताओं। ये किरणें मनुष्यों में त्वचा, कैंसर, आंखों की बीमारी और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकती हैं, यदि पृथ्वी पर ये सीधी तौर पर आ जाएं। और ओजोन परत जो है वो सूर्य की इन किरणों को पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती है। हमारी ओजोन परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसी वजह से 16 सितंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर सन 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए

मैट्रिमोनियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों और देशों को ओजोन परत के महत्व और इसके नुकसान के प्रति जागरूक करना है। ये दिन श्रोताओं ओजोन परत को बचाने और हानिकारक गैसों जैसे CFC के विकल्प खोजने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। भाई, हमारी पृथ्वी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपनी धरा की सुरक्षा हम करें। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ओजोन परत का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भाई, वैज्ञानिक नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि नीलम बहुत बातें कर रही हैं। जी नहीं, मुझे याद है कि आपको ले चलना है एक म्यूजिकल ब्रेक पर। तो भाई, जब हम बात करते हैं प्रकृति की, पृथ्वी की, तो एक गीत ये आप सुनिए। आप खूबसूरत वादियों में ना खो जाइएगा तो कहिएगा।

जब हरी भरी वादियाँ आसपास होती हैं और खूबसूरत विचार होते हैं तो दिल यही कहता है।

तो श्रोताओं, जब हरी भरी वादियाँ रहती हैं तो दिल कहता है ना कि रुक जाइए यहीं पर, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। भाई रुक भी जाइएगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, और कहीं भी रुक करके खुद को सुरक्षित रहिए रखिएगा क्योंकि ये मौसम जो है बदल रहा है, और बदलते मौसम जो है शरीर पे बहुत असर कर रहे हैं, है ना। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हम आपको बता दें कि ओजोन परत का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक रूप से इसे ओजोनोस्फीयर तथा पृथ्वी की सुरक्षा छतरी या जैव मंडल की सुरक्षा परत भी कहते हैं। इसे सुरक्षा छतरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से समताप मंडल पर स्थित है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये सूर्य की यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उन सभी की रक्षा करती है। और आज जो सूर्य की रोशनी इतनी तीखी और तेज हो गई है ना, तो वो सब हमारी ही गलती का परिणाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की रोशनी इतनी तीखी और तेज इसलिए हो गई है क्योंकि ओजोन परत में एक छोटा सा सुराख हो गया है। सोचिए, इस छोटे से सुराख से जब हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो जब ये परत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा? होगा ये श्रोताओं की हर तरफ ज्वाला ज्वाला ही रहे होगी, और इस भयावह दृश्य को देखने के लिए हम सब भी नहीं होंगे। और तो भाई श्रोताओं, अब भी समय है, अपनी धरा को सुरक्षित करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं, एक सार्थक कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी पर डिपेंड मत रहिए। आप सब अगर काम करेंगे मिलकर, हम सब मिलकर के, तो कुछ न कुछ तो सार्थक ही होगा, क्योंकि ओजोन फॉर लाइफ बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। और फिर चलते चलते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय नए दिन के साथ। अब आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहती है। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। और चलते चलते अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका

0: किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ नए अंदाज में करें, क्या कहते हैं? तो भाई चलते हैं, बातें करते हैं उस सादगी की जिसने श्रृंगार नहीं किया, कोई आभूषण नहीं पहना, फिर भी बहुत खूबसूरत है। किसी को देखकर ऐसा ही महसूस होता है ना, तो और जब ऐसा महसूस होता है तो ये गीत तो बनता है। मोरा फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास और साधना सरगम जी के स्वर में। इंदिवर की रचना है और इस गीत को संगीत से सजाया है विजू शाह ने। और ये गीत चला आप सभी के रेडियो सेट पर। सादगी की बात हो तो ये गीत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है।

मैं श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और जब सादिकी की बात होती है तो ये गीत सचमुच बहुत अच्छा लगता है। क्यों? और जब हम सादिकी की बात कर रहे हैं, बिना श्रृंगार की बात कर रहे हैं, तो जब किसी के हाथ की चूड़ियाँ बजती हैं, कंगना खनकता है, तो दिल कुछ यूं कह उठता है। लीजिए सुनिए शौकीन फिल्म का गीत किशोर कुमार के आवाज़ में। और इस गीत की रचना की है योगेश ने, आर डी बर्मन का संगीत है और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

भाई खूबसूरती जो है सादगी में ही होती है, क्योंकि जब आपने कोई श्रृंगार नहीं किया हो, कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया हो, हालांकि आजकल बहुत सारे मेकअप चल रहे हैं, तो जब आप बिना मेकअप के होते हो और एक खूबसूरत स्माइल आपके चेहरे पर होती है ना, तो वो खूबसूरती तो भाई क्या बात है। और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा। इस गीत को अपने स्वर से सजाया है अमान मलिक और अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है वेदा और कुणाल वर्मा ने इस गीत की रचना की है। अमान मलिक का ही संगीत है। ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत और आनंद लीजिए इस गीत का।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये है कार्यक्रम का आखिरी नगमा और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बनी रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश बाबू का।
1: पीलीभीत में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समेत दिशा की बैठक गांधी सभागार में जिले के सांसद एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, बाढ़ खंड, विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन, वन विभाग, पशुपालन विभाग, पूर्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHI, कृषि विभाग, बेसिक शिक्षा आदि विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की, प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या की जानकारी प्राप्त की तथा धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बाढ़ एवं कटान से बचाव की समीक्षा में अधिशासी अभियंता बाढ़खंड द्वारा बताया गया कि जनपद में कुल 11 परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं, जिनके कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए गए हैं। विद्युत विभाग की समीक्षा में अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि जनपद में 119 गाँव चिन्हित हुए हैं, जिनमें शीघ्र ही विद्युतीकरण कराया जाएगा। पीलीभीत जिले में 2 से 5 अक्टूबर के बीच लगने वाले विशेष शिविर में दिव्यांगों के कृत्रिम हाथ निशुल्क लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया
2: 2 से 5 अक्टूबर तक अंकुर राइस मिल है निःशक्त जनसेवा संस्थान है और इनाली फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 लोगों को हाथ लगने हैं। अभी लगभग 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी यहां पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और 2 से 5 अक्टूबर के बीच में उसको वो कृत्रिम हाथ मुफ्त में लगेगा, जिससे व्यक्ति काम करने लायक हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी पहल है जो जनपद पीलीभीत में हो रही है।
1: पीलीभीत जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाई गई लोक अदालत में 2,13,960 वादों का निस्तारण हुआ। इसमें 11,05,13,960 रुपए के बैंक ऋण एवं अन्य मामले आपसी सुलह समझौते से निपटाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अरुण कुमार यशुदास ने बताया कि जिला न्यायालय के 3,955, बैंक ऋण के 965, श्रम वाद 167, उपभोक्ता फोरम के 10 और परिवार न्यायालय में लंबित 20 वादों का निस्तारण इस लोक अदालत में कराया गया। पीलीभीत में गन्ना विकास विभाग 1,207 गांवों के 2,00,000 से अधिक गन्ना किसानों को प्राथमिक गन्ना कैलेंडर उपलब्ध कराएगा। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया गन्ना सर्वे के बाद सट्टा प्रदर्शन भी पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है। समितियों पर सट्टा मेले आयोजित किए जा रहे हैं, किसानों को प्री सर्वे कैलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और इन्हें ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है। पीलीभीत में 15 करोड़ की लागत से एपीडा द्वारा खोले गए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया। मेरठ के वादे आदेश का दूसरा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस केंद्र का लाभ पीलीभीत ही नहीं देश के दूसरे राज्यों और दुनिया भर के अन्य देशों के किसान भी उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा
3: जनपद विश्व भर में विश्वास दिलाता हूँ बासमती चावल के उत्पाद के लिए जाना जाएगा और पीलीभीत जनपद के किसानों की मेहनत का बासमती का वो चावल और वो दाना देश के और विश्व के कोने कोने तक पहुँचेगा।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पीडा के इस केंद्र का लाभ पीलीभीत के अलावा प्रदेश के 29 जिलों के किसानों को भी मिलेगा जिन्हें बासमती उत्पादन में GI टैग प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायक साबित होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश धान, गेहूं, गन्ना और चीनी उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है और सरकार ने फसलों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। श्री शाही ने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली माफ करने, किसान सम्मान योजना, खाद, बीज, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों पर करोड़ों की सब्सिडी देने सहित कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान यहाँ लगाए गए सरकारी विभागों के स्टालों और कृषि फार्म का भी निरीक्षण किया गया और समूह तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। पीलीभीत में बाढ़ और बरसात से जलभराव होने से फसलों में भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी गन्ने की फसल गिर गई है और धान की फसल में कई तरह के रोग कीट लग गए हैं। पानी घटने के बाद शारदा नदी धनारा घाट के पास तेज गति से कटान कर रही है। रामनगरिया मेला स्थल के अलावा कई एकड़ कृषि योग्य जमीनें भी नदी में समा गई हैं। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और जिलाधिकारी ने नुकसान का सर्वे कराकर

0: पूर्व विधायक बाबूराम पासवान ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके लोगों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने को कहा है।
1: पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
2: अलीगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित इको फ्रेंडली श्री गणेश प्रतिमा वितरण समारोह को संबोधित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पीओपी की प्रतिमाओं से न केवल नदियां प्रदूषित होती हैं, बल्कि जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल पर भी जोर दिया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने कहा कि मिट्टी की प्रतिमाओं की स्थापना और विसर्जन सनातन की परंपरा है, इससे नदियां भी जीवित होती हैं। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने कहा,
3: इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, इससे जब विसर्जन के समय नदियों में भी प्रदूषण नहीं फैलेगा, इसमें अनाज भी पड़ा हुआ है, तो जीव जंतु जो नदियों में है वो भी इससे पोषण पाएंगे और नदियां समृद्ध होंगी।
2: अलीगढ़ जिले में H1N1 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RN सिंह के निर्देशन में संदिग्ध मरीजों की जांच, संक्रमित मरीजों की निगरानी तथा आवश्यक उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 232 RT-PCR जांच कराई जा चुकी है, जिनमें अब तक 57 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 28 मरीज स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं, जबकि 17 मरीजों का घर पर उपचार एवं चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। 4 नए मामले भी प्रकाश में आए हैं। जिले में H1N1 से अब तक किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 103 लोगों का टीकाकरण भी कराया जा चुका है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों एवं संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों में H1N1 के उपचार में प्रयुक्त आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि घबराने की बजाय सावधानी बरतें। सर्दी, खांसी, बुखार अथवा सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक परामर्श लें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थिति पर निरंतर नजर रख रही हैं तथा आवश्यकता अनुसार जांच, उपचार और निगरानी की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। अलीगढ़ जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई गति देने के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देशन में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है। इसके तहत IAS, PCS सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन बैच का निःशुल्क सब्सक्रिप्शन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी जरूरतों को समझने के बाद जिलाधिकारी ने आधुनिक डिजिटल शिक्षा को उनकी तैयारी से जोड़ने की दिशा में पहल की। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट, JEE, इंजीनियरिंग एवं NDA की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जोड़ने की योजना है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की प्रभावी मॉनिटरिंग और नियमित समीक्षा का परिणाम अब CM डैशबोर्ड की रैंकिंग में भी दिखाई देने लगा है। अगस्त माह की विकास कार्यों की समीक्षा में अलीगढ़ ने प्रदेश में 37वीं रैंक हासिल की है, जबकि जुलाई में जिला 42वें स्थान पर था। इस तरह एक ही माह में जिले ने 5 पायदान की उल्लेखनीय छलांग लगाई है। कलेक्टिव सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में CM डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में यह प्रगति सामने आई। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों के समन्वित प्रयासों और जिलाधिकारी की लगातार मॉनिटरिंग से जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास एवं विकास कार्यों में गति, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि CM डैशबोर्ड पर रैंकिंग सुधार के साथ साथ शासन की योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन और आम जन को समय से लाभ मिलना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से।
1: नवाए वक्त बनकर जो दिलों में गूंजती रहे, अदब की अंजुमन में वो सदा तलाश कर। जी हां सामिन, जब कोई सदा वक्त की बंदिशों को तोड़कर दिलों की धड़कन बन जाती है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात और हमारी जिंदगी की तमाम हकीकतें जब इन लफ्जों का पैराया अख्तियार करती हैं तो रूह को तस्कीन मिलती है। इन्हीं पाकीज़ा और दिलकश सदाओं की साए में आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से मैं निकहत सिद्दीकी आपकी रफीके सफर लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। उम्मीद है आप सब इस नई सुबह की ताजगी और मसरूफियत के बीच पूरी तरह खैरवाफियत से होंगे। सामिन, सुबह का वक्त नई उम्मीदों का वक्त होता है, दुआओं का वक्त होता है, और जब इस सुबह का आगाज अदब, तहजीब और शाइस्ता अल्फाज के साथ हो तो रूह को एक अजब इत्मीनान हासिल होता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपके दिन की शुरुआत जज्बात की पाकीजगी और लफ्जों की ताजगी के साथ हो। सामिन, आज की हमारी ये महफिल उर्दू अदब, तारीख और जज्बात का एक ऐसा हसीन कारवां है जो आपके पूरे दिन को एक नई तवानाई और जहनी सुकून से सरशार कर देगा। आज के इस गुलदस्ते में हमने दो मुख्तलिफ और नायाब रंग पिरोए हैं। पहला रंग एक संजीदा और तारीखी मकाले का है और दूसरा रंग जज्बात से लबरेज एक अजीम कलाम का है। तो आइए बिला ताखीर रुख करते हैं आज की इस महफिल के सबसे पहले और निहायत अहम पड़ाव की जानिब। सामिन, उर्दू अदब की तारीख जब भी रकम की जाएगी कुछ नाम ऐसे होंगे जो आसमानी अदब पर आफताब की तरह तकयामत रोशन रहेंगे। एक ऐसी ही अजीम, बेबाग और बकमाल शख्सियत की जात और मर्तबे पर आज का हमारा ये मकाला मबनी है। आज हमारे इस मकाले का उनवान एक ऐसी अजीम शख्सियत से वावस्ता है जिन्होंने अपनी शायरी से शमा इनकलाब भी जलाई और अमन का परचम भी लहराया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मखदूम मुहिउद्दीन की। मखदूम मुहिउद्दीन उर्दू अदब की वो रोशन मीनार है जिनकी शख्सियत के दो बहुत ही खास पहलू थे। एक तरफ उनकी शायरी में जुल्म, नाइंसाफी और गुर्बत के खिलाफ एक सुलगता हुआ इनकलाब था, तो दूसरी तरफ उनके दिल में इंसानियत के लिए अमन, चैन और मोहब्बत का समंदर मचल रहा था। वो जितने बड़े इनकलाबी थे उतने ही बड़े अमन के सफीर भी थे। तो आइए मखदूम मुहिउद्दीन के इसी अजीम और रंग बिरंगी शख्सियत को गहराई से समझने के लिए सुनते हैं आज का ये खास मकाला जिसका मौजू है मखदूम मुहिउद्दीन, इनकलाब का शायर, अमन का सफीर। मकाला निगार हैं डॉक्टर अर्शिया सरफराज। समाद फरमाए।
2: तरक्की पसंद शोरा की शायरी का आगाज रूमानी अंदाज में ही हुआ है। मखदूम की शायरी की इब्तिदा भी रूमानी अंदाज में होती है। उन्होंने किसी शायर का तलम्मुस इख्तियार नहीं किया। उनके हमअसरों में फैज, सरदार जाफरी, मजाज, साहिर, मजरू और जज्बी वगैरह शामिल हैं। मखदूम की शायरी में हुस्न व इश्क के मामलात क्लासिकी शायरी से कदरे मुख्तलिफ हैं, लिहाजा उनका महबूब रिवायती महबूब से मुनफरिद है। उनकी ज़िंदगी का निसफ हिस्सा गुरबत व अफलास, नाउम्मीदी और सख्त मसाइब में गुजरा, लेकिन उनकी तबीयत में रजाइयत थी जिससे उन्होंने तस्वीर का रोशन पहलू उजागर करने की कोशिश की। उनकी इब्तदाई रोमानी नज़मों में तूर, सागर के किनारे, तिलंगन, आसमानी लोरियाँ, सजदा, मोहब्बत की छाँव, लम्हे रुखसत, इंतज़ार, चारागर, याद है वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उनकी शायरी के तीन मजमूए सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसात रक्स हैं। मखदूम का पहला मजमूए कलाम सुर्ख सवेरा की पहली नज्म तूर है। हयात के एतबार से ये मुखम्मस है और कई बंदों पर मुश्तमिल है। नौजवानी की मोहब्बत से मुतालिक इस नज्म का मुताला करने पर एक मंजर से शायर की पाकीज़ा मोहब्बत और उसकी मासूमियत का एहसास होता है। बंद मुलाहिजा कीजिए, यहीं की थी मोहब्बत के सबक की इब्तिदा मैंने, यहीं की जुरत इजहार हरफ मुद्दा मैंने, यहीं देखे थे अश्वे नाज अंदाजे हया मैंने, यहीं पहले सुनी थी दिल धड़कने की सदा मैंने, यहीं खेतों में पानी के किनारे याद है अब भी। शायर ने किस कदर सीधे सादे अल्फाज और आसान जबान के जरिए अपने जज्बात और एहसास को वसीले इजहार बनाया।

आया है। मखदूम का अंदाज और लबो लहजा दूसरे रुमानी शोरा से काफ़ी हद तक मुनफरिद है। उनके अछूतेपन की मिसाल मुलाहजा फरमाएं। न माथे पर शिकन होती न जब तेवर बदलते थे, खुदा भी मुस्कुरा देता था जब हम प्यार करते थे। मस्कुरा बाला शेर का मिसरा खुदा भी मुस्कुरा देता था जब हम प्यार करते थे पूरी नज्म का तारुफ कराता है। इसमें नौजवान रूमानी शायर ने अपनी शेरी एतिकाद का इजहार किया है कि इस दुनिया में मोहब्बत से ज़्यादा अहम और कुछ नहीं है। मखदूम की कई नज़में रोमानियत से भरपूर हैं, लेकिन नज़्म इंतज़ार उनकी बेचैनी और बेबसी की तर्जुमान है। इस नज़्म का एक एक शेर महरूमी और नाकामी के एहसास से पुर है। इब्तिदा में तो उन्हें यकीन था कि उनका ये इंतज़ार एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उनका महबूब ज़रूर आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये उम्मीद भी जाती रही। रात भर दीदए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। उर्दू शायरी में मखदूम रूमानी शायर की हैसियत से शामिल हुए थे। उन्हें अपनी शेरी मौजूआत में तब्दीली करनी पड़ी। वो दौर तरक्की पसंद तहरीक का दौर था, जिसमें शायर और अदीब एक मकसद के तहत अदब की तख्लीक कर रहे थे। मखदूम ने तरक्की पसंदी के मफहूम को अच्छी तरह समझ लिया था। वो इंसानी माशरे को पस्ती से निकाल कर बुलंदी तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद थे। मार्क्सिज्म का मुताला करते हुए 1936 में कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन बन गए। 1939 में नागपुर के कॉमरेड ग्रुप की मदद से हैदराबाद में तलबा तंजीम कायम की, जिससे उनकी अवामी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ, जिसके चलते उन्हें बहुत सारे मसायब का सामना करना पड़ा। कई बार कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त कीं और इस दौरान रूपोश भी हुए। उसका ही नतीजा है कि उनके कलम से अंधेरा, जंग, सिपाही, बागी, मशरक, मौत का गीत, हवेली, जंग आज़ादी वगैरह जैसी नज़में तख्लीक हुईं और इस तरह उनकी शायरी रूमान और इनकलाब का खूबसूरत इम्तिजाज बन गई। मखदूम की इनकलाबी शायरी में नज़्म बागी सर फहरिस्त है। इस नज़्म में वो बगावत का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें नहायत घन गरज के साथ जज्बात का इजहार किया जा रहा है। उनके बुलंद हौसले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो एक शेर दिल और बहादुर नौजवान की तरह हालात से लड़ने की ताकत रखता है। उसने इरादा कर लिया है कि हमारा जज्बे बेदारी अब पस्त नहीं होगा, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। साम्राज्य ताकतों के जुल्म व सितम को बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब उनका खात्मा करने का वक्त नज़दीक आ गया है, और जब तक ये जुल्म व इस्तिबदाद ख़त्म नहीं होगा, तब तक बेकरारी के आलम में उसे कहीं भी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। उसे खुद पर एतमाद है कि वो इस सरमायादाराना निज़ाम से टक्कर ले सकता है। राद हूँ, बर्क हूँ, बेचैन हूँ, पारा हूँ मैं, खुद परस्तार, खुदागाह, खुदारा हूँ मैं, गर्दन जुल्म कटे जिससे वो आरा हूँ मैं, खिरमन जौर जला दे वो शरारा हूँ मैं, मेरी फरियाद पे अहले दुवल अंगुश्त बागोश, ला तबर खून के दरिया में नहाने दे मुझे। उर्दू शायरी में मशरक और मगरब इस्तियाराती शक्ल में इस्तेमाल हुए हैं। मशरक हक, रोशनी, ईसार व क़ुरबानी और वफादारी का इस्तियारा है, जबकि मगरब उसके बरक्स बातिल, तारीकी और मादियत का इस्तियारा समझा जाता है। उन्होंने मायूसी और नाउम्मीदी के अंधे कुएं में पड़े मशरक की तस्वीर कशी की है, जिसके बाजू झड़ चुके हैं और जो मरीज़े दिख की तरह खुलकर सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करता है। ये एक बेगोर व कफन नंगी नाश जैसा है, जो मगरिब की हवस का शिकार होकर अपनी इज्जत व आबरू का सौदा कर चुका है। झड़ चुके हैं दस्त बाजू जिसके उस मशरक को देख, खेलती है सांस सीने में मरीज़े दिख को देख, एक नंगी नाश है गोरो कफन ठिठरी हुई, मगरबी चीलों का लुकमा खून में लिथड़ी हुई। नज्म का आखिरी शेर एहतजाज की सूरत में ऐसे उभरता है जैसे गहरे अंधेरे में अचानक रोशनी की किसी किरण का गुजर हो जाए। इस शेर में शायर फरसूदा निज़ाम को उखाड़ फेंकने का इरादा जाहिर करता है, साथ ही एक नई दुनिया की तामीर की बात करता है, जहाँ बसने वाले नई फिक्र और नई सोच से लबरेज होंगे। इस जमीन पर मौत पर वरदा उठाया जाएगा, एक नई दुनिया, नया आदम बनाया जाएगा। मखदूम उस दौर में रायज जागीरदाराना निज़ाम से सख्त नफरत करते हैं। मजदूर और सरमायादार के दरमियान हुकूक की गैर मुसावी तकसीम को वो फरसूदा और लग्व करार देते हैं। इस मौजू पर एक नज़्म हवेली कही है, जिसमें उन्होंने समाज के खोखलेपन को बेनकाब किया है। वो समाज जहाँ इंसानी ज़िंदगी तरक्की पजीर तो है, लेकिन उसकी हैसियत बस एक बोसीदा खंडर के मानिंद है, जहाँ महाजन और अमीरों का बोलबाला है और मजहब भी लायानी सी चीज़ है, जिसकी आड़ में सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम परवरिश पा रहे हैं। एक तरफ काशी के ब्राह्मण हैं।

0: ऐसे मौसम से हो ऐ काश कभी तू दो चार, तेरी पलकों पे भी ठहरे कभी जुगनू दो चार, तेरी पलकों पे भी ठहरे कभी जुगनू दो चार, संग दिल को भी वो हमवार बना लेते हैं, संग दिल को भी वो हमवार बना लेते हैं, जिस जगह जाके बहा देते हैं आंसू दो चार, जिस जगह जाके बहा देते हैं आंसू दो चार, वो अदा क्या है कि जिसके न इशारे हो कई, वो है क्या बात कि जिसके न हो पहलू दो चार, किससे हुज्जत करूं मैं किससे करूं अब तकरार, थे कभी हलके यारा में अरस्तू दो चार, थे कभी हलके यारा में अरस्तू दो चार। आइए गजल का मतलब और कुछ अशार और मुलादा फरमाएं कि मेरी खता पर क्यों हैरानी होती है, मेरी खता पर क्यों हैरानी होती है, दानाओं से भी नादानी होती है, दानाओं से भी नादानी होती है। और हुस्न मतला मुलादा फरमाए कि जिसके दिल में बेईमानी होती है, जिसके दिल में बेईमानी होती है, बेरौनक उसकी पेशानी होती है, बेरौनक उसकी पेशानी होती है, तेरा दर्द जगाए रखता है मुझको, तेरा दर्द जगाए रखता है मुझको, जब महताब ने चादर तानी होती है, जब महताब ने चादर तानी होती है, रखते हैं एल्बम में उतना ही महफूज, रखते हैं एल्बम में उतना ही महफूज, जितनी जो तस्वीर पुरानी होती है, जितनी जो तस्वीर पुरानी होती है। और जब कोई मुश्किल कर देता है जीना, जब कोई मुश्किल कर देता है जीना, तब जीने में कुछ आसानी होती है, तब जीने में कुछ आसानी होती है, तुम क्या जानो बहते अश्क की ताकत को, तुम क्या जानो बहते अश्क की ताकत को, कतरे कतरे में तुगयानी होती है, कतरे कतरे में तुगयानी होती है। मक्ता मुलादा फरमाए अपनी तबाही के पीछे सच है अंबर, अपनी तबाही के पीछे सच है अंबर, अपनों ही की कारिस्तानी होती है।
1: अभी आप जनाब खुर्शीद अंबर की कलाम से महजूज़ हो रहे थे। तो सामईन, आज के इस प्रोग्राम में हमने मखदूम मुहिउद्दीन के इनकलाबी और अमन पसंद ख्यालात को भी जाना और कलाम के जरिए जज्बात की गहराई को भी महसूस किया। इसी के साथ अब ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया गया। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की। और अब अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को इस प्रोग्राम से इजाजत दें कुछ यूं कि अल्फाजों के सिलसिले तो चलते रहेंगे, ये महफिलें यूं ही सजती रहेंगी, मोहब्बत जिंदा रखिए दिलों में, दूरियां खुद ब खुद मिटती रहेंगी। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम मीडियम वेव 400।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पामेला नंदी के स्वर में गाए गीत और भजन सुनवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं पामेला नंदी के स्वर में गाया ये भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज की कलाकार हैं पामेला नंदी। पामेला नंदी के स्वर में लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पमेला नंदी के स्वर में गाए गीत का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: पैसा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2000 रुपए से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध

0: आने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रखे हैं। यह अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीक क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैक्काल में भी आज स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 दिन में बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं केरलम के एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कुन्नूर जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच भी कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05:12 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज का। तो वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी जी की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है, तो आइए सुनते हैं बातचीत का ये दूसरा भाग।

0: श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ प्रयाग।
1: तो श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुकेश उपाध्याय जी से अभिनय के बारे में, उनके करियर के

0: बारे में और उनकी आगे की योजनाओं के बारे में।
1: अभय जी, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो एनसीजेआरसीसी के उप निदेशक आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम लोग वहाँ पर उस प्रश्न को हम लोगों ने छोड़ा था कि भाई आपने पीएचडी भी की, आप रंगमंच अभिनय भी करते रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अभिनय किया लेकिन उनका ध्यान कभी ये जो एक प्रशासनिक या खुद को मजबूत करने की ओर बहुत कम रहा है। तो किसका योगदान रहा कि आपका जो एक नजरिया है अभिनय के साथ साथ इस ओर भी उसने बराबर फोकस करवाया कि नहीं नहीं नहीं यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो।
2: तो मैं इसके पहले हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में
1: जी
2: सहायक आचार्य था प्रदर्शनकारी कला में, और वहाँ पे लगभग भारतवर्ष से ऐसे बच्चे आते हैं जहाँ पे उड़ीसा भी है, कलकत्ता भी है, बिहार भी है। तो उन बच्चों को उनके साथ सीखने का, मैं भी सीखता था उनके साथ, तो सीखने का अनुभव थोड़ा सा रहा है मेरा वहाँ पे। लेकिन एक पूरी तरह से अपने आप को, जो मैं चाहता हूँ कि मैं लगातार कुछ ना कुछ अभिनय करता रहूँ, निर्देशन करता रहूँ, कुछ सीखता रहूँ, क्योंकि इंसान जब करता है तो सीखता है। वहाँ पे वो कुछ ऐसे कारण थे, वहाँ पे नहीं मेरे को मौका मिल पाता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा अवसर मिल रहा है प्रयागराज में आने का, और प्रयागराज में अभिनय किया भी है, यहाँ काफ़ी जुड़ाव रहा है यहाँ के रंगमंच से, तो ऐसा अनुभव लेने के लिए मैं यहाँ पे, ऐसा फॉर्म निकला तो मैंने प्रयास किया और हो गया। तो मैं सोचा कि अब कला और कलाकारों के बीच रह के कुछ सीखने का अवसर मुझे ज़रूर मिलेगा।
1: अभय जी, लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं और डॉक्टर मुकेश एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं।
0: इसी विषय पे मैं डॉक्टर मुकेश आपसे पूछना चाहूँगा कि
2: जी
0: आपने अभिनय भी किया, आप अभिनेता के कार्य से भी जुड़े हुए हैं अभी
2: जी
0: भी,
2: जी
0: आपने निर्देशन भी किया और आप शिक्षा के कार्य से भी जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो तीनों कार्य क्या आपको एक दूसरे कार्य में सहायता करते हैं? क्यों, जो तीनों विशेषज्ञता है, तीनों एक्सपर्टीज है, जैसे कि आपका अभिनेता का जीवन है, जो अभिनय की शिक्षा है, क्या जब आप एक शिक्षक के रूप में आते हैं स्टूडेंट्स के सामने, विद्यार्थियों के सामने, क्या वो सहयोग करती है, या एक निर्देशक का रोल जो आपने निभाया है, क्या वो सहयोग करती है एज ए शिक्षक, एक शिक्षक को एक स्टूडेंट तक अपनी बात पहुँचाने के लिए?
2: जी, मैं अगर यहाँ प्रयागराज की बात करूँ, यहाँ पे मैं जिस विभाग में हूँ, तो यहाँ जब कलाकार मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनके मर्म को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ। वो जब
1: जी
2: मुझसे कोई भी बात कहते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने भी उस जीवन को जिया है, और उनको अपनी कला को और उनका जो परिवार है, कलाकार का जो परिवार है, उनको आगे ले जाने के लिए एक उनकी जो बातें रहती हैं, मैं उस तरह प्रयास करता हूँ कि इसको समझूं और उनको मौका दूं जिस भी विधा के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कला, जिस तरह से आप लोक कला का और जो जनजातीय कला है, बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो मर रही हैं। तो मैं खुद भी उस कलाकार से बात करता हूँ कि और कौन सी विधा है जिसपे अभी हम, जिसको कहते हैं डाइंग आर्ट, है ना, वो ऐसी कौन सी कला है जो मर रही है। तो उनसे इस तरह से बात करके मैं प्रयास करता हूँ कि उस कला को थोड़ा सा संवर्धित करने के लिए उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंजमेंट करें, कुछ संगोष्ठियाँ करें। तो इस तरह प्रयास मैं सोच रहा हूँ, मतलब सोच क्या रहा हूँ, कर भी रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे आने के बाद, और
1: जी
2: आगे भी सोच रहा हूँ, करता रहूँ मैं।
1: अच्छा, आपको ये कभी नहीं लगा कि आपने चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी संस्थान में
2: जी
1: सचिव रहे, फिर हरियाणा में आपने शिक्षक के तौर पर काम किया, फिर यहाँ पर, तो ये कभी नहीं लगा कि भाई मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे?
2: नहीं,
1: आज भी
2: मन
1: घबराता है?
2: मन तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा अपना शहर रहा है ये,
1: जी
2: और यहाँ पे सभी चेहरे मेरे से परिचित हैं, सबको जानता हूँ मैं,
1: जी
2: काफ़ी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उन लोग से भी परिचय है। तो जब थोड़ा लगता है कि यहाँ का काम बोझिल, मतलब ऐसा मुझे तंग कर रहा है, तो मैं जाके वहाँ बैठ जाता हूँ, तो अपने पुराने दिन याद करके, या कुछ रीडिंग कर लेते हैं, तो उस तरह से फिर एक अभिनेता वाला काम भी हो जाता है, और दोनों बैलेंस होता रहता है,
1: अच्छा,
2: एडमिनिस्ट्रेशन।
1: पुराने दिन जैसे आप कह रहे हैं
2: जी
1: कि बड़े सुकूनदायक होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता ही है। पुराने दिनों में शायद खास बात होती है ना कि हम कुछ पुराने की ओर लौटते हैं तो अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। तो
2: जी
1: मैं आपको उसी ओर लौटाना चाहती हूँ कि कोई
2: बिल्कुल,
1: ऐसा गाना जो आप सुनते रहे हों और सुकून का एहसास होता हो।
2: एक आनंद फिल्म का है, कहीं दूर जब
1: दिन
2: दिन
1: ढल
2: ढल
1: जाए,
2: जाए,
1: हाँ,
2: जी
1: शाम की दुल्हन
2: बुद्ध ने
1: जाए,
2: चुराए
1: आहा,
2: चुपके से आए।
3: कहीं दूर

0: कितने दिन का अभ्यास था और हुआ कैसा वो?
1: वो बहुत ही मजेदार था। आकाशवाणी का भी उसमें एक पहल थी, उसमें सहयोग रहा है
0: जी,
1: आकाशवाणी का
0: जी,
1: और
0: जी।
1: उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ के
0: आर्काइव में है।
1: उस वक्त हम सब, हमारी टीम पूरी आके इसी शायद प्रांगण में बैठी हुई थी किसी स्टूडियो रूम में। मुझे लगता है 14-15 की बात रही होगी।
0: एमए कर चुके थे आप?
1: एमए कर चुका था
0: जी।
1: 2013 में एमए कंप्लीट कर चुका था। तो इसी प्रांगण में उसकी रिकॉर्डिंग हुई और मैं उसमें राम विक्रद्वार में था
0: जी,
1: और चित्रकूट में गए। उस वक्त गर्मी थी और रामायण मेला वहाँ लगता है।
0: हाँ, अभी हमारी टीम गई थी तो हम लोगों का भी जुड़ाव उस मेले से बहुत प्रगाढ़ रहा है हमारे केंद्र का।
1: तो मैं उस मेले में गया, वो मेला इतना भव्य था और दर्शकों की संख्या देख के तो मतलब ऐसा होता है कई बार कि मतलब मेरा ये है कि यार बहुत बहुत से ऐसे करेक्टर्स होंगे, मतलब एक्टर्स होंगे जो मंच पे जाने से पहले कुछ समय तक
0: याद करते होंगे या
1: नहीं,
0: हाँ,
1: डरने की प्रवृत्ति रहती है।
0: ओह,
1: मंच का जो एक डर है ना, हमेशा मुझे लगता है बना रहना चाहिए अभिनेता का। अगर वो डर टूट गया तो फिर वो जिस कॉन्फिडेंस से कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा वो पता नहीं। तो वो डर मुझे रहा और जब हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं फिर वो डर धीरे धीरे निकल जाता है
0: जी।
1: तो वो कोई ऑडिटोरियम नहीं था, खुला मंच था। तो जब हम उस खुले मंच पे गए तो वहाँ पे माइक की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी।
0: फिर क्या
1: तो
0: हुआ?
1: जैसे ऑडिटोरियम प्लेट माइक्स लगते हैं नीचे, फुट माइक बोलते हैं जिसको, तो वो रहता है तो आवाज़ कैच करता है और स्टैंडिंग माइक जो है वो आवाज़ कैच नहीं करता। तो बार बार हमें माइक का सहारा लेके और माइक के पास जाके बोलना पड़ रहा था
0: जी।
1: तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन हाँ दिक्कत के साथ सीखना भी आरंभ हो जाता है।
0: ये तो सोने पे सुहागा वाली, मतलब एक कठिनाई में सीखना,
1: बिल्कुल
0: अपॉर्चुनिटी।
1: अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर के लिए हमें कष्ट हुआ, तो बहुत अच्छा नाटक हमने किया क्योंकि ये नाटक तो है, टीम वर्क है, तो पूरी टीम का अच्छा सहयोग रहा।
0: जब लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि आम लोग को पसंद आता है और उनके लिए भगवान राम तो राम है
1: जी,
0: और वो एकदम हकीकत मानते हैं,
1: बिल्कुल
0: बड़े बूढ़े प्रणाम करते हैं, बच्चे झुकते हैं, कैसा एहसास रहा था उस वक्त जब ऐसा हुआ आपके साथ?
1: ऐसा लगता है कि हम स्वयं कभी उस वक्त में चले जाएं और राम जी को कभी देख पाएं, क्योंकि जो मूरत हमारे अंदर राम जी की देख रहे हैं लोग, अगर हम स्वयं राम जी तक अगर जा पाए, उनको देख पाए, उस काल को देख पाए, उस कालखंड को, जो उस वक्त के जो जनता थी या जो भी उस वक्त के लोग थे जो उनको प्रणाम करते थे, वो अगर हम स्वयं कर पाए तो अच्छा लगेगा।
0: गूज़बम्स होने लगते ना ऐसी बात सुन के।
2: डॉक्टर मुकेश, आपने बताया कि आप अभिनय तो करते ही हैं, अभिनय के साथ साथ आप निर्देशन के कार्य से भी जुड़े हैं, आपने निर्देशन भी किया है रंगमंच पे। जब आप एक निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं तो आपने जब किसी करेक्टर को लिया, किसी स्क्रिप्ट को लिया, तो आपने करेक्टर को लिया अपने मन में, तो अपने मन में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका बना ली कि इस तरह होना चाहिए। तो जब एक अभिनेता से आप उस तरह की एक्टिंग निकलवाते हैं, क्योंकि निर्देशक का कार्य यही है
1: जी,
2: तो कितना मुश्किल होता है, कितना अंतर होता है उस टेबल के उस तरफ और इस तरफ में?
1: तो जो अभिनेता होता है वो नाटक को पढ़ता है, हर करेक्टर्स के बारे में भी जानता है अपने करेक्टर के अलावा, लेकिन उसका काम सिर्फ अभिनय होता है, या अगर डायरेक्टर बोले, क्योंकि बहुत बार अभिनेता जो होता है वो डायरेक्टर्स एक्टर होता है, वो मतलब जो डायरेक्टर बोलेगा वैसा ही वो अभिनेता करेगा। कई बार जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बोल देते हैं नहीं, आप अपनी मतलब इस नाटक को आपने पढ़ा, इस कहानी को आपने पढ़ा, आप उसको एक्ट्रेस पे छोड़ देते हैं, इसको आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं अपने करेक्टर को, पूरे नाटक को नहीं, अपने करेक्टर को। तो ये एज एन एक्टर आपके पास लिबर्टी हो जाती है कि आप कुछ उसमें तब्दीलियाँ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको किस भी तरीके से ढाल सकते हो। लेकिन जब वही डायरेक्टर की बात आती है तो डायरेक्टर के ऊपर पूरे उस नाटक का दबाव रहता है, उसमें उसको अभिनय पक्ष भी देखना है, अभिनेता को भी देखना है, उसमें शिल्प पक्ष भी देखना है, संगीत भी देखना है, वस्त्र सज्जा भी देखना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है,
2: सब कुछ देखना है,
1: सब कुछ देखना है। तो कहाँ नाटक लगना है, किस वहाँ पे कौन कौन जाएगा, उसकी सारी चीज़ें, मतलब प्रशासन से बात करना, मतलब जिस भी यहाँ नाटक करने जा रहे हैं सारी चीज़ें उसमें।
2: कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि जब एक अभिनेता स्क्रिप्ट पढ़ता है, पढ़ता पूरी स्क्रिप्ट वो है, लेकिन अपने जो करेक्टर है, अपने पात्र को वो ज़्यादा ध्यान से पढ़ता है, उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है, लेकिन निर्देशक के लिए तो सभी पात्र समान है, हीरो भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना विलेन है और जो करेक्टर आर्टिस्ट हैं। तो इन सब को लेके किस तरह से, मतलब कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता होगा अभिनेता से निर्देशक के बीच में?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें रहती हैं, पर जो अभिनेता रहता है वो अपने ही पक्ष को देखता है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टर होगा, निर्देशक होगा, उसको सबको समान मान के चलना पड़ेगा। अगर किसी एक पे फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें डवाडोल होंगी। तो ठीक है, एक किरदार मुख्य हो सकता है लेकिन सभी पात्र समान होने चाहिए, अगर मैं देखूं तो। कोई नहीं करता तो कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे लगता है एक बैलेंस बना के चलना चाहिए।
0: हमने फिल्मों को जब देखा है, उनके रील्स देखे हैं,

0: मुकेश जी, गीत को सुनते चले आ रहे हैं और जो एक जिज्ञासा है वो बढ़ रही है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप चित्रकूट रामायण मेले में भी
1: अरे वाह
0: आपने अभिनय किया है और किरदार निभाया है। मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सा, मैं क्या, मेरे जितने दोस्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके अंदर भी होगा कि नहीं, जरूर बताएं कि वो कौन सा किरदार था।

0: उसको क्या कहते हैं कटअवेज देखें तो कट कट रीटेक रीटेक्स खूब हुआ करते हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ कि आपने कुछ डायरेक्ट किया हो, खूब रीटेक्स हो रहे हैं और जो अभिनेता अभिनेत्री आपके जो लोग हैं कलाकार हैं वो थोड़ा उनको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाती तो कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा हो गया, बस सर इसी को फाइनल मान लीजिए। तो फिर ऐसे समय में कैसे उनको मोटिवेट करना कि नहीं रीटेक्स हो रहे हैं कोई बात नहीं, वी विल डू बेटर, वी कैन डू बेटर।
1: देखिए रिहर्सल इसीलिए होता है कि हम उस चीज़ को जो भी करेक्टर है उसको हम फाइन करें, मतलब आज जो रिहर्सल में हुआ कल वो एक स्टेप आगे बढ़े अपने उस करेक्टर को लेके जो भी पात्र है। तो रिहर्सल में सारी चीज़ें होती हैं, देखिए रोना धोना भी चलता है वहाँ, ये भी होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी और मतलब कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही। जैसे मान लीजिए कि युद्ध है, युद्ध में जाने से पहले जब हम अपनी सारी तैयारियाँ कर रहे होते हैं तो कभी कभी लगता है कि नहीं हमारे पास साजो सामान कम है, हमारे पास संसाधन कम है तो लगता है, पर क्या होता है कि वही होता है तैयारी, कि जब हम उस तैयारी को एक पॉजिटिविटी की तरफ मतलब एक सोचे कि हमें युद्ध लड़ना है क्योंकि हम पूरे टीम है ना और टीम के साथ लड़ना है, तो जब हम ये भरोसा रखेंगे तो हम जरूर विजयी होंगे। और देखिए एक जीवन भी है हमारा तो इसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता रहता है।
0: अच्छा अभय जी आपने भी फिल्में तो जरूर देखी होंगी हॉल में, है ना, हम सभी ने देखी हैं। उसमें तो भाई एडिटिंग में चांसेस होते हैं डायरेक्टर के पास, लेकिन मैंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनारस में, वाराणसी में और यहाँ पे भी कई थिएटर का काम देखा, उसमें मैंने देखा कि लोग रोल भी प्ले कर रहे हैं, फटाफट स्टूल लगाते हैं, बेंच लगाते हैं, कभी कोई पंखा लगा रहा है, कभी कोई पकड़ रहा है, और ये बात जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों को तनिक भान नहीं होता, वो तो डूबे हुए होते हैं तो कितना मुश्किल होता है कि नई सब चीजें प्लेस पर हों और बाकी के दर्शकों को कुछ पता ना चले या कहीं से लूज ना होने पाए, तो उन सब बातों को कैसे ध्यान में रखते हैं आप सभी लोग?
1: अभी तो हम बात कर रहे थे मंच पर,
0: जी
1: जो अभिनेता है वो मंच पर है, तो जो मंच पर की बात है ऑफ स्टेज की बात है वो काम भी एक जो सेनापति की तरह एकदम ऐसे कि मतलब युद्ध लड़ने जैसा ही है कि आपको लाइट फेड आउट हुआ, उस फेड आउट में ही आपको वो सारा सामान जैसे कि सेट चेंज करना है
0: जी
1: या कुछ प्रॉप्स रखने हैं तो वो सारी चीजें अभिनेता भी अपनी उस लाइट में ही मतलब फेड आउट में ही प्लेसिंग लेगा
0: जी।
1: तो ये जो त्वरित कार्य होता है बहुत ही सडन ना ये बहुत ही एक मतलब अनुशासन का काम है और अच्छा। अगर थोड़ा भी देर हुआ तो लगता है कि अगर लाइट फेड इन हुआ लाइट जली तो फिर कभी कभी लगता है कि नहीं वो बैक स्टेज में जो वो था कलाकार वो फिर वो जाता हुआ दिखाई देगा कभी कभी। यही रिहर्सल का पार्ट है कि आप जब हम रिहर्सल करते हैं तो उसमें सारी चीजें करते हैं। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि स्टेज हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हमने स्टेज पे रिहर्सल किया, इस स्टेज थोड़ा छोटा है और हमें जो नाटक करना है वो बड़ा स्टेज है थोड़ा सा उससे, तो इसीलिए हम जाके फिर वहां पे भी एक टेक्निकल रिहर्सल करते हैं कि इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके सारी चीजें उसको क्या हटाना है, कितने देर में कितने स्टेप से आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो टेक्निकल रिहर्सल में सारी चीजें हम कर लेते हैं।
0: वाह मतलब देयर इज टू रिहर्सल्स, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे केंद्र ने भी कॉन्सर्ट किया था और उस सेनापति का काम हमारे अभय जी ने किया था और इतना सुंदर, मतलब मैं तो उनको देख के आश्चर्यचकित, मैं सीख भी रही थी, जैसे आपने कहा था राम वाले किरदार में आप कर भी रहे थे और सीख भी रहे थे, दैट टाइम आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग, ओ माई गॉड ये तो मैंने सोचा नहीं था वॉट ही वॉज परफॉर्मिंग, तो इनकी वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ।
2: देखिए नेपथ्य में क्या है कि आप पूरा चीज ध्यान देना है ना कि गद्दे कब हटाने, अगर कोई जो गद्दे हटाने वाला आदमी नहीं है खुद से भी हटाना पड़ेगा, तो वो चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन मुझे लगता है अब एक प्यारे से गीत का समय हो गया है,
0: सुनते हुए चले
1: मैं रमता जोगी
0: वाव टाल फिल्म का
1: जी,
2: चलिए सुनते हैं प्यारा संगीत।
3: मैं

Mundo.

दोस्तों, इस गीत के बाद अभी भी कुछ जिज्ञासाएं बची हुई हैं, उन पर हम बात करेंगे। और आप सुनते रहिए वॉइस ऑफ प्रयाग। और आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर मुकेश से जाना कि रंगमंच यानी जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो बाहर का सेनापति होता है और जो नेपथ्य में सेनापति होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से रिहर्सल्स होती हैं, और भी कुछ इंटरेस्टिंग है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक दीजिए हमें अनुमति, हम कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज आप इस कार्यक्रम में मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता जी और अभयकांत तिवारी जी की बातचीत का दूसरा भाग सुन रहे थे। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 10:30 हो रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं भरत लाल और साथी, नीलम शर्मा, राम प्रसाद और साथी। इनके स्वर में गाए लोकगीत। लीजिए सबसे पहले सुनते हैं भरत लाल और

आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना भरतलाल और साथी के स्वर में देवी गीत। आइए इन्हीं के स्वर में अब सुनते हैं गंगा गीत।

0: आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपने सुना भरतलाल और साथी के स्वर में गंगा गीत। अब आप सुनिए नीलम शर्मा के स्वर में ये देवी गीत।
1: गंगा जमुना के नीलम

अभी आप सुन रहे थे नीलम शर्मा के स्वर में ये झूमर। अब आप सुनिए राम प्रसाद और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना रामप्रसाद और साथी के स्वर में गंगा गीत। लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं भारतीय कवि, गीतकार एवं पटकथा लेखक प्रसून जोशी। आइए सुनते हैं इनके लिखे हुए गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना का गीत। आवाज़ें थीं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने, तर्ज बनाई थी जतिन ललित ने।

गजनी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत कार्तिक की आवाज़ में। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने, तर्ज दी थी जतिन ललित ने। लीजिए अब सुनिए हम तुम फिल्म से ये गीत शान और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा है। फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टरका
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती।
1: ओके दैट्स इट।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1968 में हुआ। हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के गीतकार हैं। वे विज्ञापन जगत की गतिविधियों से भी जुड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी मैकएन इरिक्शन में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। फिल्म तारे जमीन पर के गाने माँ के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। अब वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं का लिखा हुआ एक और प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग, आवाज़ है श्रेया और जावेद अख्तर की, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

प्रसून जोशी की कुछ बेहतरीन पिक्चरें हैं, जैसे गजनी 2008 में आई, उसमें ये गीत है कैसे मुझे तुम मिल गई, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। गुजारिस, जय जय केंद्र भारत, इन्होंने और कई भाषाओं में गीत लिखे हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

फिल्म का नाम है लंदन ड्रीम्स, आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान और शंकर महादेवन की, गीत लिखा है प्रसून जोशी ने, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कयामत फिल्म से गीत। आवाज थे सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के। समीर ने गीत लिखा था, संजीव दर्शन ने तर्ज बनाई थी। लीजिए आप सुनिए आप हद कर दी आपने फिल्म गीत से। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है। आनंद राज आनंद ने तर्ज बनाई है।

इश्क। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। राहत इंदौरी ने गीत लिखा था, अनु मलिक ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए जानवर फिल्म से ये गीत, अलका याग्निक की आवाज़ है, समीर ने गीत लिखा है, आनंद बख्शी ने तर्ज बनाई है।

जोश, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में समीर ने गीत लिखा है, तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह फिल्म का गीत जिसका नाम हम यह फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने गीत लिखा है, जतिन ललित ने तर्ज बनाई है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन

0: करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariff and expanded trade between two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise, Yudh Abhyas, kicked off at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand yesterday with contingents of 600 personnel each from the two countries participating. The exercise is simultaneously being conducted at Mahajan Field Fire.

7:31 पे सुनिए बोलते नगमे, प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत। रात 8:30 पे सबरस कार्यक्रम सुनिए। रात 9:30 पर चर्चा का विषय है, यह हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिए। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पद्मा तलवरकर का ख्याल गायन, राग है गौड़ सारंग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पद्मा तलवरकर का ख्याल गायन, राग था गौड़ सारंग। तबला पे संगत की थी अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव मोटीवा जिले प्रताप
0: जी। रोशनी जी, जी रोशनी जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हूँ?
1: मैम बिल्कुल ठीक हैं हम भी।
0: अच्छा जी बताइए।
1: मैम तलाश फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
0: जी जी बताइए कौन सा गीत है?
1: मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह।
0: भैया आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: तरह। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो
1: जी,
0: अहमद हुसैन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आखिर फिल्म का
0: गाने के बोल बताइए।
1: मोहब्बत कभी कभी
0: जी, लता जी की आवाज में ये गाना अहमद हुसैन जी की फरमाइश है। तो अहमद हुसैन जी, किसी का नाम लेना है आपने?
1: हाँ, सुफाइल सलीम और बबलू, एक तीन लोगों का।
0: तो सुनिए आंखें फिल्म का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: ग्राम सुगर टूरी पोस्ट मछेहा हरदो पट्टी तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ से मैम हम बचन्ने सरोज बोल रहे हैं। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, आज हमको गाना सुनना है। मूवी का नाम तो मालूम नहीं, गाने के बोल रहे हैं दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा।
0: जी ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है और फिल्म का नाम है एक नारी दो रूप।
1: चलो ठीक है। और मैम बताइए आप कैसी हो, बढ़िया हो?
0: हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बचन्ने जी आपको किसी का नाम लेना है?
1: जी मैम हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका नाम लेना चाहते हैं।
0: जी
1: हमारे एक दोस्त हैं आदरणीय प्रण आदरणीय सुनील सुनील यादव जो रहते हैं सुल्तानपुर, और एक हैं ननकुल्ले सरोज, एक हैं अर्जुन पटेल, एक हैं नन्हे भाई पटेल उनकी वाइफ राधिका पटेल,
0: जी।
1: और हमारी हमारी मिसिस का नाम है मेरे करिश्मा।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं एक नारी दो रूप फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: मैं प्रयागराज के मीरापुर से शिवानी यादव बोल रही हूँ। आपको हृदय से नमस्कार।
0: नमस्कार जी शिवानी जी, इतने प्यार भरे नमस्कार के लिए आपको धन्यवाद जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम मुझे सुनना है हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का, हम तुम्हारे हैं सनम।
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग। हाँ, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हैं जी। तो किसी का नाम लेना चाहती हैं?
1: मैम नाम क्या, बस मैं आप अपना नाम लूंगी और आपका नाम लूंगी।
0: जी जी
1: हमारी मधु मैम जो है, आपका मैम प्रस्तुत करने का अंदाज, बोलने का अंदाज जो मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिवानी जी। आप इसी तरह से हमारी कार्यक्रम सुनते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: यस मैम।
0: तो आपके इस गाने की फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: पोस्ट हंडिया तहसील हंडिया थाना हंडिया गांव मगराम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं कैसे बताएं तुझको चाहे यारा बताना पाऊंगे बातें दिलों के देखो जो बाकी आंखें तुझे समझा तू जाने ना तू जाने ना।
0: तो आपकी पसंद का अजब प्रेम की गजब कहानी, सुनिए इस फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष

0: जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में 3री बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Lalima Aneja Dang. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, that is P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that Merchant Discount Rate MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's Parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The Swachhata Hi Seva 2020 campaign will be observed from tomorrow across the country. It will continue till the 17th of next month. The key focus areas of the campaign include transforming cleanliness target units and high footfall public places, promoting youth participation in cleanliness and promoting Swachhata Se Samriddhi through circular economy and waste to wealth initiatives. The theme of this year's campaign, Swachhata Me Sehbhag, Swachh Bharat, Vikasit Bharat, underlines the role of collective participation and shared responsibility in advancing the vision of a Swachh and Vikasit Bharat. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of this month. During his 3-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Morvikhev, on issues of mutual interest, including professional military

0: cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honor and pay tribute to fallen soldiers at the tomb of the unknown soldier in Moscow. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme for 2026 is Global Action for a Cooler Planet. This year marks the 10th anniversary of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. On the occasion, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, said that the ozone layer is the shield against harmful UV rays. In a social media post, the minister said that simple measures like maintaining ACs at 24 degrees Celsius and choosing efficient appliances reduce emissions for a healthier earth. Well, two earthquakes struck Nepal's northwestern Mugu district within 3 hours early this morning. There were no immediate reports of casualties or damage. According to Nepal's National Earthquake Monitoring and Research Center, the first earthquake was measured 4.5 magnitude, followed by a 4.2 magnitude tremor. Both had their epicenter around Kalai in Mugu district. The earthquakes have come as Nepal continues to recover from the devastating August 26 Bhote Koshi flash floods. 1,403 bodies have been recovered so far, while 4,089 people remain missing. Search, identification and relief operations continue in the affected areas. Saudi Arabia has said that its air defences intercepted and destroyed a Houthi drone near Makkah last evening. The spokesperson for the Coalition Forces to Support Legitimacy in Yemen, Major General Turki al-Maliki, described the incident as the second attempted Houthi attack on Makkah. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Benchmark domestic indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. Sensex rose 361 points to 74,364. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में रियासती काबिना ने मरकजी वजारत दाखिला को 26 हेक्टेयर बंजर जमीन मुफ्त में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि यह जमीन अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इलाकाई मरकज के क्याम के लिए दी गई है।
2: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल रियासती वुज़रा कौंसिल की मीटिंग में 23 अहम तजावीज़ को मंजूरी दी गई। रियासती गन्ने की तरक्की के वज़ीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि काबीना ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये प्लांट साल के 11 महीनों तक एथेनॉल तैयार करेगा। वुज़रा की कौंसिल ने अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी। वुज़रा कौंसिल ने इस मकसद के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आला पीआरडी कैशलेस मेडिकल स्कीम के तहत पीआरडी जवानों और उनके अहले खाना को सालाना 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात फराहम करने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश समेत 6 रियासतों के वज़ीर-ए-आला ने दरियाए यमुना के बिलातातुल बहाव को यकीनी बनाने के लिए कल किशाओ कसीर मकसदी प्रोजेक्ट मुहैदे पर दस्तखत किए। इन रियासतों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजीर आजम बनने के बाद से पानी का ये

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। लीजिए अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: के पन्नों पर एक हसीन नज़ारा आया है। दोपहर की इस महफिल में बातों और यादों का कारवां आया है। दिल थाम लीजिए और रेडियो की आवाज़ बढ़ा लीजिए। आपकी इस दोपहर को खूबसूरत बनाने एक नया सफर शुरू होने आया है।
1: इसी पैगाम के साथ किसी ने क्या खूब कहा है कि सुरों और लफ्जों से हर दर्द थम जाता है।
0: वाह क्या बात
1: कि
0: है।
1: सुरों और लफ्जों से हर दर्द थम जाता है, रेडियो की बातों से हर समा बंध जाता है। हंसकर गुजारिए दिन का ये खूबसूरत हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर एक किस्सा यादों में बदल जाता है।
0: क्या बात है।
1: सच बात बहुत

0: बहुत गहरी है, क्योंकि ये जो दोपहर का वक्त होता है ना निकहत, ये हमारे जीवन में उसी नजरिए को टटोलने का वक्त होता है। जब सुबह की अफरा तफरी, वो दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी, वो ट्रैफिक की भाग दौड़ अब थोड़ी शांत हो चुकी है।
1: बिल्कुल, और सुबह के वक्त में एक अफरा तफरी होती है और शाम की चाय में एक ठहराव होता है। लेकिन ये जो दोपहर का वक्त है, ये वक्त होता है खुद से मिलने का, ये वक्त होता है सुस्ताते हुए परिंदों को देखने का, और खिड़की से आती हुई गुनगुनी धूप में अतीत के किसी पन्ने को दोबारा पलटने का।
0: ये समय होता है बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर थोड़ी देर अपनी बंद आंखों के पीछे झांकने का, अपने भीतर की खामोशी से बात करने का।
1: तो शांत दोपहर के इस खूबसूरत पड़ाव पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो हमसफर निकहत
0: और मैं संगीता। इस खूबसूरत सुनहरी दोपहर में स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: श्रोताओं, जब हम दोपहर के इस शांत वक्त में थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, तो अंदर क्या चल रहा होता है? बंद आंखों के उस काले पर्दे के पीछे भी यादों का एक बहुत हसीन मेला लगा होता है। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी बात एक हसीन ख्वाब बनकर तैरने लगती है। देखा जाए तो आंखें बंद करके बीते लम्हों को याद करना अपनी आत्मा से जुड़ने जैसा है, क्योंकि जब हम बाहरी दुनिया के शोर से ध्यान हटाकर अपनी बंद पलकों के पीछे झांकते हैं, तो जीवन का हर पुराना अनुभव एक सुंदर दृश्य बनकर उभरता है। यही वो पल होता है जब हमारा मन हमें किसी सुदूर हसीन ख्वाब की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देता है। जब इंसान के अनुभवों का एक भी सिरा किसी ऐसे खूबसूरत मोड़ से जुड़ जाए, तो पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। तो बस अब हम आपके दिल में बंद इसी ख्वाब और नजरों के सिलसिले को आजाद करने जा रहे हैं एक बेहद सुरीले गीत के साथ। तो सुनिए ये गीत और हम अपनी बातों के साथ आपसे फिर जुड़ते हैं।

0: वाह, हवा में तैरती किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ये तान जब कानों से होती हुई दिल में उतरती है तो ऐसा लगता है दोपहर का मिजाज रूहानी हो गया है, ठंडी छांव का सहारा मिल गया है। और इस गीत की जो लाइन थी ना, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, तो ये लाइन जो हमारे आसपास के पूरे माहौल को ना कितना सकारात्मक बना देती है।
1: बिल्कुल, लेकिन संगीता यहाँ पर बात सिर्फ फूलों के खिलने की नहीं है, उस नजर की है जो पतझड़ में भी बहार ढूंढ लेती है। जब हमारी नजर जीवन की उलझनों और कड़वाहटों को पीछे छोड़कर किसी पुरानी मीठी याद, किसी प्यारे इंसान या आने वाले कल के किसी खूबसूरत सपने पर ठहरती है ना, तो सचमुच भीतर सुकून के फूल खिल जाते हैं। और नजरों का ये जो अदृश्य कनेक्शन है ना, यही हमारे अंदर हर पल मुस्कुराने की वजह जिंदा कर देता है।
0: बिल्कुल, और इसी वजह को जिंदगी के इन्हीं अनकहे यादों की लफ्जों की मखमली चादर में समेटने के लिए अब समय हो गया है हमारे आज के खास सेगमेंट का, यानी कि शब्द बातें और गीत का।
1: और इस सेगमेंट का फलसफा बहुत ही सीधा और सच्चा है। हम उठाते हैं लफ्जों की महफिल से एक प्यारा सा शब्द, फिर उस शब्द की चारों तरफ बुनते हैं ढेर सारी मीठी सच्ची और जीवन से जुड़ी बातें, और सुनते हैं वो उसे जज्बातों को बयां करता हुआ एक बहुत सारे जो खूबसूरत गीत हम सुनाते हैं इस कार्यक्रम में, है ना।
0: और हमारे जो इस
1: गाना जो अभी हम लोग सुन रहे थे, है ना, तो उसमें हम सभी ने गौर किया था संगीता कि इसमें इस लाइन में छिपा हुआ है निगाहों का जिक्र, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, है ना। तो निगाहों का जिक्र छिपा है, नजर का जिक्र छिपा है। जब हमारी नजर किसी खूबसूरत चेहरे या खूबसूरत याद पर ठहरती है तो पूरी कायनात में जैसे बहार आ जाती है। नजरों का ये सिलसिला ही तो है जो दिल को धड़कना सिखाता है। तो भाई इसी खास एहसास को, जज्बात को, इसी अनकहे मोड़ों को लफ्जों में पिरोने के लिए आज का जो हमारा शब्द है वो क्या है संगीता?
0: वो है नजर।
1: एक ऐसा शब्द है,
0: एक ऐसा शब्द है जो हमारी आंखों की पलकों से शुरू होता है और सीधे हमारे विचारों के बंद दरवाजे को खटखटाता है।
1: वो शब्द इतना छोटा है कि पलक झपकते ही खत्म हो जाए, लेकिन उसकी ताकत ऐसी है कि पूरी कायनात को बदल कर

0: दे। जी हाँ, आज का हमारा शब्द है नजर। एक ऐसा शब्द जो जुबान के बिना भी इतिहास लिख देता है। इस छोटी सी शब्द की गहराई समंदर से भी ज्यादा है। तो चलिए उठाते हैं इस नजर के पर्दे को और शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, है ना। और संगीता, देखो कभी तुमने सोचा है कि ये जो नजर है आखिर है क्या? विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ आंखों की रोशनी है जिससे हम चीजों को देखते हैं, लेकिन दिल की अदालत में, जज्बातों की दुनिया में नजर का पैमाना बहुत गहरा होता है। जबान तो झूठ बोल सकती है, बनावटी बातें कर सकती है, लेकिन ये जो आंखें हैं ना, ये जो नजरें हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलती। दिल में कोई छिपी हुई बात हो या दिल में बेइंतहा मोहब्बत हो, नजरें सब कुछ साफ साफ बयां कर देती हैं।
1: बिल्कुल निकहत, इस नजर के भी कितने रूप हैं, कितने रंग हैं। जैसा कि अभी आपने कहा था शुरू में कि बंद आंखें भी जब ख्वाब बुनती हैं तो वो नजर का एक रूप है, जिसे हम पहली नज़र का जादू भी कहते हैं। और जब जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर कोई बुजुर्ग हमारे कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाते हैं तो वो नजरें इनायत होती है। जब किसी खुश किसी भी बीमारी बीमार हस्ते
0: परिवार पर, हाँ, खुशहाल बच्चे को कोई परेशानी घेर लेती है ना, तो हम कहते हैं कि भाई नजर लग गई है।
1: बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि इंसान जैसा सोचता है उसकी नजर वैसी ही हो जाती है।
0: और तभी तो दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है
1: कि चोटियां ही चोटियां हैं, दिखने के वास्ते ऊपर से तुम्हारी ये नजर कुछ भी नहीं।
0: देखिए संगीता, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा उदास करने वाला है। कभी कभी हमारी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, और कभी कभी तो इंसान का नजरिया ही ऐसा हो जाता है कि उसे किसी की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। यानी पूरी कायनात, पूरी दुनिया इस बात पर निर्भर करता है कि कौन हमें किस नजर से देख रहा है और इस दुनिया को किस नजर से हम देख रहे हैं। तो इसी बात पर वसीम बरेलवी ने लिखा था कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो चलिए नजर के इसी रुमानी और गहरे एहसास को संगीत की साए में आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं वो गाना जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगा।

0: वाह, इस गीत ने तो फिजाओं में जैसे एक रूहानी सा नशा घोल दिया है। तो आइए नजर के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। जरा गहराई से सोचिए, कुदरत की बनाई इस अनमोल नेमत यानी हमारी इस नजर के भी कितने अजीब, कितने जादुई, कितने विस्मय, बहुत सारे जो किस्से हैं।
1: बिल्कुल, कितने विस्मयकारी और कितने अनंत रंग होते हैं।
0: ये सिर्फ रोशनी को समेटे काली आंखें नहीं,
1: वाली आंखें नहीं होती हैं, बल्कि ये तो भावनाओं के उस असीम समंदर का मुहाना है जहां हर पल एक नया जज्बात जन्म लेता है।
0: तो आइए इस नजर के बदलते हुए खूबसूरत
1: रंगों की पत्तों से हम एक-एक खोलते हैं। हाँ। संगीता, तो इस नजर का सबसे पहला, सबसे पवित्र और सबसे निश्चल रंग हमें दिखाई देता है ममता की नजर में। और जब एक माँ अपने नवजात शिशु को पहली बार अपने सीने से लगाती है तो उसकी आंखों में जो चमक आती है वो इस दुनिया की सबसे दिव्य रोशनी है। उस नजर में कोई शर्त नहीं होती है, कोई मांग नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेपनाह वात्सल्य, गहरी फिक्र और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से की गई प्रार्थना होती है। और देखो, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ जो है ना वो फिक्रमंद और ममतामय नजर कभी भी नहीं बदलती। वो हमेशा अपने बच्चे की इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनकर टिकी रहती है।
0: और बात करें नजर के एक बेहद गरिमामय रंग की, जो हमें गौरव और भरोसे के रूप में दिखाई देता है। जरा याद कीजिए पिता की उन आंखों को जब उनका बेटा या बेटी अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर घर लौटते हैं, उस वक्त पिता की आंखों में जो गर्व, जो चमक आती है, वो दुनिया के बड़े से बड़े मेडल से भी कीमती होती है। ठीक वैसी ही नजर एक उस्ताद या गुरु की होती है, जब उसका शागिर्द दुनिया के मंच पर अपनी कला का परचम लहराता है तो नजर किसी बिना कुछ कहे कहती है कि मुझे तुम पर

0: नाज है।
1: नाज है। और इस नजर का एक और रंग है संगीता, जो इस पूरी कायनात को ही एक नए रूप में रंग देता है, आदर सम्मान और आत्मीयता की नजर। जब दो पुराने हमराही, दो सच्चे दोस्त या कोई ऐसे अजीज रिश्तेदार बरसों की जुदाई और लंबे फासलों के बाद अचानक किसी मोड़ पर एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उनकी नजरों में जो अपनत्व और आत्मीयता का रंग उभरता है ना, वो किसी भी भाषा या लफ्जों का मोहताज नहीं होता। वहां शिकायतें भी होती हैं, पुराना बीता हुआ कल भी होता है, असीम आदर भी होता है, और एक ऐसा सुकून होता है जो सिर्फ उनकी नजरों के दायरों में ही महसूस किया जा सकता है।
0: लेकिन नज़र का ये सफ़र सिर्फ दूसरों को देखने, उन्हें सराहने या उनके जज्बातों को समझने तक ही सीमित नहीं है। इस नज़र का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे दार्शनिक और सबसे महत्वपूर्ण रंग वो है जिसे हम दृष्टिकोण या नज़रिया कहते हैं। यानी आप खुद को एक खूबसूरत दुनिया को, यहाँ रहने वाले इंसानों को, उनकी अच्छाइयों, बुराइयों को और जीवन के मुश्किल हालातों को किस नजर से देखते हैं?
1: संगीता, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे दार्शनिकों ने सच ही कहा है कि खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आपको दुनिया के महंगे हिल स्टेशन या विदेशों की सैर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपने भीतर की नज़र को साफ, पारदर्शी और खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में सकारात्मकता का रंग है, अगर आपकी आंखों में दया का भाव है, तो यकीन मानिए आपको पतझड़ के सूखे गिरते हुए पत्तों में भी एक मधुर संगीत सुनाई देगा, और जीवन से पूरी तरह टूटकर हार रहे किसी इंसान में भी एक नई उम्मीद की किरण नजर आएगी।
0: लेकिन अगर हमारी खुद की नज़र में संकीर्णता, स्वार्थ, अहंकार या कड़वाहट आ जाए, तो आलीशान और भव्य महलों में रहने के बाद भी इंसान को सिर्फ कमियां, उदासी और अकेलापन ही दिखाई देता है। तभी तो किसी ने कहा है कि ये दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी ये बाहर दिखाई देती है, ये दुनिया हूबहू वैसी ही है जैसी आपकी नज़र इसे देखना चाहती है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अपनी नज़र के इन बदलते हसीन रंगों को हमेशा साफ रखें, इन्हें कभी धुंधला ना होने दें। इनमें हमेशा प्यार, सम्मान, ममता, आदर और सकारात्मकता के सच्चे रंग भरते रहें। तो नजरों के इसी खूबसूरत, बहुरंगी, मुकम्मल और रूहानी फलसफे को अपने भीतर तक महसूस करते हैं और सुनते हैं वो सदाबहार नगमा जो नजरों के इस जादुई एहसास को संगीत के सात सुरों में पिरोकर सीधे हमारे दिलों पर दस्तक देगा। तो सुनिए, झूमिए और महसूस कीजिए।

0: तो भाई इस खूबसूरत की गीत के बाद भी नज़र का जो ये सफ़र है ये जारी है, और अब हम इस सफ़र के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और आँखों की खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। जी हाँ, अब बात करते हैं नज़रों के जादू और उसकी शायरी की। तो जब भी लोग नज़र और शायरी का नाम एक साथ सुनते हैं तो उनका ध्यान हुस्न की दीदार और इश्क मोहब्बत की बातों की तरफ चला जाता है। लेकिन हमारी कविताओं और शायरी का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे कवियों और बड़े शायरों ने नज़र को जीवन के सच, इंसान के स्वाभिमान, उसके अच्छे स्वभाव और समाज के आईने के रूप में देखा है।
1: श्रोताओं, शायरी में नज़र का जादू वो है जो बिना एक शब्द बोले दिल की बात को पल भर में साफ साफ बयां कर देता है। इंसान की जुबान दुनिया के डर से या किसी मजबूरी में झूठ बोल सकती है, बनावटी बातें कर सकती है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी नज़रें कभी झूठ नहीं बोलती। वो हमारे दिल का वो खुला हुआ साफ शीशा है जहाँ से इंसान की असली नीयत और उसकी सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। इसी को नज़र का असली जादू कहा जाता है।
0: और संगीता, इस वक्त ना मुझे शायर बशीर बद्र का बेहद मशहूर शेर याद आ रहा है जो तुमने अभी बात कही है ना, ये पूरी तरह इस बात को सच साबित करता है कि जुबां जो कह ना सकी हमसे दिल का अफसाना, जुबां जो कह ना सकी हमसे दिल का अफसाना, नज़र ने देख लिया और राज जान लिया। तो इस शेर में वो इंसान के सुख दुख और आपसी जुड़ाव की बात कह रहे हैं। जब आप किसी दुखी या खामोश इंसान के पास बैठते हैं तो उसकी थकी हुई आंखें उसकी बेबसी की पूरी कहानी सुना देती हैं। एक अच्छा और समझदार इंसान उस खामोशी को और उन आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को पढ़ लेता है। यही तो नज़रों का वो जादुई पल है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के दुख से बिना किसी स्वार्थ के जोड़ता है।
1: और पता है निखत, कविताओं में नज़रों के वार को तलवार से भी तेज बताया गया है, लेकिन वो वार किसी को घायल करने के लिए नहीं बल्कि इंसान के अहंकार को तोड़ने के लिए होता है।
0: अच्छा।
1: जब एक सच्चा और ईमानदार इंसान किसी बेईमान या अत्याचारी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो उसकी वो स्वाभिमानी नज़र जो होती है वो सामने वाले के हौसले को पस्त कर देती है। वहाँ किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो संगीता। और ये देखिए, एक और खूबसूरत पहलू है पारखी नज़र। कवियों ने लिखा है कि इस दुनिया में हीरे तो बहुत हैं लेकिन उनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक कि कोई जौहरी अपनी पारखी नज़र से उसे उन्हें पहचान ना ले। ठीक उसी तरह समाज में प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, लेकिन एक गुरु की, एक बड़े मार्गदर्शक की जो नज़र होती है वो कोयले के ढेर से भी कोहिनूर को ढूंढ निकालती है। वो नज़र पहचानती है कि इस साधारण से दिखने वाले इंसान के भीतर कितनी असीम संभावनाएं छिपी हैं। और संगीता, पता है इसी बात पर निदा फाजली की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो नज़रों के इसी सामाजिक और मानवीय रूप को दर्शाती हैं कि हर एक चेहरे को दुनिया बदल के देखती है, हर एक चेहरे को दुनिया बदल के देखती है, नज़र वही है मगर देखने के ढंग अलग हैं।
1: यानी दुनिया वो हर इंसान को नफे और नुकसान के तराजू में तौलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन एक इंसानियत की नज़र वो होती है जो हर चेहरे में सिर्फ एक इंसान देखती है, उसकी पीड़ा देखती है, उसका आत्मसम्मान देखती है। जब समाज में लोग एक दूसरे को इस हमदर्दी और सम्मान की नज़र से देखना शुरू करते हैं तब कोई भी इंसान खुद को अकेला या कमज़ोर महसूस नहीं करता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो नज़रों

इस शायराना जादू को, इस आत्मिक गहराई को अपने भीतर महसूस करें, अपनी नजरों को इतना पवित्र और साहसी बनाएं कि वो सच का साथ दे सके और दूसरों के मौन को पढ़ सके। तो चलिए इस सुंदर विचार के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं वो रूहानी नगमा जो हमारी आत्मा को झंकृत कर देगा और नजरों के इस सच्चे दर्शन को हमारे दिल में उतार देगा।

0: नज़र के इस सफ़र में हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुँचे हैं जो हमारे जीवन, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम, बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अब बात करते हैं बुरी नज़र की, दुआ की नज़र और इन सबसे
1: मतलब
0: परे।
1: तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दुआ की नज़र और बुरी नज़र की, है ना।
0: और इस नज़र की के जो भी कुछ भी हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बीते हुए जो कल होते हैं ना, उनकी यादों का इतिहास बयां करते हैं।
1: बिल्कुल। और अक्सर देखो हमने बचपन से

0: घर में सुना है कि जब कोई बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, जब घर में कोई नई खुशहाली आई हो, नया मकान बना हो, या जब कोई हंसता खेलता परिवार अचानक दुखों से घिर जाता है, तो हमारी दादी नानी और माएँ तुरंत कहती हैं कि किसी की बुरी नज़र लग गई, है ना। और फिर शुरू होता है नमक राई वारने का, सूखी लाल मिर्च जलाने का, या कान के पीछे तलवे के नीचे काला टीका लगाने का। वो सिलसिला तो हम सब ने बचपन से अपने घरों में देखा है संगीता, है ना। तो वैज्ञानिक तौर पर भले ही इसे ऊर्जा का ट्रांसफर कहा जाए, लेकिन अगर हम इसे जज्बातों के तराजू में तोलते हैं तो नज़र असल में कुछ और नहीं, इंसान की नीयत की परछाई है। जब किसी इंसान के दिल में दूसरों के लिए जलन या फिर ईर्ष्या या फिर ये बात होती है ना कि काश मेरी ये चीज़ मेरे पास भी होती, ये वाली भावना पैदा होती है, तो उसकी आंखों से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो नकारात्मक हो जाती हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा को हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मुरी नजर या फिर हाय लगना कहते हैं।
1: लेकिन जहां इस दुनिया में जलन और ईर्ष्या की बुरी नजरें हैं, वहीं एक और नजर भी है, काम करती है, जिसे हम कहते हैं दुआ की नजर, नजरे करम। दुआ की नजर वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए ही
0: कामना करती है।
1: जब एक माँ अपने बच्चे को निहारती है और मन ही मन कहती है जुग जुग जियो मेरे लाल, तो वो ममता की नज़र दुनिया की हर बुरी नज़र के लिए एक
0: अभी ढाल बन जाता है ना, ये कहना चाह रही हो तुम।
1: हाँ, और जब कोई बुरी नज़र, जो भी कोई उस्ताद होता है ना, वो अगर आपको कहते हैं कि
0: मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई बुजुर्ग है, कोई उस्ताद है, या रास्ते में मिला कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, आपकी छोटी सी मदद से जगह वो खुश हो जाता है और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर दुआ देता है, तो उसकी आंखों से निकलने वाली जो ये रूहानी दुआ है वो आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी जो बला है उसे टाल देती है। लेकिन संगीता, नजरों का ये जो ताना बाना है ना, वो सिर्फ समाज और दुआओं तक ही सीमित नहीं है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जब बरसों बाद हमारी नजर अचानक किसी पुराने दोस्त पर पड़ती है, या घर के किसी कोने में बड़ी बचपन की जो कोई भी चीज है उसकी धूल पड़ चुकी होती है, तो उस पर टिक जाती है, तो क्या होता है? तब तो उस एक पल में यादों का एक पूरा कारवां, एक पूरा सैलाब आंखों के सामने तैर जाता है। वो सावन की पहली बारिश, वो कागज की कश्तियां, वो मिट्टी के खिलौने और बिना फिक्र की गलियां, ऐसा लगता है जैसे वक्त जो है ना, उसका जो पहिया है वो घूम गया हो और हम अतीत के किसी हसीन लम्हे में लौट गए हों। जब जिंदगी की उतार चढ़ाव से थक कर इंसान टूटने लगता है, जब किसी अपने की, किसी सच्चे शुभचिंतक की एक तसल्ली भरी नज़र एक भरोसा देती है निगाह, तो फिर उसे उठ खड़ा होने का जो हौसला देती है वो नज़र, बिना कुछ बोले कह जाती है कि भाई फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये नज़र का वो एहसास है जो हमें भीड़ में भी अकेलापन महसूस नहीं होने देता।
1: निगाह, सच तो ये है कि जब कोई रिश्ता, कोई पुराना निश्चल साथी या आपकी अपनी ही उम्मीद हमेशा आपके नजर के सामने रहती है, तो जिंदगी का हर कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। ये नजरों का वो जादू, अनोखा जादू है जो इंसानी रिश्ते को ताकत देता है, जहाँ किसी तवज्जो की, किसी लफ्ज की जरूरत ही नहीं होती है।
0: हाँ, बस एक नज़र ही काफ़ी होती है सब कुछ समझ जाने और समझा देने के लिए। और यहाँ पर संगीता, मुझे गुलजार साहब की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि आंखें भी कमाल करती हैं, बिना कुछ बोले सवाल करती हैं, और जब यादों का कारवां गुजरता है इनमें, तो ये चुपके से पलके भिगो दिया करती हैं। तो श्रोताओं, आइए जिंदगी के इसी भरोसे, इसी आत्मीय सुकून और यादों के खूबसूरत कारवां से खुद को जोड़ते हैं और सुनते हैं वो सुरीला नगमा जो हमारी आंखों में यादों की एक नई चमक और दिल में एक अलग सुकून भर देगा। सुनिए ये गीत।

0: इस नज़र के सफ़र जो है ये संगीता अब यहीं पर थमता है। तो श्रोताओं, जाते जाते एक छोटी सी बात आपके दिल के दराज में छोड़ जाना चाहती हूँ कि दुनिया को देखने के लिए आंखें तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन खूबसूरत नज़रिया हमें खुद कमाना पड़ता है। तो आपका नज़रिया खूबसूरत है, यही हम चाहते हैं। और अब इस खूबसूरत पल को यहीं पर समेटते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त निगहत और
1: संगीता को नमस्कार।

0: Department said that thunderstorms and lightning conditions are expected over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it's intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान की नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले 2 दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा

0: करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील

0: की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है। कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु की मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोककर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी थी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा

0: निवास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नज़र एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है। पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस मैम, आई लाइक इट।
1: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, Tell me.

0: things.
1: Little things together make
2: big things.
1: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.

0: ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत, और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन। इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

0: और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है,

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके

0: इसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार।

0: यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें कि विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है।

श्रोताओं, ये गाना आपने सुना आपकी खातिर फिल्म से। आवाज़ थी हिमेश रेशमिया की, संगीत था समीर का, संगीत था हिमेश रेशमिया का, बोल समीर के। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अक्सर फिल्म से। आवाज़ एक बार फिर से हिमेश रेशमिया की, बोल समीर के, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

Laudi!

हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ में अक्सर फिल्म का ये गाना आपने सुना। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ में हीरो नंबर वन फिल्म से। इस गाने को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने, शब्द रचना समीर की।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। युवा श्रोता, सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

मैंने देखा है कि फिटनेस के मायने सबके अलग अलग हैं। कोई कहता है जम के खाओ, तो कोई कहता है हिसाब से। कोई कहता है जिम जाओ, तो कोई कहता है कि वॉक ही काफी है। कोई कहता है कि घर का सिंपल खाना ही काफी है, तो कोई प्रोटीन, कार्ब्स, गुड फैट के बीच के बैलेंस की बात करता है। मतलब फिटनेस की सबकी अपनी अपनी डिफिनेशन है। इन सब के बीच ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट हम सब अपनी हेल्थ और फिटनेस की बात तो करते हैं। मतलब फिटनेस एंड हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों ने अपनी नज़र बना कर रखी है, और यही वजह है कि आज के हमारे चर्चा का विषय है फिट युवा मजबूत भारत, आज की जीवन शैली और युवाओं का स्वास्थ्य। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव और आप सुन रहे हैं युववाणी। हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारे साथ यूथ जुड़ते हैं। जितने भी यूथ हमें सुन रहे हैं, आई मेक श्योर उनमें से कई सारे यूथ स्पोर्ट्स, गेम और जिम से जुड़े होंगे। उन्हें पता है कि आधा एक घंटे की कसरत के बाद उनके बॉडी और माइंड में कैसा चेंज उन्हें देखने को मिलता है। जिम में वन मोर रैप कितना चैलेंजिंग लगता है ना, लेकिन जब 12 रिपीटेशन भी ना निकल रहे हों और आप 15 निकाले जाओ, उसके बाद की खुशी सिर्फ एक जिम रैट ही समझ सकता है। हम फिजिकली जितने फिट होंगे, हम मेंटली भी उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। तो फिटनेस सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है ये।

जब खाने की थाली आपके सामने होती है तो आप उसे कैसे देखते हैं? रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, दही। लेकिन अगर ये थाली किसी फिटनेस फ्रीक को दी जाए तो उसके सामने रोटी, चावल, सब्जी, रोटी सिर्फ एक खाने का सोर्स नहीं होता है, बल्कि रोटी, चावल, कार्ब्स, दाल, प्रोटीन और दही प्रोबायोटिक का सोर्स बन जाती है। एंड दैट्स द डिफरेंस। आज की तारीख में हमारी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है ना। सुबह उठते ही सामने फ़ोन की स्क्रीन, दिन भर लैपटॉप के सामने कुर्सी पर बैठे रहना, और जब भूख लगे तो बस एक क्लिक पर जंक फूड हाजिर, काम का प्रेशर इतना कि रात की नींद उड़ जाए, और स्ट्रेस हमारी जेब में रखा परमानेंट पार्टनर बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्रीन टाइम और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे हमारी फिटनेस का क्या हाल कर रही है? 20s and 30s की उम्र में पीठ दर्द, थकान, डायबिटीज़ और हाई बीपी जैसी बीमारियाँ सुनने को मिल रही है। मतलब जिस उम्र में हमें दुनिया जीतनी है उस उम्र में हम दवाइयाँ के पत्ते गिन रहे हैं। आज की जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर डाल रही है, और अब ये समस्या ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ तक नहीं रह गया है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। देर रात तक जागना, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद की तुलना करना, और फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का शिकार होना, इन सब ने तनाव और चिंता को आम बना दिया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं ना वो कम होने लगते हैं और चिड़चिड़ापन और थकावट हमें ज़्यादा बनने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अक्सर कह देते हैं कि अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में देख लेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर युवा ही अस्वस्थ रहेगा तो देश का भविष्य कैसे मजबूत होगा? भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और अगर ये युवा ऊर्जावान नहीं है तो हमारी तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। तो अब सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए।

अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई दिन भर 12-12 घंटे हम काम करते हैं, जिम जाने का टाइम कहाँ है। अरे फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना और भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि फिटनेस एक सोच है, एक आदत है। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं अगर हम जिनका ख्याल रखें तो हम फिट रह सकते हैं। जैसे कि 20-30 मिनट का जादू, बिल्कुल दिन भर में बस 30 मिनट निकालिए, तेज चलिए, साइकिल चलाइए, डांस कीजिए, योग कीजिए। घर का खाना सबसे हिट, बाहर का पिज्ज़ा बर्गर हफ्ते में एक आध बार ठीक है, लेकिन रोज़ की खुराक में हरी सब्जियां, फल और अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाइए। डिजिटल डिटॉक्स, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बाय बाय कह दीजिए और अच्छी और गहरी नींद लीजिए। छोटे छोटे बदलाव, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ हम चल सकते हैं। हर 1 घंटे के काम के बाद क्यों ना हम 5 मिनट टहल लें। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर हम फॉलो करें तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पहली बार जिम गई थी तो ट्रेनर ने मुझसे पूछा कि आपका एम क्या है। तब जाके मेरी सोच बदली कि जिम जाना एक आपका शौक या ऐसे ही हो सकता है कि ठीक है चल के देख लेते हैं, लेकिन जितने ट्रेनर्स हैं, जितने प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, उनके लिए एक एम है कि आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, मसल्स बनानी है, या आप क्या करना चाहते हैं अपने बॉडी के साथ, कहाँ आपको लगता है कि आप में कहाँ कमी है। तो ये एक तरह का साइंस है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो कार्डियो वगैरह ज़्यादा करता है, अगर किसी को मसल्स बनानी है तो वो वेट लिफ्टिंग करता है। सो दैट्स द डिफरेंस। और फिर उस हिसाब से हम डाइट डिसाइड करते हैं। तो एक पूरा प्रॉपर एक चार्ट बनता है, पूरा एक अपने आप में एक साइंस है। तो जिस बॉडी को हम बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेते हैं वो ऐसी ही नहीं बन जाती है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो अपनी हेल्थ की रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में बेहतर नहीं कर पाते हैं। हम जितनी बातें मैंने की हैं उसका सार बस इतना है कि सुख निरोगी काया। जब आप फिट होंगे तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे और देश की प्रगति में योगदान दे पाएंगे। आप खुद सोचिए

आपके जीवन की सारी लड़ाई किस चीज़ पर है? इस शरीर को लेकर है। हम जो भी करते हैं, काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि अपना ख्याल रख सकें, अपने परिवार का ख्याल रख सकें, उन्हें अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जितनी भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें और अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। आपका प्रिविलेज है कि आप जंक फूड भी खा सकते हैं, आप उसकी जगह हेल्दी ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये ज़रूरी है या नहीं। और वैसे तो है ही है, अगर आप खुद विटामिन्स वगैरह फाइबर नहीं लेंगे तो फिर डॉक्टर आपको वो मेडिसिन के फॉर्म में देगा, क्योंकि बॉडी को वो चाहिए ही चाहिए। तो आज से एक संकल्प आप लीजिए कि आप जो भी खाएंगे आप उससे पहले एक बार सोचेंगे ज़रूर कि इसका असर क्या होने वाला है, और यही सबसे बड़ी जीत होगी। तो अभी कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन बट बिफोर दैट लेट्स टेक दिस म्यूजिकल ब्रेक।

आज जब हम तकनीक और इनोवेशन की बात करते हैं तो एक बेहद खास मौका याद आता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे, जो हर साल 10 नवंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यूनेस्को ने साल 2001 में इस दिन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि साइंस कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो केवल साइंटिस्ट ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग से लेकर फोन की टच स्क्रीन तक, कुकिंग से लेकर हमारी हेल्थ तक, हर जगह साइंस मौजूद है। तो अब से हमें साइंस से डरना नहीं है बल्कि इसे अपनाना है। ब्लाइंड बिलीफ की जगह लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को अपनाना है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
4: श्रोताओं अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर, और आज की हमारी प्रेरणा पुंज है MS सुबुलक्ष्मी, जिन्हें दुनिया MS के नाम से जानती है। कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक थीं। अपनी अलौकिक आवाज, गहरी भक्ति भावना और सादगी से उन्होंने केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो पहले संगीतकार हैं। अर्ली लाइफ की बात करें तो 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के शहर मदुरे में उनका जन्म हुआ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी मदर प्रसिद्ध वीणा वादक थीं। संगीत के माहौल में पली बड़ी MS ने कम उम्र में ही अपनी माँ और महान गुरुओं से कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने मदुरे के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया। इसके बाद कुंभकोणम और मद्रास की प्रतिष्ठित संगीत अकादमियों में उनकी गायकी ने हर किसी को हैरान कर दिया। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन 1945 में आई फिल्म मीरा उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ। मीरा के किरदार में उनके द्वारा गाए गए भजनों जैसे हरी तुम हरोजन की भी

ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उनके भजनों के बड़े प्रशंसक थे। इसी के साथ आपको एक बात और बता दें कि यूएन की महासभा यूएन जनरल असेंबली में गाने वाली वो पहली भारतीय संगीतकार बनी, जहां उन्होंने विश्व शांति का संदेश देने वाला प्रसिद्ध गीत गाया। प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल माने जाने वाला पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला संगीतकार रहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आज भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी का जन्मदिन है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही दी जा सकती है कि हम शास्त्रीय संगीत को समझने की कोशिश करें। संगीत किसी भी राज्य या भाषा को वो पूरे भारत को ही जोड़ता है और हमारे देश की पहचान बनता है।

तो श्रोताओं, अभी आपने भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी जी की आवाज़ में भजन गीत सुना। और जितने भी यूथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी शास्त्रीय संगीत को सुनिए और उसे जानने और समझने की कोशिश करिए। और मैं मानती हूँ कि सबसे सच्ची श्रद्धांजलि अपने आप में है। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में प्रश्न मंच भी लेकर आते हैं, तो कल का सवाल था विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 13 फरवरी। और आज का सवाल है लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, इसका

श्रोताओं, हमारी पूरी टीम की यही कोशिश होती है कि हम हमेशा कुछ बेहतर आपके लिए लेकर आएं। हम बहुत रिसर्च करते हैं, हम बहुत इस बात पे सोचते हैं कि किन किन टॉपिक पर और बात की जाए और क्या बेहतर किया जाए आपके लिए। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।

0: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम प्रसाद और साथियों के स्वर में लोकगीत और श्रीपति उपाध्याय से नीति वचन। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे।

में स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। 8:30 बजे सबरस, 10 बजे फिल्म संगीत, 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। 9:30 पर रात में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा लाला हरदयाल के विचार। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत SM चौधरी से की गई वार्ता सुनिएगा, कृषि अपशिष्टों का सही प्रयोग। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर प्रकाश खेतान की वार्ता होगी, जीन थेरेपी भविष्य की क्रांति। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे 7:30 पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन, दिन में 12:15 पर गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर उस्ताद निषाद खां का सितार वादन। कल सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गीत और भजन कल सुबह 9:50 पर धनराज कुमार के स्वर में और शाम 7:45 पर रेणु पटेल के स्वर में। 10:05 पर फिल्म संगीत। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा दिनेश कुमार और साथियों के स्वर में, उर्मिला श्रीवास्तव और अमित यादव के स्वर में। 11 बजे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही कलाकार पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे गीतकार हसरत जयपुरी। 11:30 पर बोलते नगमे स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

कल दिन में 12:30 पर आपकी पसंद प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी अनुराधा श्रीवास्तव से लोकगीत और मधु चौधरी से की गई बातचीत। त्योहार तो मना रहे, क्या उनकी परंपराएं भी समझ रहे हैं? 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:15 युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सविता सागर और साथियों से लोकगीत और हिंचलाल से किसान चर्चा। कल शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी लखनऊ केंद्र से।

कल रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत, 8:30 पर सबरस और 10 बजे फिल्म संगीत। ये थी कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदर्शिता। नीति आयोगेन 25-अधिक-2000तमस्य भारत विद्युत संचार सूचकांकः प्रख्यापितः। विद्युत वाहनानां अंगीकरणे नवदिल्ली शीर्षस्थाने, महाराष्ट्र कर्नाटक राज्ये च द्वितीय तृतीय स्थाने वर्तेते। सऊदी अरब देशेन हूथी विद्रोहिणां ड्रोन विमानं निरुद्धम्। भविष्यत आक्रमणानां विरोधे दृढ़ पदक्षेपाणां संचेतना, हूथी समूहेन आक्रमण वार्ता प्रत्याख्याता। अपि च हरियाणा राज्ये चंडीगढ़े पंजाबे पूर्वोत्तर भारतस्य च कतिचित् भागेषु अद्य अति तीव्र वृष्टेः वर्तते पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः दृढ़तया प्रतिपादितवती यत् सर्वकाराय समर्प्यमाणेषु कर संबंधी प्रस्तावेषु मानांक न्यूनीकरणस्य, करमुक्तेः सौविध्यप्रदानस्य च याचनायाः अपेक्षया राष्ट्रं प्रथमम् इति भावः सर्वोपरि स्थापनीयः। सा अद्य बेंगलुरुनगरे अन्ताराष्ट्रिय कर अनुसंधान विश्लेषण प्रतिष्ठानेन आयोजिते नवयुग कराधान विषये द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे संबोधयन्ती आसीत्। मंत्री शिक्षाविदः शोधकर्तृन् चिन्तकाञ्च समाहूय स्वतंत्र करनीति संशोधनं सार्वजनिक संवादस्य नियमितं भागं कर्तुं आदिष्टवती, यस्य परीक्षणं समाह्वानं परिष्कारश्च कर्तुं शक्यते। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन कर्मचारी भविष्यनिधि संघटने अनिवार्य अंशदानाय विहिता मासिक वेतन सीमा 15,000 रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 25,000 रूप्यकाणि यावत् निर्धारिता। अद्य मंत्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् संबोधयता सूचना प्रसारण मंत्रिणा अश्विनी वैष्णवेन विज्ञापितं यत् अनेन निर्णयात्मक पदक्षेपेण 150,000 अतिरिक्ताः कर्मचारिणः EPFO अनिवार्य सामाजिकावरणे आगमिष्यन्ति, येन श्रमिकेभ्यः सामाजिक सुरक्षा कवचस्य बृहद् विस्तारो भविष्यति। अस्मिन् निर्णये सर्वकारस्य वार्षिकः व्ययभारः प्रायः 41,30,000 करोड़ रुपये संभाव्यते।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: मन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् 4,000,000 14,000 पर्यन्तं दशकेस्मिन् भविष्यनिधेः वेतनसीमा अपरिवर्तिता एवासीत्। तदनन्तरं 14,000 वर्षस्य सितम्बर मासे इयं सीमा 15,000 रूप्यकाणि यावत् संवर्धिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन निर्णयेन सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतो हि विगत वर्षेषु वेतनवृद्धेः आयसंवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरंतर विस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा 25,000 रूप्यकाणि यावत् विहिता। विदेश मंत्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहक प्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीय नौसेना घटकस्य अस्वीकार्य व्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मंत्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय जलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91,000 वर्षस्य अप्रैल मासे भारत पाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्यास संचालनस्य सैन्य संचारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लङ्घनमस्ति। विदेश मंत्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनयिकः निर्देशितः यत् सः संबद्ध पाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं सन्देशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्यघटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः। अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीय सन्धेः प्रावधानानां पूर्ण सम्मानं कुर्युः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाश

0: पंचो राम।
1: राम कहो रघु भाई, ये समय देखा हो खेती किसानी में तो भैया खरीफ का फसल जौन बने
0: हाँ भैया अब्दू,
1: देखा लहलहात बा हो,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: साथे साथे अपन खरीफ का मुख्य फसल धान बा,
0: बिल्कुल भैया कह गया।
1: और वही के साथे साथे देखा जौन दलहन और तिलहन वाली भी फसल है ना, ओहो भैया बाटे मूला जौन है ही रह रह के बारिश होत बने,
0: हाँ भैया
1: ऐसे जौन है दलहन और तिलहन में बड़ा नुकसान होत बा।
0: अच्छा भैया, हाँ सही कहा भैया। हाँ
1: और साथे साथे देखा धान का तो फसल बा मूला जहाँ देखा थोड़ा सा नीची जमीन बा ना हो,
0: हाँ हाँ
1: वहाँ देखा पानी लग गए तो भैया देखा धानों को नुकसान होत
0: हाँ
1: बा।
0: भैया कह
1: तो
0: भैया,
1: ये
0: ज़्यादा पानी भी फसल के लिए नुकसानदायक होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कही गया भाई। तो भैया किसान भैया हरन के चाहिए ना हो कि देखा जब पानी बरसत हैं तो भैया अपन डांडे मेड़ी जाई के जौन है ना
0: हाँ भैया
1: ओकर खेतवई मेड़वई कह लेवे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ओसे का बा कि अगर कौनो फसल में देखा पानी ज़्यादा लागत बे तो ओका पानी निकारे के व्यवस्था बनावे के
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: भैया
1: और साथे साथे हम कहा भैया देखा खेती किसानी में तो अपन बात बत कही होत रहा था ना मूला, तरह तरह का सरकार हमार देखा योजना परियोजना चलावत है हमारे
0: बिल्कुल
1: किसान
0: भैया
1: भैया हरन के। देखा जैसे कृषि मशीनीकरण है आजकल, पहले देखा हल बैल से खेती होत रही है,
0: हाँ भैया
1: तो भैया उमन हल बैल से खेती होत रही है ओकरे साथे साथे भैया धीरे धीरे देखा विकास भय तो अपन यंत्रीकरण के युग आए,
0: हाँ भैया
1: उमन भैया देखा ट्रैक्टर से अब खेती होत है।
0: कह भैया कि पहले के समय जो रहा भैया बैल से खेती करते रहे भैया, खेत जोते बैल से, उसमें बहुत समय लग जाता रहा भैया, पूरा खेत भी नहीं जोत पावत रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब का भैया मशीनीकरण आएगा भैया, कम समय में जल्दी हो जाता भैया, समय की बचत होती है, किसान भैया उस जो समय बचा था मैं कुछ अपना और काम कर लेते हैं भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया देखा कृषि मशीनीकरण जौन बा अब सरकार इस पर जौन है अनुदान भी देते हैं
0: अच्छा
1: किसान
0: अच्छा
1: किसान भैयन के, मूला जरूरत ही बा कि जानकारी जौन है उनका रखे के पड़े
0: बिल्कुल
1: कि कौनो भी यंत्र हो चाहे ट्रैक्टर हो और चाहे जुताई वाला यंत्र कल्टीवेटर है
0: अच्छा
1: रोटावेटर है थ्रेसर है, इस पर अनुदान कैसे मिल सकत है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो भैया देखा हर ब्लाकन में जौन है कृषि रक्षा इकाई बनी है,
0: हाँ भैया
1: वहाँ राजकीय बीज भंडार बना है भैया, वहाँ
0: अच्छा
1: जाए
0: अच्छा
1: के किसान भैया हरन के पता कह लेवे कि चाहे कि एक अनुदान वाला
0: अच्छा
1: कब आवत है, तो वहाँ से उन्हें जानकारी हुई है कि अनुदान कब मिलत है और
0: हाँ
1: कैसे मिलत है।
0: साथ साथ भैया कोई भी जो है सरकार की योजना के लाभ ले खातिर भैया अरे अपन दस्तावेज बना के रखे रहे भैया, जैसे
1: बिल्कुल
0: अपन
1: बिल्कुल
0: आईडी आधार कार्ड है पेन कार्ड बांटे भैया, ये सब रखे रहे भैया, बैंक पासबुक खाता खुला के, ताकि जो है योजना के लाभ ले सकें भैया अरे।
1: देखा हो रघु भाई जवन मूल बात बने कि किसान भैया हरन के अपन किसान पंजीकरण जरूर कराऊं है,
0: बिल्कुल भैया
1: और जब तक किसान पंजीकरण न कहीं भैया तब तक उनके जौन किसानी से जौन भी लाभ सरकार का बा वो
0: अच्छा
1: उनका तक न मिल पाए।
0: हाँ भैया
1: तो किसान पंजीकरण भैया सहज जन सेवा केंद्र पे किसान भैया अपन आधार बैंक पासबुक
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: खतौनी ये सब ले आए कि भैया देखा पंजीकरण कराए लें, और जौन ब्लॉक पे देखा राजकीय कृषि बीज भंडार बना है ना वहाँ भैया ले आए कि अपन ये आवेदन
0: हाँ
1: ऑनलाइन कराई के और
0: बिल्कुल
1: जमा कर दें तो उनका किसान पंजीकरण संख्या मिल जाए।
0: ताकि
1: और साथे साथे एक बात और कहा भाई
0: हाँ बोला भैया
1: कि देखा फार्मर रजिस्ट्री जौन बाटे अपने खेत का जौन है ये
0: अच्छा
1: फार्मर रजिस्ट्री किसान भाई हरे जे भी देखा छूट गए होए जे भी बचा होए किसान भैया
0: अच्छा
1: वो
0: अच्छा
1: अपन फार्मर रजिस्ट्री जरूर बनवाए लिए।
0: हाँ भैया
1: और साथे साथे देखा अपन ई बा नैनो यूरिया यहू पे देखा चर्चा होए मूला देखा आज पंचायती में का काल लाई के आए बाटा अपने पंच भैया रहन के सुनो बा तनी ओके बतावा।
0: भैया देखा आज बुधवार बुधवार के दिन बांटे भैया, और हर बुधवार भैया देखा नीति वचन के पाठ होता है, तो भैया श्रीपति उपाध्याय जी के नीति वचन सुना जाइए, और साथ ही साथ भैया देखा तो बातचीत भी बांटे, बाल श्रम निषेध धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव से सुरेश कुमार की बातचीत बांटे बहुत सुना जाइए। मुला भैया जब तक देखा अपन पंचायती में कुछ ढोलक मंजीरा नहीं बाजत भैया, देखा पंचायती कुछ नीक नहीं लगा था, तो हम कही भैया देखा राम प्रसाद और साथी के एक ठो विकास गीत बांटे, हम कही तू सुना किसान भैया सुने
1: सुनवा दे।

0: हाँ
1: भैया
0: भैया देखा, लोकगीत सुना का भैया, राम प्रसाद और साथी के भैया, बड़ा निक रहा भैया।
1: बिल्कुल हो कही गया रघु भाई। देखा जो बात बतकई होत रही ने कि भैया खेती किसानी के,
0: हाँ भैया।
1: तो भैया होई मुला हम कहा आवा एक थे संदेश सुन लिया है, फिर आगे बात बतकई होत रहे।
0: सुनवा दे भैया।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हाँ भैया, देखा हो
6: संदेश होगा भैया?
5: अब देखा बात बत कही होते रही भैया कि मशीनीकरण बा, उसे किसान भैया रहने के का फायदा बा, कैसे उसे फायदा उठा सकते
6: हैं। हाँ है,
5: और मशीन लई के भैया देखा जोन अनुदान पे मिलत है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है, ये सब के भैया देखा अनुदान पे लई के किसान भाई अपने खेती किसानी के बढ़िया तरीके से कह सकते हैं और कम समय में कम लागत में। और साथे साथे जोन बात बत कही होते रहे कि नैनो यूरिया,
6: हाँ
5: ये भैया देखा जोन दानेदार यूरिया होता है उसे अच्छी नैनो यूरिया
6: हाँ
5: होता है, ये तरल घोल में रहत है भैया, यानी कि एक बोरी यूरिया के बराबर जोन एक बोरी यूरिया में जितनी मात्रा में हो तो उतना भैया देखा मात्रा नत्रजन के आधा किलो
6: अच्छा अच्छा
5: नैनो यूरिया में बोतल में होता है।
6: अच्छा लिक्विड रहा भैया?
5: हाँ बिल्कुल भैया। तो और एका भैया देखा एका छिड़काव करे में भी आसानी होता है।
6: अच्छा भैया।
5: और साथे साथे एकर जोन है प्रभाव है, एकर प्रभाव भी जोन है वो दानेदार यूरिया से जोन है बढ़िया तरीके से और कम समय में होता है।
6: अच्छा अच्छा।
5: और कम से कम जोन है अगर भैया देखा एक बार छिड़की है तो 20 से 25 दिन एकर असर रहा था।
6: हम कही भैया कम समय में जो है अधिक मुनाफा देते भैया?
5: बिल्कुल बिल्कुल। इस साथ ही साथ देखा सस्ता भी पड़ा था।
6: अच्छा अच्छा।
5: तो भैया इसमें लागत भी कम आई तो नैनो यूरिया भैया किसान भैया हरिन के जरूर अपने फसल पे जो है छिड़काव करे के चाहिए।
6: बिल्कुल।
5: और इसे कहा कि इनके लागत कम आई और साथ ही साथ किसान भाई हैं देखा यह खरीफ सीजन में जो साग सब्जी की भी खेती करे हैं तो वहूक भैया विशेष ध्यान दें यह बरसात के मौसम।
6: हाँ भैया।
5: काहे से कि हरे पत्तेदार जो हैं अपन सब्जी वाली फसल हैं ऊपर देखा बरसात के समय में जब पानी बारिश होत है ना।
6: हाँ भैया।
5: तो भैया जो है जमीन के कीड़ा हैं सब ऊपर जो है पौधा पे
6: पत्ती चढ़ जाते हैं,
5: चढ़ जाते हैं। तो भैया किसान भैया हरिन के चाहिए कि उन्हों का रख रखाव देख रेख करे के चाहिए जो है। रघु भाई देखा जो कहत रहे ना।
6: हाँ भैया।
5: ये आज देखा बुधवार के दिन बा।
6: हाँ भैया।
5: तो भैया नीत वचन बा सिरपत

0: उपाध्याय के
1: अच्छा
0: हम तो कहा भी के सुनवावा और तुहु सुरा और पंच भैया रे भी सुने।
1: सुनवा दे भैया।
0: तो सुना,
2: हमारे देश के मनीषियों ने, ऋषियों ने पूरे विश्व के लिए एक उपदेश दिया है जिससे उनका कल्याण हो, उसके लिए उन्होंने नीति वचन कहे हैं। वो नीति वचन बहुत ही अनुभव के बाद सारी घटनाएं जो घटी उनके जीवन में उससे उनको जो अनुभव हुआ उस अनुभव को नीति वचन कहे हैं। जैसे लिखा है, विद्वान शत्रु ही भला नच मूर्खो हितकार कह, मान ऋण हतो राजा विप्र चौरिण रक्षित। तो एक तो श्लोक है, लेकिन इसके पीछे एक कथा है। कथा यह है कि एक राजा थे, गए जंगल में, वहाँ बंदर बंदरी का एक पेयर था। तो एक मुहूर्त आया हमारे यहाँ, उसके मुहूर्त की भी एक अपनी अच्छी परंपरा है, उसकी महत्ता है। तो उसने था कि इस मुहूर्त में अगर ये दोनों एक तालाब में कूद जाएंगे तो एक बंदर हो जाएगा, एक बंदरी हो जाएगा, रानी हो जाएगी, एक राजा हो जाएगा, रानी हो जाएगी। दोनों एक साथ कूदे, बंदरी पहले निकल गई और बंदर बाद में आया, बंदरी

गए जंगल में, वहाँ बंदर बंदरी का एक पेयर था। तो एक मुहूर्त आया हमारे यहाँ, उसके लिए मुहूर्त की भी एक अपनी अच्छी परंपरा है, उसकी महत्ता है। तो उसने था कि इस मुहूर्त में अगर ये दोनों एक तालाब में कूद जाएंगे तो एक बंदर हो जाएगा, एक बंदरी हो जाएगा, रानी हो जाएगी, एक राजा हो जाएगा, रानी हो जाएगी। दोनों एक साथ कूदे, बंदरी पहले निकल गई और बंदर बाद में आया, बंदरी रानी हो गई, बंदर रह गया। एक राजा गए शिकार खेलने के लिए, उन्होंने देखा कि यहाँ एक दिव्यांगना है, तो उन्होंने कहा भाई तू रानीवास काबिल है, उसको ले गए। लेकिन रानी ने कहा कि बंदर भी हमारे साथ रहेगा। राजा को नहीं पता था कि इसकी ये पूर्व प्रेसी है, इसका ये पूर्व प्रेमी है। जब लिवा गए अपने रनिवास में, तो एक दिन राजा और रानी दोनों सोए हुए थे। रानी का हाथ राजा गले में था, राजा का हाथ रानी गले में था। तो बंदर ने सोचा, अब तलवार रखी थी, तो बंदर ने सोचा कि मार दें राजा गला कट जाए। तो तलवार उठाया, मारने जा रहा था, उसी समय एक विद्वान थे जिनको बड़ा धनाभाव था, और वो चोरी करने की नीयत से राजा के उस महल में घुस गए। तो उन्होंने देखा कि राजा का जीवन खतरे में है और बंदर इनको मारने जा रहा है। तो पशुओं की भाषा उनको मालूम थी, उसमें उसे बोल करके तलवार अपने हाथ में ले लिए और बंदर को उन्होंने मार दिया। और बंदर के खून से उसी तलवार पर एक श्लोक लिखे कि विद्वान शत्रु ही भला, नच मूर्खो हितकार कह, बानरेण हतो राजा, विप्रचरण रक्षित। फिर आगे कहा गया, नदी नाम नखी नाम श्रृंगी नाम शस्त्र प्राणी नाम विश्वासम नवे कर्तव्य स्त्री राजकुलिस। जिस मनुष्य ये नदी में जब तक न जाने आप कहाँ भंवर है, कहाँ दह है, कहाँ ज़्यादा धारा है, जब तक न जाने उसमें प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए बिना समझे। नाखून वाले जानवर का विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रृंगी नाम सिंह वाले जानवर का विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो आदमी अपने हाथ में शस्त्र लिया हो, आप ये सोचें कि निर्द्वंद है कि नहीं, अटैक नहीं करेगा, वो कब आपको मार दे कोई भरोसा नहीं है, उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजकुल का भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैवचित राजचित इनका कोई भरोसा नहीं होता है। और स्त्री के लिए कहा गया कि इनसे गोपनीयता भंग होने का डर रहता है, इसलिए उसमें स्त्री का भी समावेश हो गया। फिर आगे कहा गया, अज्ञात कुलशीलेश वासो देवन कश्चित मार जा रहा शही दोषेण हतो वृद्ध जरद गव। जिसके कुल खानदान के विषय में, जिसके प्रकृति के विषय में, जिसके स्वभाव के विषय में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी न हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक गिद्ध रहता था जरदगव नाम का, गिद्ध बूढ़ा हो गया था। तो सारी पक्षियों ने सलाह किया कि हमारे बच्चों की रखवाली करेगा, हम इसको चारा देंगे। और जब पक्षियाँ चरने चली गई तो एक बिल्ली आई भेष बदल करके, वेशभूषा का बड़ा महत्व होता है। तो अपना बाल वाल में चूना उना पोत करके आई, उसने कहा कि हम भी वृद्ध हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो गिद्ध ने कहा कि नहीं, आप मांस खाने वाली प्रजाति है, हम आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन उसने कान छुआ, कंठी छुआ, जमीन छुआ और गिद्ध को अपने विश्वास में ले लिया। और गिद्ध ने बिना उसके विश्वास कर लिया, बिना उसके स्वभाव जाने। अंत में हुआ क्या, बिल्ली जब पक्षी चली जाती चरने के लिए, एक एक बच्चा रोज खा जाती थी, अब बच्चे की संख्या कम हो गई, पक्षियों को संदेह हुआ कि यही गिद्ध सारा बच्चा खा जा रहा है। अंत में पक्षियों ने मिल करके गिद्ध को मार डाला। तो उस पर विद्वान ने लिखा कि अज्ञात कुल शीलेश वासुदेवन कश्चित मार जा रहा शहीद दोषेण हतो वृद्ध जरद गवह। दोष था बिल्ली का, मार जा नाम बिल्ली, दोष बिल्ली का था और मारा गया बुढ़ा गिद्ध। फिर हमारे नीतिकारकों ने, हमारे मनीषियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। उनका दिवा वीक्ष वक्तव्यम रात्रम नैव नैव च, दुष्टा सर्वत्र तिष्ठन्ति बट वृक्षे बण रुचिर यथा। दिन में अगर आप कोई गोपनीय बात कर रहे हैं तो दाहिने बाएं अगल बगल जरूर देख लीजिए, और रात्र में कभी गोपनीय वार्ता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्टा सर्वत्र तिष्ठन्ति, ये दुर्जन जो हैं हर जगह है, इनकी उपस्थिति रहती है। बट वृक्षे बण रुचिर यथा, अब ये बट वृक्ष बण रुचिर यथा, बण रुचिर नाम के बड़े विद्वान थे। तब इसमें एक छोटी सी कहानी है, वो बता देना, हम उपयुक्त समझते हैं। तो एक विद्वान से पढ़ के आ रहे थे, तो लौटे थे, एक जंगल में एक स्वर्णकार मिल गया उनको। और स्वर्णकार ने कहा कि उनको, हम आप सारा धन ले लिया और कहाँ मार डालेंगे।

तो उन्होंने कहा ठीक है हमको मार देना, लेकिन हम दो अक्षर लिख देते हैं हमारे घर पर भेज देना। तो विद्वान ने लिखा अप्रसिखा, ये चार अक्षर उन्होंने लिख दे दिया और कहा कि हमारे घर भेज दीजिएगा, और उसको मार डाले। मारा उसकी वो इतना किया जो स्वर्णकार ने कि उस चार अक्षर को उनकी पत्नी के पास भेज दिया, उनकी पत्नी के पास भेज दिया। और काफ़ी दिन जब विगत हो गए वो पंडित विद्वान नहीं लौटे तो उनकी पत्नी गई राजा के यहाँ, तो राजा से पता अपनी समस्या बताई। राजा ने विद्वानों की सभा बुलवाया, सारे विद्वान जब इकट्ठा हुए तो ये उन्होंने रखा कि अप्रसिखा, इसका आप लोग बताइए क्या तात्पर्य है। कोई विद्वान नहीं बता सका। जब नहीं बता सके तो राजा ने कहा कि कल के एक दिन मौका देते हैं और परसों आप लोग सबकी फांसी कर दी जाएगी। तो सारे लोग घबरा गए, सारे विद्वान भागने लगे। तो उसमें बड़रुचि नाम के एक विद्वान थे जो कि भागते भागते जंगल में जान बचाने के लिए गए, तो उसी कोटर में जहाँ वो गिद्ध बैठता था उसी बरगद में एक कोटर था, उसी कोटर में जाकर बैठ गए वो। और गिद्धनी उसकी जो पत्नी थी गिद्ध की, उसको रात में मांस खाने की इच्छा हुई, तो उसने कहा कि हमको मांस चाहिए, ताज़ा मांस चाहिए, अभी चाहिए। गिद्ध ने बहुत समझाया, कहा कल सुबह देंगे, आज हम नहीं दे पाएंगे। उसने कहा कल आप कैसे देंगे। तो वो घटना जो घटी थी विद्वान वाली, वो गिद्ध जंगल में रे दो सब देख रहा था, उसने बताया सीधी घटना हुई है और कोई विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पा रहा, कल सारे विद्वानों की फांसी हो जाएगी, तो हम आपको देंगे। अच्छा, जब वो बड़ोसी नाम के विद्वान जो वहाँ बैठे थे ये सारी घटना जब सुन लिए तो जाके राज दरबार में इसकी व्याख्या कर दिए और सारे विद्वान फांसी टल गई। तो उस गिद्ध ने लिखा, वहीं उसने लिखा कि दिवा वीक्ष वक्तव्यम रात्रम नैव नैव च दुष्टा सर्वत्र तिष्ठन्ति वट वृक्षे बड़रुचिर यथा। गोस्वामी जी ने लिखा कि दामिनी दमक रही घनमाही और खलकी प्री जथा फिर नाही, जैसे बिजली आकाश में कौंसती है और फिर लुप्त हो जाती है, उसी तरीके से जो खल होते हैं दुष्ट होते हैं इनकी मित्रता जो है ये इससे नहीं होती है, ये कब समाप्त हो जाए कब मित्रता कर लें कोई भरोसा नहीं। हमारे यहाँ कहा भी गया है स्वार्थ लेकर के अगर कोई संबंध हुआ है तो बहुत दिन चलता नहीं, टिकाऊ नहीं होता है। फिर मानस में आया है कृषि निरामय चतुर किसाना जिमि बुध हरय मोह मदनाना, जैसे किसान जो चतुर किसान है प्रगतिशील किसान है वो खेती में फसल बोए हैं, सब्जी है कोई फसल है उसमें से घास तमाम जितनी प्रकार की घास हैं सबको निकाल लेते हैं, फसल अच्छी होती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया जिमि बुध हरय मोह मदनाना, जो इंटेलेक्चुअल हैं जो बुद्धिजीवी हैं उनके अंदर जो विकार है जैसे मोह है मद है लोभ है ये विकार हैं, तो जैसे घास बढ़ती है फसल को चौपट कर देती है उसी तरीके से ये मोह मद लोभ ये मनुष्य चौपट कर देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि कृषि निरामय चतुर किसाना जिमि बुध हरय मोह मद नाना। फिर मानस में ही एक प्रसंग आता है जिसमें रावण भगवान राम की दोनों सेनाएं समरांगण में आमने सामने हैं और भीषण रावण के पौरुष को रावण के साहस को रावण के पराक्रम को वो जानता था, और ये देखा कि भगवान राम तो एकदम पैदल है। विभीषण घबरा गया, रावण रथी बीरथ रघुवीरा और देख विभीषण भय व धीरा नाहिन रस नाहिन पद त्राना केह विधि जीतब रिपु बलवाना। तो भगवान ने कहा विभीषण को वहीं समझाया है कि हमारे पास एक ऐसा रथ है धर्म रथ है, अगर वो जिसके पास है उसको कोई जीत नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि हमारे पास ऐसा रथ है सौरज धीरज अस रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, हमारे पास ऐसा रथ है जिसके दो चक्के हैं एक शौर्य का है एक धैर्य का है। रावण का जो चक्का है वो शौर्य है उसके पास धैर्य नहीं है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, हमारे रथ में जो पताका लगा हुआ है वो सत्य का पताका है और शील का पताका है, रावण के पास न सत्य है न शील है। फिर भगवान ने समझाया बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा दया समता रज जोरे दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन कोडंडा। तो उन्होंने बताया कि हमारा ये धनुष है श्रेष्ठ ज्ञान धनुष है और श्रेष्ठ संतुलित बुद्धि ये हमारी प्रचंड शक्ति

0: है और बाणों के विषय में बताया कि हमारे संयम नियम इंद्रिय निग्रह ये हमारे बाण हैं, इसने सखा धर्म में असर जाके जीत न सके कमोह रिपता के। अय विभीषण, जिसके पास ऐसा धर्मरथ होता है उसको कभी कोई जीत नहीं सकता है, ये भी बहुत सुंदर उपदेश गोस्वामी जी ने दिया है। अतः हम अभी अपने समाज के लोगों से, अपने देशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जो कुछ नीति के वचन कहे हैं उस पर अमल करें, उससे उनका कल्याण होगा।
1: हाँ भैया, देखा नीति वचन सुना का भैया, श्रीपति उपाध्याय जी का बड़ा फरिया फरिया बताए भैया है।
2: बिल्कुल हो भाई, देखा नीति वचन जो अनुबान है ये जितना बढ़िया बताए हैं जो है।
1: हाँ भैया,
2: हम तो कहब देखा खेती किसानी के साथ साथ भैया अपन जौन बा ऋषि मनीषी जौन भी बताए हैं ओकरे बतावे के अनुसार उनके भैया देखा वह रास्ते पे चल के जौन है अपने मन का देखा सुकून मिलता है।
1: मन तो सुकून मिलता है भैया, अपन जो जीवन जिए के जो कला बटे वो आसान हो जाता भैया।
2: बिल्कुल हो देखा अपने नीति वचन में भैया देखा खेती किसानी तक का बात जौन है बताएं।
1: बिल्कुल भैया,
2: कि अगर फसल में भैया देखा घास उग जात बन हो तो ओका भैया देखा
1: निकाल
2: देते हैं जौन है, जौन चतुर किसान है, प्रगतिशील किसान है।
1: बिल्कुल।
2: और मुला देखा अब तो भैया देखा उमन लैया के दवा छिड़क देते हैं जौने से कि अपने फसल के भी नुकसान हो तो जौन उत्पादन हो तो हुप देखा नुकसान हो।
1: हाँ भैया,
2: मुला भैया हम तो कहा भी जौन थोड़ा मोड़ा घास पात रहा है ये तो भैया निराई देवे के चाहिए।
1: हाँ, बीच बीच में निकाल दे चाहिए भैया।
2: बिल्कुल हो। और देखा कहा गब न कि खेती और बारी यानी खेती के साथे साथे पशुपालन भी किसान भाई अरन के जरूर करे के चाहिए। तरह तरह के सरकार भी योजना परियोजना चलावत है पशुअन के बदे जौन है।
1: हाँ भैया,
2: तो भैया देखा पशुअन पे भी जौन है अपन विशेष ध्यान देवे के चाहिए, काहे से कि उनसे जौन गोबर का खाद होत है।
1: हाँ भैया,
2: वो सबसे अच्छी और उत्तम खाद मानी जाती है।
1: बिल्कुल भैया, अब बने में भी बड़ी आसान होती भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: गोबर सड़ा के भैया कंपोस्ट खाद बना लिया भैया।
2: बिल्कुल हो, चाहे बर्मी कंपोस्ट बनाओ साथे साथ देखा नेडप कंपोस्ट।
1: अच्छा,
2: ये सब खाद जौन है तत्व जौन होत है वो जौन है जौन ये रासायनिक खाद है ऐसे उच्च गुणवत्ता वाली होती है।
1: हाँ,
2: तो ये लिए जौन है ज़्यादा से ज़्यादा जौन है बर्मी कंपोस्ट नेडम कंपोस्ट के जौन है खाद का उपयोग किया जाए। किसान भाई हरे करें जौन है तो उनके माटी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे।
1: हाँ भैया, पैदावार तो अच्छी होते हैं साथ साथ जो माटी की संरचना बनी रहती भैया।
2: बिल्कुल जौन है। और साथ ही साथ रघु भाई हम कहा देखा एक बातचीत बाटे जौन है ओके सुनवा दे का बाटे एक बतावा
1: भैया। देखा बातचीत बाटे बाल श्रम निषेध धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव से सुरेश कुमार की बातचीत बांटे हम कही भैया, तू सुना किसान भैया सुने।
2: बिल्कुल भैया सुनवा दे।
3: भैया देखा खेती किसानी के साथ साथ और भी जानकारी हो बहुत जरूरी बा कि अपने लड़का गदेल गांव गिराव में पढ़ाई लिखाई का छोड़ के काम धाम में लग जाते हैं जौने से उनके विकास रुक जाते, आगे उनके भविष्य नहीं बन सक पावता है। तो ऐसे दशा में समय समय पर अपने कार्यक्रम में बाल श्रम निषेध कानून के विशेषज्ञ भैया का बुलावा जाते है और उनसे जानकारी लिया जाते है। तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव भैया आए हैं जो हम अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाल श्रम निषेध कानून के तहत ई बाल श्रम ई का बा और हमारे किसान भैया बहनी हरिन का फरिया की जानकारी दें।
4: सबसे पहले हमको ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम क्या है। ये अधिनियम सबसे पहले 1986 में बनाया गया। ये कानून संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू किया गया। बाल श्रम का मतलब है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से क्या क्या कराया जाता है।
3: जी,
4: आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चों से हमारा तात्पर्य है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं।
3: हाँ।
4: ये दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, थिएटर या लोक मनोरंजन स्थानों पर देखे जाते हैं
3: जी।
4: और अक्सर काम करते हुए पाए जाते हैं।
3: तो भैया जैसे कि ये लड़का जो 14 साल से कम उम्र के हैं काम धाम करत हैं, तो ऐसे बालों का जो उन्हें बाल श्रम की रोकथाम बदे सरकार की तरफ से कोनो रोकथाम बदे कुछ उपाय की हल जात बा?
4: जी हाँ, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये कानून सबसे पहले 1986 में बनाया गया।
3: हाँ।
4: इस कानून

0: कानून के अंतर्गत ये कहा गया कि किसी भी बालक को किसी भी स्थान पर ना तो काम कराया जाएगा और ना ही उनको नियोजित किया जाएगा
1: अच्छा
0: और ना ही इनके किसी प्रकार का कोई काम लिया जाएगा।
1: जी,
0: अगर कोई ऐसा करता है तो वो पूर्णतया गलत है।
1: साथ ही साथ जैसे कि बहुत से लड़का गदेल हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं और देखे में उनके जो उन्हें उम्र का भी सही जो है नहीं जानकारी हुई पावत बा कि ये 14 साल के हैं कि ज़्यादा के हैं कि कुछ कम के हैं, तो ऐसे दशा में हमारे भैया जैसे कि बाल गोपालन के लिए कौन बातन का ध्यान रखा जाए।
0: अक्सर छापे के दौरान ये प्रश्न खड़ा हो जाता है
1: जी
0: कि दुकान वाले बताते हैं कि 14 वर्ष से ऊपर है, अधिक है, जबकि उसकी उम्र 14 वर्ष से कम आकी जाती है। जबकि भारत सरकार का श्रम विभाग है जो कि हर जिले में स्थापित किया गया है,
1: हाँ
0: हर जिले में एक श्रम विभाग बनाया गया है जिसमें उप श्रम आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्त होती है,
1: जी
0: जिनको हम निरीक्षक भी कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: कि दुकानों पर जाकर जांच करते हैं कोई बच्चे 14 वर्ष से कम वहां पर काम तो नहीं कर रहे हैं।
1: जी
0: इनको ये अधिकार होता है कि ये किसी भी दुकान, होटल, कारखाना में छापा मार सकते हैं
1: हाँ
0: और छापे के दौरान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पकड़ा जाता है,
1: जी
0: जो सबसे पहले उनका CMO, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनको हम कहते
1: जी
0: हैं, जो कि हर जिले में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी बैठता है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं,
1: हाँ हाँ
0: ये भी ये एक प्रमाण पत्र देता है और
1: अच्छा
0: उसकी जांच करता है। जांच के बाद वो ये इंक्वायरी करके बताता है कि ये 14 वर्ष से कम है कि 14 वर्ष, क्योंकि ये बच्चे पढ़े लिखे तो होते नहीं,
1: जी
0: इनका कोई प्रमाण पत्र तो होता नहीं है, तो
1: हाँ
0: इनकी उम्र के बारे में अक्सर विवाद होता है। तो
1: जी
0: CMO एक जांच के द्वारा ये पता कर लेता है कि इनकी उम्र कितनी है और
1: अच्छा
0: वो 14 वर्ष से कम है कि या 14 वर्ष से ऊपर है। अगर वो
1: जी
0: 14 वर्ष से कम है
1: हाँ हाँ
0: तो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
1: तो भैया जैसे कि आप बताएं कि सीमो के जरिए से ही जानकारी मिल जाता है कि कौन लड़का गदेल 14 साल से कम है कौन ज़्यादा है। साथ ही साथ जैसे कि दुकानदार हैं या कारखाना में ही लड़का गदेला जो है काम धाम करत भय पकड़े गए, तो ये दुकानदार का है आज इनके कारखाना बा, तो इनका कोनो धारा में कार्रवाई के कोनो रास्ता बा।
0: हम लोग को इस धारा की जानकारी अत्यंत आवश्यक है।
1: जी
0: ये बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 14 की उपधारा 1 व 2 के अंतर्गत दोषी होता है। इस
1: हाँ
0: धारा में किसी भी बालक को, जो 14 वर्ष से नीचे की उम्र के लोग हैं, उनको नियोजित नहीं किया जा सकता है
1: अच्छा
0: और ना ही उनसे किसी प्रकार का काम कराया जा सकता है।
1: जी
0: और उसे जो सजा भी उसके लिए जो भारत सरकार द्वारा एक प्रावधान किया गया है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भारत सरकार द्वारा एक दंडात्मक कार्रवाई करके उनको सजा भी हो सकती है। उस मालिक को जिसका दुकान है या उसका कोई नियोजित कारखाना है, उसको, उसके मालिक को, उसके मैनेजर को दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है
1: जी
0: और उनको 3 माह से 1 वर्ष तक की अवधि तक कारावास की जा सकती है। यानी उनको 3 माह से लेकर के 1 वर्ष तक, ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो
1: अच्छा
0: कितनी सजा देता है, उसको अधिकार 3 माह से लेकर के 1 वर्ष तक है। साथ में उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, केवल
1: जी
0: उनको जेल ही नहीं, साथ में न्यायालय उनको जुर्माना भी लगाती है।
1: हाँ
0: और इसमें एक प्रावधान और है जो हम आपको जानकारी दे दें
1: जी
0: कि बहुत से खतरनाक स्थान होते हैं,
1: जी
0: अगर वहां पर कोई कार्य करता है तो उसके लिए 1 वर्ष से अधिक की भी सजा का प्रावधान है।
1: अच्छा भैया जैसे कि आप बताएं ये खतरनाक वाला बात बताएं, तो ये खतरनाक स्थान से ये का मतलब है।
0: कुछ स्थान हमारे खतरनाक होते हैं जहां पर बच्चे काम करते हैं, जैसे कि हम कुछ आपको उदाहरण के स्वरूप बता दें,
1: जी
0: जैसे बीड़ी बनाना
1: जी
0: है, सीमेंट निर्माण करना, यह भी
1: हाँ
0: खतरनाक उद्योग में आता है। दिया सलाई, माचिस जिसको हम कहते हैं, कि उसका भी निर्माण खतरनाक उसमें आता है।
1: जी
0: पटाखों का निर्माण करना, चमड़ा का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक कार में जोड़ना, ये सब कार्य खतरनाक होते हैं और यहां
1: हाँ
0: पर अक्सर छापे के दौरान बच्चे कम उम्र के पाए जाते हैं। बच्चे भी पाए जाते हैं, महिलाएं भी पाए जाते हैं।
1: जी
0: 14 वर्ष से कम बच्चे अक्सर इन स्थानों पर गांव के लोगों को प्रयोग करके उन बच्चों को कार पे लगा लिया जाता है, जो कि अत्यंत खतरनाक होता है और इनसे इन बच्चों के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इस तरह के कार्यों को बालक से अगर कार कराता है तो उसे 2 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है। जैसे
1: अच्छा
0: उसमें हमने बताया था आपको कि 1 वर्ष तक की सजा होती है,
1: जी
0: लेकिन अगर खतरनाक उद्योग में कोई पाया जाता है तो उसको न्यायालय 2 वर्ष तक की भी सजा कर सकती है और जुर्माने का प्रावधान भी अलग से है, जो कि उसमें था और इसमें भी है।
1: जी साथ ही साथ जैसे कि बाल श्रम के संबंधित कोनो तरह की समस्या आ जाए, तो ऐसे बाल श्रम के निपटारे खातिर कहाँ पर कोनो तरह के न्यायालय भी जो उन्हें बना बा।
0: जी हाँ, बिल्कुल, इसके

0: लिए एक अलग से न्यायालय की स्थापना की गई है। लेकिन
1: हाँ
0: सबसे पहले ये जो विशेषाधिकार होता है,
1: जी
0: ये हम जो श्रम विभाग, हमने आपको बताया था कि हर जिले में एक श्रम विभाग होता है, उसमें उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त जो
1: जी
0: बैठते हैं, उनको ये केस सुनने का, ये मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त होता है।
1: अच्छा
0: जो कि जहाँ पर इस प्रकार का कोई भी वाद दायर होता है, तो सबसे पहले इनके पास ये केस जाता है, ये मुकदमा जाता है, और वो सबसे पहले उसको सुनते हैं और अपना निर्णय सुनाते हैं।
1: जी
0: और अगर यहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है,
1: हाँ
0: तो ऐसी दशा में वो श्रम न्यायालय से, श्रम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिनको हम लेबर कोर्ट कहते हैं,
1: जी
0: ये हर जिले में स्थापित है। तो ऐसे जगह श्रम न्यायालय में भी इन मुकदमों को चलाया जाता है, और वहाँ पर इस मामले को सुन के न्यायाधीश जो होते हैं, वो इनकी कार्रवाई करते हैं और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और सजा सुनाते हैं।
1: साथ ही साथ हम आपसे एक बात ये जानना चाहती थी कि जैसे कि बहुत गरीबी घर के लड़का गदेल हैं गांव गिराव के, और जैसे कि बहुत से लड़का गदेल के पिता नहीं हैं, महतारियों नहीं हैं, ऐसी दशा में खाए पिए से लेकर पढ़ाई लिखाई से तरह तरह की समस्या आवत है। तो काम अगर ना करें हैं तो इनके खाए पिए की व्यवस्था साथ साथ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे आगे होए, और एक ही बदे सरकार जो उन्हें का जो उन्हें उपचार के हलवा हम इस विषय में जाना चाहते हैं।
0: ये बच्चे अक्सर जो है, इनको खाने को नहीं होता, तो
1: जी
0: इनके माँ बाप ही इनको जो है ऐसे रोजगार में डाल देते हैं
1: हाँ
0: जिससे कि घर में कुछ पैसा है,
1: जी
0: और इससे इनकी एजुकेशन, इनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है।
1: हाँ
0: तो इन बच्चों के लिए सरकार द्वारा एक अलग से शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
1: जी
0: ये एक बाल श्रम विद्यालय की स्थापना की गई है, ये भारत सरकार की परियोजना है, ये भारत
1: जी
0: सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये की व्यवस्था की गई है। जिले में इसका हेड जो होता है, मुख्य प्रमुख जो होता है, वो उप श्रम आयुक्त ही होता है, और
1: जी
0: यह सहायक श्रम आयुक्त को इसका परियोजना अधिकारी बनाया जाता है,
1: हाँ
0: जिसमें एक हर गांव में 2-3 गांव को लेकर एक बाल श्रम विद्यालय की स्थापना की जाती है।
1: जी
0: इसमें विशेष सहयोग लिया जाता है स्कूल का भी, एनजीओ का भी,
1: हाँ
0: जो ये स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं,
1: जी
0: इनके सहयोग से श्रम विभाग जो है ये ऐसे स्कूल की, बाल श्रम विद्यालय की स्थापना करता है, और उसमें बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
1: और भी जौन सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं हम जानना चाहते हैं कि जौन जानकारी होए और बताएं।
0: बाल श्रम विद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें
1: जी
0: बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, और ये एक एनजीओ के माध्यम से सहयोग से ये परियोजना चलाई जाती है, संचालित की जाती है।
1: हाँ
0: भारत सरकार इन संस्थाओं के माध्यम से गांव-गांव में सबसे पहले सर्वे कराती है कि इस तरह के कितने बच्चे हैं, और जिनके पास खाने को नहीं है, या माता पिता ने उनको दुकानों में और चाय की दुकानों में या कहीं पर लगा दिया है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो
1: जी
0: ये एक संस्था के माध्यम से पहले एक सर्वे किया जाता है। उस
1: हाँ
0: सर्वे में जो बच्चे पाए जाते हैं,
1: जी
0: फिर उनको अधिकारी के माध्यम से उस स्कूल में डाला जाता है, उनके माता पिता से संपर्क करके उनको उस स्कूल में उनका नाम लिखाया जाता है, और उसके बाद उनको निःशुल्क शिक्षा उसमें दी जाती है। केवल निःशुल्क शिक्षा ही भारत सरकार नहीं देती है,
1: जी
0: उसके साथ साथ भी, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट हो उस स्कूल में आने के, उसके
1: हाँ
0: लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है,
1: जी
0: जैसे कापी है, पेंसिल है, पुस्तक है, इस टाइप की जो भी चीजें हैं,
1: हाँ
0: वो सब निःशुल्क प्रदान की जाती है बच्चों को। उसे
1: जी
0: बच्चों को कहीं से, घर से खरीद के नहीं लाना है, सारी
1: हाँ
0: निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है, सारी सामान। और आपको ये बताएं कि इनको स्कूल जब वो आते हैं तो निःशुल्क भोजन भी दिया जाता है,
1: जी
0: एक भोजन उनको दोपहर में प्राविधान है, जिससे कि बच्चे वहीं पढ़ें लिखें, और भोजन की व्यवस्था की गई है। उनके खेलने की भी व्यवस्था वहां से अलग से की जाती है, जैसे
1: अच्छा
0: कि कैरम बोर्ड रख दिया जाता है, लूडो रख दिया जाता है, और फुटबॉल रख दिया जाता है, वॉलीबॉल रख दिया जाता है, जिससे
1: जी
0: कि बच्चे वहां पर खेलें और जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। साथ
1: हाँ
0: साथ उनको अलग से भी कुछ शिक्षाएं दी जाती है, टेक्निकल जानकारी भी दी जाती है, तो इस टाइप की बहुत सारी जानकारी उनको दी जाती है, जिससे
1: अच्छा
0: कि वो जानकारी प्राप्त कर लें कि भविष्य में हमको कभी कभी टेक्निकल जानकारी भी उनको अत्यंत आवश्यक होती है।
1: जी
0: इसके पीछे भारत सरकार का उद्देश्य ये है, ये कि
1: हाँ
0: अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आएं और शिक्षा प्राप्त करें। ये सारी
1: अच्छा
0: से जो सुविधा दी जाती है, इसके पीछे उद्देश्य ही यही है कि वो आएं और उसका जिससे दुरुपयोग ना हो सके।
1: तो भैया जैसे कि आप हमारे कार्यक्रम आयन और बाल श्रम निषेध कानून के विषय में जो उन फरियाह की जानकारी दिन हमार किसान भैया बहनी हरिन ऐसे इन बाल गोपालन के से काम

0: विद्यालय के उनका पढ़ाव लिखाव में आगे बढ़ी हैं। ये सब जानकारी देख खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ
2: देखा हो रघु भाई, ये रहा
1: बातचीत रही भैया,
2: बाल
1: श्रम निषेध है, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव से सुरेश कुमार की बातचीत रही भैया, बड़ा नीक नीक बताए भैया।
2: बिल्कुल हो देखा फरियाई की बाल श्रम निषेध कानून का बाटे जोन है एक बारे में कैसे का हो तो भैया सब जानकारी देहन, यानी कि जोन कम उम्र के गदेला लड़का हैं भैया उनका देखा कल कारखाना में
1: हाँ
2: न लगावे के चाही जोन है। भैया आजकल तो शिक्षा व जोन है शिक्षा पढ़े लिखे भैया उम्र हो या तब भी देखा कोनो काम धंधा में लगे के चाहिए।
1: बिल्कुल भैया,
2: तो साथे साथे देखा जोन बात बत कही होत रही अपने खेती किसानी के यानी खेती और बारी के,
1: हाँ भैया,
2: तो भैया देखा ये बरसात के समय में अपने पशुअन के जोन है विशेष ध्यान देवे के पड़े।
1: बिल्कुल भैया, हाँ
2: काहे से कि देखा पशु जोन है अनबोलता है
1: हाँ भैया,
2: भैया, उनका कोनो भी समस्या हुई तो वो बोल नहीं सकते, तो इसलिए हमार तोहार कर्तव्य बाटे कि समय समय पे उनके खाना है पानी है रख रखाव है
1: हाँ भैया,
2: चारा के व्यवस्था, तो भैया देखा ओके करे के पड़ी।
1: हाँ साथ ही साथ भैया उनके जो खाए वाले बर्तन बाटे भैया ये बरसात समय में धो दे चाहिए भैया, कल भैया मैंने काफ़ी देर के जो चारा रखा रहा था ना सड़े लगत भैया, पता पशु खा लें तो बीमार पड़ गए, और साथ ही साथ भैया पशु का अगर खुले में बांध दिया है जहाँ वहाँ खड़े हैं पशु कीचड़ हो गया है तो उनका वहाँ हटा के सूखी जगह बांध दें भैया ताकि उनके खुर खराब ना हो,
2: बिल्कुल
1: क्योंकि
2: बिल्कुल
1: भैया बरसात में अक्सर खुर खराब हो जाते हैं और बरसातें में पशुपन के जो है जैसे खुर पका मुँह पका जैसे बीमारी हो जाती है भैया, तो ओके बड़े जो है सरकार की तरफ से टीका लगावा जाता है, जो भैया अरे अपने पशु के टीका ना लगवाए हों टीकाकरण करवा लें।
2: बिल्कुल हो बरसात में जो उन भैया टीकाकरण होता है अगर जे भी किसान भाई हरे अगर अपने पशुअन के टीकाकरण न करावे तो भैया वो ब्लॉक पे संपर्क कई के जोन है अपने पशुअन के और टीकाकरण जरूर करा लें, कहें से ऐसे तरह तरह के बीमारी से निजात मिलत
1: हाँ
2: है।
1: कैद भैया देखा पशु बहुत महंग है इस समय, अगर कोई पशु कुछ होएगा भैया आर्थिक रूप से आदमी है कमजोर हो
2: बिल्कुल
1: जाए
2: हो
1: भैया।
2: देखा खेती किसानी में किसान मनई हैं भैया उनके लिए जोन है अपन पशु एक धन है,
1: हाँ भैया,
2: तो इसलिए भैया उनके समय समय पे चारा दें और समय समय पे स्वच्छ और ताज़ा पानी दें
1: बिल्कुल भैया,
2: और साथे साथे उनके नात का सफाई भी प्रतिदिन जोन है करे के चाहिए।
1: हाँ भैया, हाँ
2: भैया देखा हो हम कहब न खेती बाड़ी में कुछ साग सब्जी के भी किसान भैया हरे खेती करें
1: हाँ हाँ
2: तो यह बरसात के समय में वो भूख भी देख रेख करे के चाहिए,
1: बिल्कुल,
2: चाहे जोन है देखा नेनुआ है और तरोई है लौकी है ये सब के भैया खेती करे हैं तो हमें कौनो कीड़ा मकोड़ा लागत हैं,
1: हाँ
2: तो
1: भैया,
2: भैया अपन कृषि रक्षा इकाई पे जाए के भैया वहाँ विशेषज्ञ भैया लोग देखा बैठे थे
1: बिल्कुल,
2: और उनसे जानकारी ले के जोन है हमन जोन भी दवा का छिड़काव कहें और समय पे और सही मात्रा वहाँ जानकारी हो या था हो तो
1: बिल्कुल भैया,
2: अपन फसल जोन है सुरक्षित रहता
1: हाँ
2: है
1: भैया
2: और भरपूर उत्पादन भी मिलत रहता
1: बिल्कुल
2: है।
1: भैया, देखा भैया इनके हमारे लोग के प्रोग्राम कैसा लगा अपन प्रतिक्रिया दे सका थे, तो भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें भैया, आ रहे हैं 800-4926-250, भैया अरे नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 800-4926-250, तो भैया अरे इस नंबर पे अपन प्रतिक्रिया जरूर दें हम लोग के, अब भैया देखा चला चली की बेला बाटे
2: तो
1: तो
2: पंचो
1: पंचो राम
2: राम
1: राम।
2: राम।
3: ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

सूत्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। 8:30 पर सबरस, 10:00 सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रतिमाह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है।

0: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
1: 25,000 रुपीस पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे। दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एवरी ईयर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष के सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर कल से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कल श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
2: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा, 7 अक्टूबर तक के वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत कल सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान देश भर में कल से शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

0: प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की पहचान पूरे देश में बदली है।
1: आज बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी, लगातार ये सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है। श्री योगी ने कहा कि आज हम नए गोरखपुर, नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
1: एक नए गोरखपुर का, एक नए यूपी का, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, गोरखपुर में ब्याडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। एम्स गोरखपुर में आ गया। गोरखपुर में आज 2 मेडिकल कॉलेज, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित हैं।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग PGT के कुल 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी एवं सहायक अध्यापक शहरी के पदों के लिए विज्ञापन के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग PGT के 2,607 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत लखनऊ के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण आज से 12 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक ब्लॉक लेगा। इस दौरान एयर कॉन्कोर्स का काम पूरा किया जाएगा। इस कारण 85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर किया 25,000 रूपए प्रति माह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग PGT के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का है, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की।

0: हमारी पसंद का गाना रखिए।
1: अरे क्या बात है नेहा जी, अगर जब श्रोताओं की पसंद हमारे कार्यक्रम में जुड़ती है
0: जी,
1: तो अपनायत की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती है, यानी एक जिम्मेदारी जवाबदेही का एहसास तो हो ही रहा होता है, साथ ही ये भी लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो किस तन्मयता से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और अपनी पसंद पूरे अधिकार के साथ हम तक पहुंचाते हैं।
0: अब 90s में एक फिल्म आई, जब वो सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होती है
1: जी जी,
0: नाम था रंगीला।
1: ओहो क्या बात है, तो उसके तो एक से बढ़कर एक गीत है।
0: हाँ, लेकिन वो गीत जिसमें शब्द आपको ऐसा लगेगा कि शायद हर कोई बोलता है उसमें से वो शब्द, जैसे रामा पिया है ना, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन जो ढंग है वो बिल्कुल जुदा है।
1: क्या बात है, और जब रामा आपने शब्द का इस्तेमाल ही किया है नेहा जी,
0: जी
1: तो जब भी कभी हम किसी घटना को घटित होते देख रहे होते हैं या किसी को सामने पा जाते हैं इस तरह से, तो हाय राम ये एक हमारे मुख से निकल ही आता है, और जब रामा की आप बात करें तो यानी हाय रामा जब ये जुड़ जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत उभर कर आता है, और नाम तो आपने फिल्म का बता ही दिया है
0: जी।
1: और बहुत ही खूबसूरत सी उर्मिला मातोंडकर का जो चेहरा है, जो ग्लैमर है वो दिखाई पड़ता, और मादकता से भरपूर ये गीत जब जब पर्दे पर आया तो उसने एक अलग ही धूम मचाई है, और जब सुनेंगे तब हमारे दोस्त समझ जाएंगे कि ये गाना क्यों इतना खास है।

0: بولتے نغمے वंदना जी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार
1: नमस्कार नेहा जी और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: वंदना जी देखिए, सोशल मीडिया पे जो हम लोग पोस्टर्स अपलोड करते हैं बोलते नगमे कार्यक्रम के प्रोमोज बनाते हैं, तो उसमें कई सुधी श्रोताओं ने कहा कि इस बार

0: जब आप इस गीत को सुन रहे हैं श्रोताओं, जरा इसके म्यूजिक पर गौर करिए। तबले की जो ताल है, उसकी जो लयकारी है, इतनी सुंदर। बहुत क्लोज माइक रखा है रहमान साहब ने। मुझे लगता है कि उंगलियों की थाप को, ताल को बहुत करीबियत से कैद करना चाहते थे जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, और किया भी। और वो जो एक एक आवाज़ है, वो शायद अंदर की आवाज़ को उभारती है और कहती है कि देखो कितना सुंदर ये समा है, बहुत खूबसूरत सा। और जब हरिहरन साहब अपनी जादू भरी, मैं कहूँगी गहराई लिए हुए बेस वाली आवाज़ में गाती हैं, हाय रामा, ये क्या हुआ, क्यों हमको ऐसे सताने लगा। और स्वर्णलता जी जब साथ देती हैं, मिठास है गाने में। एक कशिश मालूम पड़ रहा है ना
1: नेहा जी, जो आपने एक कशिश, एक शब्द बोला है ना, जब हम स्वर्णलता की बात करते हैं
0: जी,
1: तो ये कशिश शब्द स्वर्णलता के साथ मिलकर एक दूसरे का पर्याय बनते हुए से नजर आते हैं जब हम इस गीत को सुन रहे होते हैं
0: जी।
1: और जब अभी हमने मुखड़ा सुना इसका, तो एहसास हमारे दोस्तों को भी हो ही चुका होगा। और बहुत ही कम उम्र ईश्वर ने उन्हें दी स्वर्णलता को, बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके गाए बहुत सारे गीतों के साथ इस गीत को जब भी हम सुनेंगे तो हमारी यादों में वो जो उनकी आवाज में घुली हुई चंचलता है, मस्ती है, शोखी है, उसके रंग बावस्ता रहेंगे ता उम्र। तो चलिए आगे क्या कह रहा है ये गीत, वो भी सुनते चलें।

0: वंदना जी, जरा हम कहेंगे कि दोस्त भी हमारे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस गाने को थोड़ी गहराई में समझने की कोशिश करें। महबूब साहब ने इसमें रामा कहा, तौबा जैसे शब्द, तौबा ये क्या जिद है। अब ज़रा इसमें उर्दू के भी अल्फाज आ रहे हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, और जो शूट है, कैमरे का काम है, चारों तरफ सिर्फ ईंटों का बना हुआ एक दीवार सी है और बिल्कुल खंडहर सा नज़र आता है, और उसमें उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ हैं। इसका मतलब तो ये है कि भाई कहीं भी ये जो एक नेचर की, प्रकृति की या इंसानों की जो खूबसूरती है, प्रेम है, वो खिल सकता है।
1: बिल्कुल, जो कि इसमें आपने खंडहर की बात की है तो रेगिस्तान भी दिखाया जा रहा है, तो यही होता है कि रेगिस्तान में भी जीवन बरसता है, वहाँ भी सरसता पैदा हो सकती है अगर दिलों में प्रेम होता है तो। तो पिक्चराइजेशन अद्भुत है,
0: बहुत सुंदर,
1: लयकारी गीत की बहुत खूबसूरत है, हरिहरन साहब की आवाज़ बहुत बेमिसाल लग रही है, और एक नई तरह की जो फिल्म होती है उसको इस्टेब्लिश किया था रंगीला फिल्म के जरिए, रामगोपाल वर्मा जी की ये फिल्म है नेहा जी, और इसमें जो एक टपोरी का एंगल लिए हुए आमिर खान नज़र आते हैं, खैर इस गीत में तो नहीं है, और उर्मिला मातोंडकर बिल्कुल अलग रूप रंग में नज़र आती हैं, अपने आप को बिल्कुल चेंज किया उन्होंने।
0: अब जरा देखिए दोस्तों, वंदना जी, उर्मिला भी बिल्कुल नई थी उसमें, रहमान साहब भी बिल्कुल नए थे
1: जी,
0: दो नए लोगों ने मतलब सिल्वर स्क्रीन को अपने कब्जे में ले लिया
1: तो कब्जे में तो ये गीत भी हम सबको ले रहा है अपने। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
0: जी, जरूर।

0: वंदना जी।
1: जी नेहा जी,
0: बात प्रेम की हो रही है, कॉस्ट्यूम की भी हो रही है, सीन की भी हो रही है ना
1: जी।
0: एक गाना आया था बहुत साल पहले।
1: कितने साल पहले?
0: जब आप पैदा नहीं हुई थी तब। इसीलिए मैंने कहा बहुत साल पहले। अच्छा, वैसे अगर ये बात सोचें, आप हो सकता है कि उस समय तोता रही हूँ। या फिर प्यारी सी कोयल जिसकी आवाज बहुत प्यारी। ओ हाँ, ये संभव है। मेरी सहेली भी रही होंगी, हो सकता है।
1: क्या इसमें दो लोगों की व्यथा कथा है?
0: हाँ है।

0: दो आवाजें सम्मिलित हैं और दो लोग, आहा क्या नृत्य है। जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम कारण तलाशते हैं कि भाई ये चीज इतनी सुंदर क्यों है, आसानी से पता नहीं लगती।
1: अच्छा, आसानी से गीत की तह तक मैं पहुंच चुकी होंगी नेहा जी, जो अगर आप ये बता दें, हेलन है
0: यस,
1: और साथ में उनके
0: रागिनी।
1: ओहो, तुमको पिया दिल दिया।
0: ये मेरा करिश्मा है।
1: नहीं नहीं, करिश्मा आपका है, लेकिन पसंद मेरी है नेहा जी। ये तो आज हम दोस्तों की पसंद का सुनवा रहे हैं, लेकिन सच माने में ये गीत मेरी भी पसंदीदा फहरिस्त जो मैंने बनाई हुई है नेहा जी, उसमें ये गीत रखा हुआ है। तो पहले
0: सुनते
1: सुनते हैं जी।

0: जब हम लोग इस गीत को सुन रहे हैं, कितनी सुंदर हेलेन लगती हैं और रागिनी, कॉस्ट्यूम, उनके आभूषण और बिजली की तरह नृत्य करती दो अभिनेत्रियां, उनकी हस्त मुद्राओं को देखें या आंखों की मुद्राओं को देखें, मतलब तपाक से बैठती हैं और तपाक से उठ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से ईश्वरीय आशीर्वाद है इन लोगों पर।
1: नहीं बिल्कुल, और नेहा जी ये आशीर्वाद तभी आता है जब हम साधना रत होते हैं अपने किसी भी काम में,
2: और नृत्य गायन वादन तो साधना की मांग करता ही करता है। जो जितना डूबता है उतना ही कुंदन बनकर निखर कर संवर कर हमारे सामने आता है। और ये जो गीत है, इसके जो भाव हैं, शब्दों में जो छुपे हुए से नज़र आते हैं, वो दिल फरेब हैं, दिल को किसी और ही दुनिया में पहुंचा देते हैं। और दो दिलों की जब दास्तान होती है और वो कही जाती है, तो इसी तरह से एक खूबसूरत वातावरण तैयार होता है, जैसे अभी हम इस गीत में देख रहे हैं। कितने जज्बात हमारे जो कि बहुत ही मानी खेज हैं, वो सब इस गीत के साथ तरंगित हो रहे हैं।

0: बहुत सुंदर लता जी और उषा मंगेशकर जी का डुएट कम देखने को मिला है, लेकिन जब मिला वो पूरा मिला। कहते हैं ना कि ईश्वर जब करते हैं तो वो पूरा ही देते हैं। और जी एस कोहली जी जो संगीतकार हैं, बहुत कम उन्होंने म्यूजिक दिया है और इसका जो म्यूजिक इतना मधुरता लिए हुए है। कई बार इंसान कुछ काम बहुत सुंदर कर जाता है, उसके बाद शायद वो रंग नहीं ले आ पाता।
1: जी हाँ, और दोस्तों जी एस कोहली साहब हिंदी सिनेमा के गुणी संगीतकार और ढोलक तबला वादक के रूप में भी उन्हें ख्याति प्राप्त थी, और खास तौर पर ओपी नैयर के साथ वो सहायक के रूप में जुड़े रहे काफी लंबे समय तक। और जो अभी हम गीत सुन रहे हैं उसमें तो जो जलवा उनके संगीत का दिखाई पड़ रहा है वो लाजवाब है, बेमिसाल है।
0: बिल्कुल, आप सवेरे तो उठती होंगी ना?
1: क्यों नहीं, बोला आप सुला के ही मानेंगे।
0: कई बार जो है ना
1: मन आलसी हो जाता है, आलस
0: नहीं, आलसी नहीं, किसी को थोड़ा खुरेदना अच्छा लगता है। छेड़ रही हैं,
1: छेड़ना है तो सुरों को छेड़िए। उन्हें छेड़ने से जो संगीत पैदा होगा उसका जो मजा होता है वो बड़ा ही संगीतमय होता है। तो मेरी बात अभी रहने दीजिए।
0: मान लिया चलिए कि आप सवेरे उठती होंगी
1: जी।
0: आप देखिए, एक ही समय में कोयल भी बोलती है, मैना भी बोलती है, सूरज की रश्मियां भी पृथ्वी पर आ रही होती हैं, वो भी कुछ बोलने सी लगती हैं। इस सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन तरीके से सबकी ध्वनियां उतर रही हैं कान में। जी एस कोहली साहब वैसे ही रहे हैं। और फारूक कैसर जी के

0: बारे में कैसे बात ना करें।
1: शायर की जो दृष्टि होती है जुदा होती है, वो इतना मर्मस्पर्शी लेखन उनका हो कि एक एक अनुभूतियों को वो जैसे लगता है कि शायर जी रहा हो।
2: और जो ये बात कहती है ना कि दिल के सोए अरमा जागे तेरी ही आवाज़ से, तो आवाज़ का जो जादू किसी का होता है उससे हम खुद को कभी भी छुड़ा नहीं पाते हैं। यंत्रवत से हम उस आवाज़ के पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। उस आवाज़ के भीतर ऐसा कुछ करिश्मा छुपा होता है, जितना सुनिए उतना डूबते जाइए।

यंत्रवत से हम उस आवाज के पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। उस आवाज के भीतर ऐसा कुछ करिश्मा छुपा होता है, जितना सुनिए उतना डूबते जाइए।

0: मुझे इसमें से कुछ शब्द बहुत अच्छे लगे वंदना जी और दोस्तों, जैसे नाज, दगाबाज, जुल्मी, अंदाज, बहुत बहुत सुंदर। और एक बात, जैसे लोग आमतौर पर तो हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन वो उस तरह से देखना कि इंसान शर्म से पिघल जाए।
1: अजीत सामने बैठे ही हुए हैं, वो उसी तरह से देख भी रहे हैं, वो भी मोहित सम्मोहित से नजर आ रहे हैं नेहा जी। लेकिन अभी सम्मोहन में हमें बांधने के लिए अब एक ऐसी आवाज उभरेगी और ऐसा संगीत का करिश्मा नजर आएगा कि हम सब पूरी तरह से गहराई में डूबते हुए से जाएंगे और मन में एक टीस पैदा होगी और बहुत कुछ सोचने पर हमारा दिल भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस उम्दा गजल में न जाने कितने दिलों की बयानियां छुपी हुई।

0: जी,
1: जैसे जैसे गजल को हम लोग सुनते जा रहे हैं और जिस तरह से आशा जी ने गाया है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ठहर करके कुछ वो रचती चली जा रही हूँ, देख रही हूँ और आवाज़ को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पेश किया है। ऐसी सुंदरता जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उस ओर खिंचे चले जाते हैं, तलाशते हैं कि क्या कुछ है, तो पाते हैं कि एक दर्शन छिपा हुआ है और आवाज़ में अपनायत और भावों की गहराई है।
0: नेहा जी, जब आशा जी की आवाज़ की आप बात कर रही थी, तो उमराव जान के पहले तक आशा जी को चंचलता, शोखी के रूप में उसकी मलिका एक तरह से समझा जाता था कि आवाज़ में वो शोखी पैदा करती थी, वो मादकता थी उनकी, जिसे बहुत खूबसूरती के साथ ओपी नैयर साहब ने उभारा। बाद में पंचम दा ने उसको और

0: गीत है, हाँ, लेकिन वो गीत जिसमें शब्द आपको ऐसा लगेगा कि शायद हर कोई बोलता है उसमें से वो शब्द, जैसे रामा पिया है ना, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन जो ढंग है वो बिल्कुल जुदा है।
1: क्या बात है। और जब रामा आपने शब्द का इस्तेमाल ही किया है नेहा जी,
0: जी
1: तो जब भी कभी हम किसी घटना को घटित होते देख रहे होते हैं या किसी को सामने पा जाते हैं इस तरह से, तो हाय राम, ये एक हमारे मुख से निकल ही आता है। और जब रामा की आप बात करें तो यानी हाय रामा, जब ये जुड़ जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत उभर कर आता है। और नाम तो आपने फिल्म का बता ही दिया है,
0: जी
1: और बहुत ही खूबसूरत सी उर्मिला मातोंडकर का जो चेहरा है, जो ग्लैमर है, वो दिखाई पड़ता है। और मादकता से भरपूर ये गीत जब जब पर्दे पर आया तो उसने एक अलग ही धूम मचाई है। और जब सुनेंगे तब हमारे दोस्त समझ जाएंगे कि ये गाना क्यों इतना खास है।

0: बोलते नगमे वंदना जी नमस्कार दोस्तों नमस्कार
1: नमस्कार नेहा जी और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: वंदना जी देखिए सोशल मीडिया पे जो हम लोग पोस्टर्स अपलोड करते हैं बोलते नगमे कार्यक्रम के प्रोमोज बनाते हैं तो उसमें कई सुधी श्रोताओं ने कहा कि इस बार हमारी पसंद का गाना रखिए।
1: अरे क्या बात है नेहा जी, अगर जब श्रोताओं की पसंद हमारे कार्यक्रम में जुड़ती है
0: जी
1: तो अपनायत की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती है, यानी एक जिम्मेदारी जवाबदेही का एहसास तो हो ही रहा होता है, साथ ही ये भी लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो किस तन्मयता से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और अपनी पसंद पूरे अधिकार के साथ हम तक पहुंचाते हैं।
0: अब 90s में एक फिल्म आई जब वो सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होती है
1: जी जी,
0: नाम था रंगीला।
1: ओहो क्या बात है, तो उसके तो एक से बढ़कर एक

0: जब आप इस गीत को सुन रहे हैं श्रोताओं, जरा इसके म्यूजिक पर गौर करिए। तबले की जो ताल है, उसकी जो लयकारी है, इतनी सुंदर। बहुत क्लोज माइक रखा है रहमान साहब ने। मुझे लगता है कि उंगलियों की थाप को, ताल को बहुत करीबियत से कैद करना चाहते थे जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, और किया भी। और वो जो एक एक आवाज़ है, वो शायद अंदर की आवाज़ को उभारती है और कहती है कि देखो कितना सुंदर ये समा है, बहुत खूबसूरत सा। और जब हरिहरन साहब अपनी जादू भरी, मैं कहूँगी गहराई लिए हुए बेस वाली आवाज़ में गाती हैं, हाय रामा, ये क्या हुआ, क्यों हमको ऐसे सताने लगा। और स्वर्णलता जी जब साथ देती हैं, मिठास है गाने में। एक कशिश मालूम पड़ रहा है ना
1: नेहा जी, जो आपने एक कशिश, एक शब्द बोला है ना, जब हम स्वर्णलता की बात करते हैं
0: जी,
1: तो ये कशिश शब्द स्वर्णलता के साथ मिलकर एक दूसरे का पर्याय बनते हुए से नजर आते हैं जब हम इस गीत को सुन रहे होते हैं
0: जी।
1: और जब अभी हमने मुखड़ा सुना इसका, तो एहसास हमारे दोस्तों को भी हो ही चुका होगा। और बहुत ही कम उम्र ईश्वर ने उन्हें दी स्वर्णलता को, बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके गाए बहुत सारे गीतों के साथ इस गीत को जब भी हम सुनेंगे तो हमारी यादों में वो जो उनकी आवाज में घुली हुई चंचलता है, मस्ती है, शोखी है, उसके रंग बावस्ता रहेंगे ता उम्र। तो चलिए आगे क्या कह रहा है ये गीत, वो भी सुनते चलें।

0: वंदना जी, जरा हम कहेंगे कि दोस्त भी हमारे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस गाने को थोड़ी गहराई में समझने की कोशिश करें। महबूब साहब ने इसमें रामा कहा, तौबा जैसे शब्द, तौबा ये क्या जिद है। अब ज़रा इसमें उर्दू के भी अल्फाज आ रहे हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, और जो शूट है, कैमरे का काम है, चारों तरफ सिर्फ ईंटों का बना हुआ एक दीवार सी है और बिल्कुल खंडहर सा नज़र आता है, और उसमें उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ हैं। इसका मतलब तो ये है कि भाई कहीं भी ये जो एक नेचर की, प्रकृति की या इंसानों की जो खूबसूरती है, प्रेम है, वो खिल सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने खंडहर की बात की है तो रेगिस्तान भी दिखाया जा रहा है, तो यही होता है कि रेगिस्तान में भी जीवन बरसता है, वहाँ भी सरसता पैदा हो सकती है अगर दिलों में प्रेम होता है तो। तो पिक्चराइजेशन अद्भुत है,
0: बहुत सुंदर,
1: लयकारी गीत की बहुत खूबसूरत है, हरिहरन साहब की आवाज बहुत बेमिसाल लग रही है, और एक नई तरह की जो फिल्म होती है उसको एस्टैब्लिश किया था रंगीला फिल्म के जरिए, रामगोपाल वर्मा जी की ये फिल्म है नेहा जी, और इसमें जो एक टपोरी का एंगल लिए हुए आमिर खान नज़र आते हैं, खैर इस गीत में तो नहीं है, और उर्मिला मातोंडकर बिल्कुल अलग रूप रंग में नज़र आती हैं, अपने आप को बिल्कुल चेंज किया उन्होंने।
0: अब जरा देखिए दोस्तों, वंदना जी, उर्मिला भी बिल्कुल नई थी उसमें, रहमान साहब भी बिल्कुल नए थे
1: जी,
0: दो नए लोगों ने मतलब सिल्वर स्क्रीन को अपने कब्जे में ले लिया
1: तो कब्जे में तो ये गीत भी हम सबको ले रहा है अपने, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
0: जी, जरूर।

0: वंदना जी
1: जी नेहा जी,
0: बात प्रेम की हो रही है, कॉस्ट्यूम की भी हो रही है, सीन की भी हो रही है ना
1: जी।
0: एक गाना आया था बहुत साल पहले।
1: कितने साल पहले?
0: जब आप पैदा नहीं हुई थी तब। इसीलिए मैंने कहा बहुत साल पहले। अच्छा, वैसे अगर ये बात सोचें, आप हो सकता है कि उस समय तोता रही हूँ या फिर प्यारी सी कोयल जिसकी आवाज बहुत प्यारी। ओ हाँ, ये संभव है, मेरी सहेली भी रही होंगी, हो सकता है।
1: क्या इसमें दो लोगों की व्यथा कथा है?
0: हाँ है, दो आवाजें सम्मिलित हैं और दो लोग। आहा, क्या नृत्य है। जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम कारण तलाशते हैं कि भाई ये चीज इतनी सुंदर क्यों है, आसानी से पता नहीं लगती।
1: अच्छा, आसानी से गीत की तह तक मैं पहुंच चुकी होंगी नेहा जी, जो अगर आप ये बता दे। हेलन है?
0: यस।
1: और साथ में उनके
0: रागिनी।
1: ओहो, तुमको पिया, दिल दिया।
0: ये मेरा करिश्मा है।
1: नहीं नहीं, करिश्मा आपका है लेकिन पसंद मेरी है नेहा जी। ये तो आज हम दोस्तों की पसंद का सुनवा रहे हैं, लेकिन सच माने में ये गीत मेरी भी पसंदीदा फहरिस्त जो मैंने बनाई हुई है नेहा जी।

0: जब हम लोग इस गीत को सुन रहे हैं, कितनी सुंदर हेलन लगती हैं और रागिनी, कॉस्ट्यूम, उनके आभूषण और बिजली की तरह नृत्य करती दो अभिनेत्रियां, उनकी हस्त मुद्राओं को देखें या आंखों की मुद्राओं को देखें, मतलब तपाक से बैठती हैं और तपाक से उठ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से ईश्वरीय आशीर्वाद है इन लोगों पर।
1: नहीं बिल्कुल, और नेहा जी ये आशीर्वाद तभी आता है जब हम साधना रत होते हैं अपने किसी भी काम में,
2: और नृत्य गायन वादन तो साधना की मांग करता ही करता है। जो जितना डूबता है उतना ही कुंदन बनकर निखर कर संवर कर हमारे सामने आता है। और ये जो गीत है, इसके जो भाव हैं, शब्दों में जो छुपे हुए से नज़र आते हैं, वो दिल फरेब हैं, दिल को किसी और ही दुनिया में पहुंचा देते हैं। और दो दिलों की जब दास्तान होती है और वो कही जाती है, तो इसी तरह से एक खूबसूरत वातावरण तैयार होता है, जैसे अभी हम इस गीत में देख रहे हैं। कितनी जज्बात हमारे जो कि बहुत ही मानी खेज हैं, वो सब इस गीत के साथ तरंगित हो रहे हैं।

0: बहुत सुंदर लता जी और उषा मंगेशकर जी का डुएट कम देखने को मिला है, लेकिन जब मिला वो पूरा मिला। कहते हैं ना कि ईश्वर जब करते हैं तो वो पूरा ही देते हैं। और जी एस कोहली जी जो संगीतकार हैं, बहुत कम उन्होंने म्यूजिक दिया है और इसका जो म्यूजिक इतना मधुरता लिए हुए है। कई बार इंसान कुछ काम बहुत सुंदर कर जाता है, उसके बाद शायद वो रंग नहीं ले आ पाता।
1: जी हाँ, और दोस्तों जी एस कोहली साहब हिंदी सिनेमा के गुणी संगीतकार और ढोलक तबला वादक के रूप में भी उन्हें ख्याति प्राप्त थी, और खास तौर पर ओपी नैयर के साथ वो सहायक के रूप में जुड़े रहे काफी लंबे समय तक। और जो अभी हम गीत सुन रहे हैं उसमें तो जो जलवा उनके संगीत का दिखाई पड़ रहा है वो लाजवाब है, बेमिसाल है।
0: बिल्कुल, आप सवेरे तो उठती होंगी ना?
1: क्यों नहीं बोला, आप सुला के ही मानेंगे।
0: कई बार जो है ना
1: मन आलसी हो जाता है, आलस
0: नहीं, आलसी नहीं, किसी को थोड़ा खुरीदना अच्छा लगता है। छेड़ रही हैं
1: छेड़ना है तो सुरों को छेड़िए, उन्हें छेड़ने से जो संगीत पैदा होगा उसका जो मजा होता है वो बड़ा ही संगीतमय होता है। तो मेरी बात अभी रहने दीजिए।
0: मान लिया चलिए कि आप सवेरे उठती होंगी
1: जी।
0: आप देखिए, एक ही समय में कोयल भी बोलती है, मैना भी बोलती है, सूरज की रश्मियां भी पृथ्वी पर आ रही होती हैं, वो भी कुछ बोलने सी लगती हैं। इस सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन तरीके से सबकी ध्वनियां उतर रही हैं कान में। जी एस कोहली साहब वैसे ही रहे हैं। और फारूक कैसर जी के बारे में कैसे बात ना करें?
1: शायर की जो दृष्टि होती है जुदा होती है, वो इतना मर्म स्पर्शी लेखन उनका हो कि एक एक अनुभूतियों को वो जैसे लगता है कि शायर जी रहा हो।
2: और जो ये बात कहती है ना कि दिल के सोए अरमा जागे तेरी ही आवाज से, तो आवाज का जो जादू किसी का होता है उससे हम खुद को कभी भी छुड़ा नहीं पाते हैं। यंत्रवत से हम उस आवाज के पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। उस आवाज के भीतर ऐसा कुछ करिश्मा छुपा होता है, जितना सुनिए उतना डूबते जाइए।

0: मुझे इसमें से कुछ शब्द बहुत अच्छे लगे वंदना जी और दोस्तों, जैसे नाज, दगाबाज, जुल्मी, अंदाज, बहुत बहुत सुंदर। और एक बात, जैसे लोग आमतौर पर तो हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन वो उस तरह से देखना कि इंसान शर्म से पिघल जाए।
1: अजीत सामने बैठे ही हुए हैं, वो उसी तरह से देख भी रहे हैं, वो भी मोहित सम्मोहित से नजर आ रहे हैं नेहा जी। लेकिन अभी सम्मोहन में हमें बांधने के लिए अब एक ऐसी आवाज उभरेगी और ऐसा संगीत का करिश्मा नजर आएगा कि हम सब पूरी तरह से गहराई में डूबते हुए से जाएंगे और मन में एक टीस पैदा होगी और बहुत कुछ सोचने पर हमारा दिल भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस उम्दा गजल में न जाने कितने दिलों की बयानियां छुपी हुई हैं।

0: जैसे जैसे गजल को हम लोग सुनते जा रहे हैं और जिस तरह से आशा जी ने गाया है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ठहर करके कुछ वो रचती चली जा रही हूँ, देख रही हूँ और आवाज़ को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पेश किया है। ऐसी सुंदरता जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उस ओर खिंचे चले जाते हैं, तलाशते हैं कि क्या कुछ है, तो पाते हैं कि एक दर्शन छिपा हुआ है और आवाज़ में अपनायत और भावों की गहराई है।
1: नेहा जी, जब आशा जी की आवाज़ की आप बात कर रही थी, तो उमराव जान के पहले तक आशा जी को चंचलता, शोखी के रूप में उसकी मलिका एक तरह से समझा जाता था कि आवाज़ में वो शोखी पैदा करती थी, वो मादकता थी उनकी, जिसे बहुत खूबसूरती के साथ ओपी नैयर साहब ने उभारा। बाद में पंचम दा ने उसको और गति दी, लेकिन बीच में जब आते हैं खय्याम साहब
0: जी,
1: तब उन्होंने उस आवाज़ को, उस चंचलता को बांधा, ठहराव दिया, वो जो संजीदगी से उभर कर उनकी आवाज़ हमें सुनाई दी, तो ऐसा लगा कि हमारी रूह पूरी तरह से उनकी आवाज़ के जादू में जकड़ उठी हो। और शहरयार साहब को हम भला कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने उमराव जान फिल्म के गीत को अमर कर दिया है, कालजयी बना दिया है। और रेखा का जो अभिनय है वो अपनी उत्कृष्टता पर नज़र आता है हमें भी, और जैसे लगता है कि वो इस किरदार को पूरी तरह से जी रही हूँ, इस तरह से उन्होंने आत्मसात किया है। और एक जो व्यथा कथा होती है, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी हम इस भावना से दोचार होते हैं कि बहुत सारी आरजुएँ हमारी होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, ख्वाहिश होती है, एक साथ की ज़रूरत होती है, साथ बहुत दिनों तक रहता भी है, लेकिन कब वो साथ अचानक छूट जाता है, तब हर एक टूटा हुआ सा जो दिल होता है उससे यही पुकार उठती है, जो कुछ यूं बयां हो रही है इस गज़ल के

0: अभी हम जब इस गजल को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जरा देखिए वो एक ही अंदाज में बैठी हुई हैं। कैमरा एक ही जगह है, रेखा जी हैं, फारूक शेख हैं और उनकी सहेली, लेकिन फिर भी इतनी गहराई है। उनका जो कॉस्ट्यूम है, उनकी जो नजरें हैं, जिस तरह से वो इस गजल को प्रस्तुत कर रही हैं फारूक शेख के सामने, और कहती हैं कि जिसकी जुस्तजू थी वो हमने नहीं पाया, लेकिन सामने वाले को पता भी न चलने दिया और खुद भी पशेमाना हुए।
1: इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो गीत है, हमारे दोस्तों ने समझ ही लिया होगा कि उमराव जान फिल्म का ये गीत है। 1981 में फिल्म आती है। संगीतकार के रूप में खय्याम साहब को, अभिनेत्री के रूप में रेखा जी को, आशा भोसले जी को गायिका के रूप में, और फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेहा जी। और मिर्जा हादी रुसवा का लिखा उपन्यास उमराव जान अदा पर ये फिल्म केंद्रित थी, और रेखा ने एक तरह से उमराव जान की भूमिका को जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। उन्होंने उसी तरह से गीतों के जरिए जो उमराव जान की व्यथा कथा थी, उनका जो अंतर्विरोध था, संघर्ष था, प्रेम की जो लालसा थी, छटपटाहट थी, वो सब अपनी शायरी के जरिए उन्होंने कलमबद्ध जब किया, तो सुनने वालों के दिलो दिमाग पर एक ऐसा असर पैदा हुआ, आज तक हम उसे महसूस कर सकते हैं, उससे उभर नहीं पाए हैं। एक नशा सतारी होता है।

0: जैसे कई बार चंदा की रोशनी रात में पत्तियों से छन छन के आती है
1: जी।
0: और हम उससे अछूते नहीं रहते, मन करता है कि हाँ बस यहीं बैठे रहें। और जब वो कहती हैं, लोग चांद की ख्वाहिश करते हैं, जब हकीकत पता चली तो ये गर्दिश वाले वक्त ही सबसे अच्छे निकले। और उमराव जान उन महिलाओं में से एक रही हैं जो आगे बढ़ना जानती थी। बहुत तरीके से उन्होंने जीवन को देखा। फिर वो अगली बात कहती हैं कि एक उम्र का एक लंबा सफर तुम्हारे बिना ही तय किया है। ये बड़ी बात लगती है ना, बहुत सुंदर।

0: इस गज़ल के अतिरिक्त भी दो लाइनें और भी आती हैं जो बाद में हमें सुनाई पड़ती हैं, वो बहुत ही मार्मिक बात कही जाती है, तो उसको भी हम दोस्तों तक ज़रूर साझा करेंगे
1: जी।

0: रेखा जी, कमाल
1: फारूक शेख की नजरों में वो जो खो जाने का दर्द है वो भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ये फिल्म, गीत, संगीत, इसका अभिनय सब उत्कृष्ट। और सलाम हम करते हैं ऐसे कलाकारों को जिन्होंने कला के जरिए नई सोच हमारे भीतर पैदा की, समझ की एक सलाहियत पैदा की और मर्म स्पर्शी बनाया हमें।
0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आप सुनते हैं तो लगता है कि सुनते रहें और ये जो गजल हैं, गीत हैं, नज्म हैं, कुछ दे जाते हैं।
1: और देखिए हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने ये फरमाइशें भेजी थी, तो उन सबको हम सलाम करते हैं और दोस्तों से अब कहेंगे हम इतना कि अगर उनकी कोई पसंद है तो वो हमें ज़रूर बताएं।
0: तो हमारा नंबर नोट करिए,
1: 800-492-6250।
0: तो हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार, आपकी फरमाइशी गीतों का इंतजार। तब तक के लिए हम कहते हैं नमस्कार,
2: बोलते नगमे।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। श्रोताओं, कार्यक्रम में आई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अजनबी फिल्म। आवाज़ें हैं सुनिधि चौहान और कुमार सानू की, संगीत दिया है अनु मलिक ने और शब्द रचना है समीर अंजान की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल की आवाज में ये भजन।

0: श्रोताओं, अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम सबरस। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधान

प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से

0: हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODA प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़

0: सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi said India should aspire to be among the early leaders in emerging technologies. He noted the significant progress made in the semiconductor sector and said the ecosystem is now moving from foundational efforts to a phase of greater scale and opportunity. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. He invited industry leaders to share suggestions on policy and administrative measures and assured them that their inputs would be given due consideration in further strengthening the sector. He encouraged industry leaders to

0: series of government schemes will light lamps as a gesture of gratitude for Mr. Modi's 25 years in public service. Jal Shakti Minister C.R. Patil, along with Minister of State for Jal Shakti V. Somanna and Minister of State for Housing and Urban Affairs, Token Sahu, today launched the Swachhata Hi Seva campaign. The theme of this campaign is Swachhata Me Sahbhag, Swachh Bharat Vikasit Bharat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of Northeast India tomorrow. The IMD has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Chiram Valley Maoist attack case in Bastar district, and veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. That is all in the news at night. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनातों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 झीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई है। और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के नाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनतों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरख्वाह इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिरख्वाह पेशरफ भी हुई है और कहा कि ये इको निज़ाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहल की जानिब गामजन है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की

0: दार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहलियत के तहत उभरते हुए इम्कानात पर एतमाद का इजहार किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक व तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और माविन सनअतें शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम से वाबस्ता शराकत दारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी, ताकि मावनत और इख्तरा को फ़रोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अलाक्वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज़ कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के तहत लाजमी कवरेज के लिए तनख्वाह की हद को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये महाना कर दिया है। आज काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 51 लाख इजाफी मुलाजमीन के लाजमी EPFO कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है, जिससे कारकुनों के लिए समाजी तहफ्फुज का दायरा नुमाया तौर पर वसी होगा। इस इकदाम के लिए हुकूमत के सालाना अखराजात का तखमीना तकरीबन 11,339 करोड़ रुपये है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद कल विश्वकर्मा जयंती से नाफिजुल अमल हो जाएगी।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक EPFO की तनख्वाह की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। जनाब वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मौजूदा फैसला इस हद को 25,000 रुपये तक बढ़ाकर इस नुक्ता नज़र को मजीद बढ़ाता है, जो कि इन बरसों के दौरान उजरत में पायदार बढ़ोतरी, इजाफी आमदनी और बाजाबता रोजगार में तौसी की अक्कासी करता है। हमारे नामानिगार के रिपोर्ट के मुताबिक इस मंजूरी से प्रोविडेंट फंड की बचत तक रसाई में इजाफा होगा और मुलाजिमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन तहफ्फुज को वसत मिलेगी। पेश एक रिपोर्ट।
2: तनख्वाह की हद में इजाफा एक जामे मुस्तहकम और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग समाजी तहफ्फुज के निज़ाम की तामीर की जानिब एक और अहम कदम है। इस वक्त अगर कोई नया मुलाजिम 15,000 रुपये माहाना से ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजमत इख्तियार करता है तो वो खुद ब खुद EPFO के दायरे कार में शामिल नहीं होता था। इस हद को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने से मुलाजमीन का एक बड़ा हिस्सा कानूनी समाजी तहफ्फुज के निज़ाम में शामिल हो जाएगा। नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद मुलाजमीन को इदारों में बरकरार रखने, बाजाबता इफरादी क़ुव्वत को ज़्यादा मुस्तहकम बनाने, पायदार रोज़गार को फ़रोग देने और पैदावारियत में इजाफा करने में मुआविन साबित होगी। इस मंजूरी के नतीजे में मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड की बचतों तक रसाई, मुलाजमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का तहफ़ और मुलाजमीन डिपॉजिट से मुंसलिक बीमा स्कीम के तहत बीमा तहफ़ भी हासिल होगा। आकाशवाणी से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सेवा संकल्प अभियान कल से मुल्क भर में शुरू होगा। अभियान की शुरुआत से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत की तारीफ की और उन्हें अवामी बहबूद को सही मायनों में तरजीह देने वाला रहनुमा करार दिया।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जनाब राजनाथ।

राज सिंह ने कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी ने अवामी खिदमत के अपने 25 साल में भारत के हर शोबे की काया पलट की है। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने जल शक्ति के वजीर मुमलिकत वी सोमन्ना और मकानात और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत तो खान साहू के हमरा आज स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज किया। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता सहभाग स्वच्छ भारत विकसित भारत। आज शाम तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस साल की मुहिम 5 अहम सुतूनों पर मरकूज है। इनमें अवामी मकामात की सफाई सुथराई, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि के मकासद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खेज मवाद और मनुष्यात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा ये नौजवानों को भड़काने और मुजरिमीन को दहशतगर्दी की जानेब माइल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी किया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरकावाराना हम आहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाया किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए के तहत उसने यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नज़दीक ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नज़दीक ये वाकया खास तौर पर तश्वीश का बायस है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज़ जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुश्तपनाही वाले यमन के हूसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया और उसे तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हूसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया है। कल सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने कई अलर्ट्स जारी किए थे। अलबत्ता उसने बहरे अहमर में अपने अहम ऑयल पोर्ट यांबू समेत 6 शहरों में इन अलर्ट्स को हटा भी लिया था। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने थिम्पू में अपने भूटानी हममनसब लियोनोपो डीएन ढुनग्याल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर तावुन का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में तरक्याती शराकत दारी, तवानाई, तिजारत, राबता, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबित समेत भारत और भूटान के कसीर जहती ताल्लुकात को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने झीरामवादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाज़े रहे कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन के तहत झीरामवादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। एनआईए की खसूसी अदालत ने 5 सितंबर को बाकी 10 मुलजमीन को इस मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई गई। भारत सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड CBFC की फौरी तौर पर अस्सर-ए-नौ तश्कील की है जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। इत्तला-ओ नशरियात की वजारत ने कहा कि 9 तश्कील शुदा बोर्ड CBFC में 18 मेंबरान होंगे। मस्कूरा बोर्ड CBFC के अस्सर-ए-नौ तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इत्तला-ओ और नशरियात की वजारत की जानिब से आज जारी किया गया। मशहूर अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहेब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गरा कदर तावुन के बदले

जनाब ना को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब ना को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनाकिद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहिब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़म अदाकार अनंत नाग को दादा साहिब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी, हमागीर सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अनमिट नक़ोश छोड़े हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहिरा किया है और मुनफरिद अंदाज पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि एक मुनफरिद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। हुकूमत ने 3 लाख रुपए तक के सरमाए वाली बरामदाती खेपों को रजिस्ट्रेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना कर दिया है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद नए और छोटे बरामदकारों के तकमीली अमल के बोझ को कम करना और तामीली अमल के बोझ को कम करना और पोस्टल, कुरियर और दीगर उभरते हुए चैनल्स के जरिए बरामद के अमल में आसानी पैदा करना है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज़्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी CEOs ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने EPFO के तहत कम अज़ कम उजरत की हद को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। हुकूमत ने गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की ये कीमत कौन चुका रहा है? और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क आया है उसके पांच महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स 1,00,000 रुपए हर महीने है, उनके लिए 0 एमडीआर व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शंस पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा।

0: ये हैं वो पांच इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमडीआर, जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और यूपीआई की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
1: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि यूपीआई आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कस्टमर्स प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मार्चेंट उसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मार्चेंट्स जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई, उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि ये सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता है। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें है, उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, फिर इसमें एक PSP बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी NPCI के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात, दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का और मर्चेंट का बैंक है जहाँ पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं लेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, ये सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, IT में और पैसे लगाए।
0: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, चूंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
1: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनेबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो MDR से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये MDR के जो भी पैसे इसमें मार्चन से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग UPI प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें हैं। तो अब देखिए, जन धन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है, 56 करोड़ लोग आ गए हैं। दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए, गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी ऑनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें UPI को अपनाएं।

0: तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है कि इसको जीरो जो एनडीआर रेट है वो और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है। उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये यूपीआई के ऊपर नहीं लग रहा है
1: जी
0: कोई शुल्क। ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक जो छोटे काश्तकार, छोटे एमडीआर वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय
1: जी
0: वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2, वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने में कम हो गया, पिछले 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा। जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है, तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी सुविधा है। अब मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि एमडीआर क्या है और नए एमडीआर फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है, सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी साल 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी, आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट्स यूपीआई के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया, ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और P2P पर्सन टू पर्सन, आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहाँ सालों से, दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1%, कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे, हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास यूपीआई है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे, कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजेक्शन करें वो 300 ही रहेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा

0: देखेंगे कि इसको इसको रीलुक किया जाएगा। और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2%, 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा। तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है, वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि MDR का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो MDR का भुगतान करेगा। इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: सर, कोहली साहब से मैं सहमत हूँ। यदि एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की आपने एग्जांपल दिया, वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, PSB बैंक, PPAP और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में। MDR मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए। और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स है ये उसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है। अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू, नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, UPI है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स देंगे जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल 5 रुपए में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल 5 रुपए चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे MDR के लिए, हो सकता है उसको और बढ़ा भी जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है। ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर ATM में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे, तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये ऐसा ना इसे फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% MDR वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
0: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरेक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूं, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बियर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बियर करना चाहिए, हम नहीं बियर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था MDR के मामले में तो उसमें 2 तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हम उनसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1%, वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए 10,000 रुपए की चीज है तो आपसे वो 200-300 रुपए फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दे जाए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज 10,000 रुपए की है तो पहले से ही उसको 10,200 रुपए उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल 200 रुपए में जो उनको MDR भुगतान करना पड़ता है वो

करें, तो मैंने सुझाव रूप में इसलिए रखा क्योंकि मंशा एनपीसीआई की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे एमडीआर के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के, अगर मैं महीने के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या एमडीआर का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस

0: अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या MDR का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू GDP रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से ये आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या UPI के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से UPI पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है CPI वो 4.82 आई है
1: जी।
0: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है, इसमें तो कोई हम इनसे इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है, उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन, अब मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो MDR को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग उन लोगों के लिए 0.4% मायने नहीं रखता क्योंकि उनका मार्जिन जाता है। पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रिविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर ये सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1-2 महीने 3 महीने के अंदर UPI का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है। जहां तक व्यापारियों की शिकायत है मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाए।
1: विकास जी थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने UPI QR रिसिप्ट्स छोटे मर्चेंट्स के लिए 0 MDR फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई, क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा, और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए UPI की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपकी 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जब जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1,00,000 का उन्होंने सीमा लगाया है मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1,00,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता 10,000 रुपये दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1,00,000 रुपया थोड़ा सा कम लग रहा है, हो सकता है उसको सरकार रिव्यू करेंगे और उसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा। पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आप रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो UPI पर MDR की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है, पर UPI को फ्री रखना बहुत अच्छा था लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए हैं, आगे चल के और बढ़ेंगे, तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है
1: जी।
2: साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में तो सहूलियत रहेगी
1: जी।
2: बाकी UPI का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी नहीं जाएंगे, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मर्चेंट्स, बट आई थिंक विदिन ए पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे
1: जी। शरद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि UPI अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है, हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में UPI चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो

0: सुविधाएं हैं, क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
1: मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से ये देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है। बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था। 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदि हो गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके। बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था, जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है, एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई कोई मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं, आप देखिए ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का, तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ तो वो कहते हैं जी यहाँ तो सब निःशुल्क है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूँ यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
0: जी,
1: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है, वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
2: जी। ना केवल बिजनेस बढ़ा है उसमें, देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
0: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपके वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, कि केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, कुछ इज फुल प्रूफ
0: जी।
2: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मर्चेंट्स आपके जुड़ गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है
0: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि एमडीआर कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। यूपीआई का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा।

0: चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सनम बेवफा से। आवाज है विपिन सचदेवा की, बोल हैं सावन कुमार के और संगीत से सजाया है महेश किशोर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अवाम से। बोल और सुरों से सजाया है हसन कमाल ने, आवाज़ है महेंद्र कपूर की।

लीजिए सुनिए गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म है अभिनेत्री।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुरों से सजाया है रवि ने, गीतकार हैं शकील बदायूनी और फिल्म है 14वीं का चांद।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा लाला हरदयाल के विचार। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत SM चौधरी की वार्ता सुनिएगा, कृषि अपशिष्टों का सही प्रयोग। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर प्रकाश खेतान की वार्ता होगी, जीन थेरेपी भविष्य की क्रांति। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। दिन में 12:15 पर गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर उस्ताद निषाद खां का सितार वादन। कल सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गीत और

भजन सुनिएगा कल सुबह 9:50 पर धनराज कुमार से और शाम 7:45 पर रेनू पटेल के स्वर में। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा दिनेश कुमार और साथियों की आवाज में, उर्मिला श्रीवास्तव और अमित यादव के स्वर में। 11:00 सुनिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे गीतकार हसरत जयपुरी। 11:30 पर बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। 12:30 पर आपकी पसंद प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी अनुराधा श्रीवास्तव से लोकगीत और मधु चौधरी से की गई बातचीत। त्योहार तो मना रहे, क्या उसकी परंपराएं भी समझ रहे। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सविता सागर और साथियों से लोकगीत और हिंचलाल से किसान चर्चा। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी लखनऊ केंद्र से। ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन, राग हेम बिहाग। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री लतीफ अहमद खान ने। तो आइए सुनते हैं पंडित उमा शंकर मिश्र का राग हेम बिहाग में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उमा शंकर मिश्र का राग हेम बिहाग में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्री लतीफ अहमद खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाश से भर देता है। जिस समाज की शिक्षा मजबूत होती है, उस समाज का भविष्य मजबूत होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी